भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला भक्ति संगीत।

आराधना कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से। श्रोताओं, भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला भक्ति गीत।

श्रोताओ, भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला भक्ति गीत।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला भक्ति संगीत।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना आप सुन रहे थे 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला से। और अब अपनी रेडियो दोस्त पिंकी को दीजिए अनुमति

तुम्हा सारिया दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कहने श्रोताओं, मैं आ तुम्हा दी अपनी रेडियो दोस्त रुचिका हाजिर होई हूँ कार्यक्रम लेकर ही माटी दी महक। ता श्रोताओं कर देना अज दे कार्यक्रम दी शुरुआत इस प्यारे दे गीते कन्ने। तुम्हा सारे इं बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ए तोहदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तोहा सारी कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक।

धर्मशाला गणेशोत्सव तो हाँ कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन्ने तो हाँ सारे इन्हें बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

91 दशमलव 2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए तोहा सारेंदा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ तोहा सारे कार्यक्रम सुना दे न माटी दी महक जी श्रोताओ ता बढ़दे न कार्यक्रम च आगे कने सुनने न कार्यक्रम दा अगला गीत।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: दोस्तों, जब जनगणना अधिकारी आपके दरवाजे पर आए तो वो आपसे फोटो आईडी, दस्तावेज और यहाँ तक कि आपके फोन का ओटीपी भी मांगेंगे। जरा संभल के रहिए। बिल्कुल गलत। आइए आज सच जानते हैं। जनगणना अधिकारी कभी भी आपसे फोटो आईडी, ओटीपी या कोई भी दस्तावेज नहीं मांगेंगे। बस उनके सवालों का सच्चाई से जवाब दीजिए। ऐसी अफवाहों से दूर रहिए और जनगणना में जरूर हिस्सा लीजिए।
3: हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: क्या हुआ? जल्दी आओ, क्या हुआ?
1: सांप ने काटा, सांप ने।
2: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
3: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते, अभी ठीक हो जाएगा।
2: या फिर मुंह से जहर चूस के निकालने क्या?
4: अरे ठहरिया ठहरिया, अस्पताल ले जाने के अलावा आप लोग सब ऐसे ऐसी बातें कर रहे
5: हैं। अस्पताल ले जा भाई,
4: कमाल के। हाँ इन्हीं सब के चक्कर में हर साल मैं आपको बता दूं, 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए, समझे? तो याद रखिए देवी और सज्जनों, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
2: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
6: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
7: नमस्कार। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
8: धृतराष्ट्र ने अपने 100 बेटे क्यों खो दिए? कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ था, धरती खून से लाल थी, राजमहल में एक पिता धृतराष्ट्र टूट चुके थे, कृष्ण के सामने फूट पड़े और कहे, प्रभु मेरे 100 बेटे मेरी आंखों के सामने मार गए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? कृष्ण ने उनकी पीड़ा सुनी और शांत स्वर में कहा कि महाराज, आज से 50 जन्म पहले आप एक शिकारी थे, आपने एक पक्षी को मारने की कोशिश की लेकिन निशाना चूक गया, क्रोध में आकर आपने उस पक्षी के 100 बच्चों को मार डाला, आज जो दुख आप झेल रहे हैं वो उसी पाप का फल है। धृतराष्ट्र रोते हुए कहते हैं कि लेकिन प्रभु वो पाप तो 50 जन्म पहले किया था, सजा आप क्यों? कृष्ण बोले, क्योंकि पिछले जन्मों में आपने बहुत पुण्य कमाए थे, उन्हीं पुण्यों के चलते आपको इस जन्म में 100 पुत्र मिले, ताकि आप अपने कर्मों का फल का पूरा भोग सके। जीवन का सत्य यही है, कर्म लौटते जरूर है, कब लौटेंगे?
9: कुछ मीठा बोलूं?
10: रहने तो तुम्हारे बस की नहीं है।
9: मैं खाने की बात कर रही थी।
10: अच्छा, एक काम कर, गुलाब जामुन मंगा दो।
9: कोई जरूरत नहीं है, अब घर चल के ही खाना तुम।

शाला 91.2 MHz पर। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त सुरुचिका, हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी। गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मन पसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

दोस्तों, आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी। गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार बुलेटिन। आइए सुनते हैं आज की प्रमुख खबरें। तो सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और ईरान पर प्रतिबंधों से जुड़े अधिनियम पर हस्ताक्षर किए। वहीं भारत पर 100% शुल्क लगाने की तैयारी की खबर है। H-1B वीजा पर $1,00,000 का शुल्क 1 साल के लिए बढ़ाया गया। हिमाचल प्रदेश में फ्लैट खरीदने और बेचने से पहले PCP की अनुमति जरूरी होगी। सीटेट 2026 की परीक्षा अब 12 और 13 दिसंबर को होगी। एडमिट कार्ड 10 दिसंबर तक मिलने की संभावना। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की तैयारी। विशेषज्ञ समिति गठित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अक्टूबर में हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आएंगे। हिमाचल में 2000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा। CBSE स्कूलों में भी सेवाएं देने की बात। अब समाचार विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और ईरान पर प्रतिबंधों से जुड़े एक अधिनियम पर हस्ताक्षर किए हैं। अखबार में प्रकाशित खबर के अनुसार इस अधिनियम के तहत प्रतिबंधों को लेकर आगे की प्रक्रिया का रास्ता साफ हुआ है। इसी बीच भारत को लेकर भी अमेरिका की ओर से 100% शुल्क लगाने की तैयारी की खबर सामने आई है। खबर में बताया गया है कि अमेरिका की ओर से भारत पर अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने की संभावना को लेकर चर्चा चल रही है। इसके अलावा अमेरिका ने H-1B वीजा से संबंधित शुल्क में बड़ा बदलाव किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा पर $1,00,000 का शुल्क 1 साल के लिए बढ़ाया है। यह नया शुल्क 1 वर्ष तक लागू रहने की बात कही गई है। भारतीय पेशेवरों और अमेरिका में काम करने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए ये बदलाव महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब हिमाचल प्रदेश में फ्लैट खरीदने और बेचने से पहले टाउन एंड कंट्री प्लानिंग यानी TCP विभाग की अनुमति लेना जरूरी हुआ। NOC मिलने पर राजस्व विभाग रजिस्ट्री करेगा। अवैध निर्माण और नियमों के विपरीत हुए निर्माण पर सख्ती के तहत ये व्यवस्था लागू की जा रही है। राजस्व विभाग के अधिकारियों के अनुसार फ्लैट की रजिस्ट्री करवाने के लिए तहसीलदार कार्यालय पहुंचने वाले लोगों को पहले TCP कार्यालय से अनुमति लेनी होगी। TCP विभाग ये जांच करेगा कि संबंधित भवन का नक्शा स्वीकृत है या नहीं और क्या भवन का निर्माण निर्धारित नियमों के अनुसार हुआ है। निर्माण के दौरान स्वीकृत नक्शे में बदलाव, अतिरिक्त मंजिल का निर्माण या अन्य नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संपत्ति की खरीद फरोख्त पर रोक लगाई जा सकती है। विभाग की ओर से इस प्रक्रिया का उद्देश्य नियमों के विपरीत बने भवनों और फ्लैटों की खरीद फरोख्त पर नियंत्रण करना बताया गया है। TCP मंत्री राजेश धर्माणी ने भी कहा है कि जमीन और फ्लैट खरीदने बेचने के लिए TCP की सहमति जरूरी की गई है और इस विषय पर राजस्व विभाग के साथ पहले भी चर्चा हो चुकी है। CBSE ने सीटेट 2026 की परीक्षा की संशोधित तारीखों की घोषणा की है। अब यह परीक्षा 12 और 13 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। पहले यह परीक्षा 6 सितंबर को प्रस्तावित थी लेकिन बाद में इसे स्थगित कर दिया गया था। सीटेट का यह 22वां संस्करण होगा। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अब नई तारीख के अनुसार अपनी तैयारी करनी होगी। CBSE के अनुसार परीक्षा के करीब 10 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किए जाने की संभावना है। वहीं सिटी स्लिप परीक्षा से लगभग 2 सप्ताह पहले जारी की जा सकती है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे CBSE की ओर से जारी आधिकारिक सूचनाओं पर नजर रखें और परीक्षा से संबंधित सभी जरूरी जानकारी समय पर प्राप्त करें। सीटेट में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 1ली से 5वीं कक्षा तक पढ़ाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए होता है जबकि पेपर 2 6ठी से 8वीं कक्षा तक पढ़ाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए होता है। उम्मीदवार अपनी योग्यता के अनुसार एक या दोनों पेपर के लिए आवेदन कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए विशेष समिति का गठन किया गया है। समिति को 2 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी नेरचौक के कुलपति डॉक्टर DK वर्मा की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। समिति में चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से जटिल, दुर्लभ और गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए उच्च स्तरीय तथा बहुविषयक चिकित्सा सुविधाएं विकसित करने की योजना है। हर मेडिकल कॉलेज से 4 विभागों की पहचान की जाएगी। इन्हीं विभागों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा सकता है। इसके लिए अत्याधुनिक तकनीक, आधारभूत ढांचे के उन्नयन,
अतिरिक्त मानव संसाधन और वित्तीय आवश्यकताओं का आकलन किया जाएगा। समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी और इसके आधार पर आगे की कार्य योजना तैयार की जाएगी। राष्ट्रपति अक्टूबर में हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आएंगी। कार्यक्रम के अनुसार 6 अक्टूबर को श्री नैना देवी और एम्स बिलासपुर, 7 अक्टूबर को मनाली और हिडिंबा मंदिर तथा 8 अक्टूबर को अटल टनल की यात्रा का कार्यक्रम। राष्ट्रपति के दौरे लेकर प्रशासन की ओर से अधिकारियों को तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। कुल्लू में तैयारियों को लेकर प्रशासन ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था, यातायात, सड़क व्यवस्था, पार्किंग, पेयजल और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। अधिकारियों को राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे के दौरान व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन की ओर से कार्यक्रम से जुड़े सभी विभागों के बीच समन्वय बनाए रखने पर भी जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में 2000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की है। CBSE स्कूलों में भी सेवाएं देने की बात कही गई है। इसके अलावा प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए नियुक्तियां करने की घोषणा की गई है। खबर के मुताबिक प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अगले 3 माह के भीतर 2000 शिक्षकों और अन्य पदों पर नियुक्तियां करने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री ने स्कूलों से संबंधित कई अन्य घोषणाएं भी की हैं। इनमें कुछ क्षेत्रों के स्कूलों को CBSE स्कूलों में परिवर्तित करने की बात शामिल है। दिग्गल, भूमती और जयनगर के स्कूलों को CBSE स्कूलों में परिवर्तित करने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही राज्य में स्कूलों और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आधारभूत सुविधाओं तथा शिक्षकों की उपलब्धता पर जोर दिया जा रहा है। तो ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अमेरिका की नई वीजा और शुल्क संबंधी घोषणाओं से लेकर हिमाचल प्रदेश में फ्लैट की रजिस्ट्री, सीटेट परीक्षा की नई तारीख, मेडिकल कॉलेजों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, राष्ट्रपति के प्रस्तावित हिमाचल दौरे और शिक्षकों की भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें आपने सुनी। इसी के साथ आज का समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे थे 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला। धन्यवाद।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: दोस्तों, जब जनगणना अधिकारी आपके दरवाजे पर आए तो वो आपसे फोटो आईडी, दस्तावेज और यहाँ तक कि आपके फोन का ओटीपी भी मांगेंगे। जरा संभल के रहिए। बिल्कुल गलत। आइए आज सच जानते हैं। जनगणना अधिकारी कभी भी आपसे फोटो आईडी, ओटीपी या कोई भी दस्तावेज नहीं मांगेंगे। बस उनके सवालों का सच्चाई से जवाब दीजिए। ऐसी अफवाहों से दूर रहिए और जनगणना में जरूर हिस्सा लीजिए।
3: हमारी जनगणना हमारा विकास।

0: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
1: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते, अभी ठीक हो जाएगा।
0: या फिर मुंह से जहर चूस के निकाले क्या?
2: अरे ठहरिए ठहरिए, अस्पताल ले जाने के अलावा आप लोग सब ऐसी ऐसी बातें कर रहे
3: हैं। अस्पताल ले जाओ भाई।
2: कमाल के हाँ, इन्हीं सब के चक्कर में हर साल मैं आपको बता दूं, 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए, समझे? तो याद रखिए देवी और सज्जनों, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
0: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
4: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
5: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
6: धृतराष्ट्र ने अपने 100 बेटे क्यों खो दिए? कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ था, धरती खून से लाल थी, राजमहल में एक पिता धृतराष्ट्र टूट चुके थे, कृष्ण के सामने फूट पड़े और कहे, प्रभु मेरे 100 बेटे मेरी आंखों के सामने मर गए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? कृष्ण ने उनकी पीड़ा सुनी और शांत स्वर में कहा कि महाराज, आज से 50 जन्म पहले आप एक शिकारी थे, आपने एक पक्षी को मारने की कोशिश की लेकिन निशाना चूक गया, क्रोध में आकर आपने उस पक्षी के 100 बच्चों को मार डाला, आज जो दुख आप झेल रहे हैं वो उसी पाप का फल है। धृतराष्ट्र रोते हुए कहते हैं कि लेकिन प्रभु वो पाप तो 50 जन्म पहले किया था, सजा आप क्यों? कृष्ण बोले, क्योंकि पिछले जन्मों में आपने बहुत पुण्य कमाए थे, उन्हीं पुण्यों के चलते आपको इस जन्म में 100 पुत्र मिले, ताकि आप अपने कर्मों का फल का पूरा भोग सके। जीवन का सत्य यही है, कर्म लौटते जरूर है, कब लौटेंगे?
7: कुछ मीठा बोलूं?
8: रहने तो तुम्हारे बस की नहीं है।
7: मैं खाने की बात कर रही थी।
8: अच्छा, एक खाओ कर गुलाब जामुन मंगा दो।
7: कोई जरूरत नहीं है, अब घर चल के ही खाना तो।

दोस्तों कहते हैं अपने मन और शरीर का ध्यान रखना भी हमारी एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। थका हुआ शरीर और उलझा हुआ मन जीवन की सुंदरता को महसूस ही नहीं कर पाते। नमस्कार दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना रेडियो कुंचन धर्मशाला और बहुत लंबे समय के बाद आप सभी के साथ मुलाकात एक प्यारी सी खूबसूरत सी। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल अच्छे हैं और अपनी सेहत का ध्यान भी आप सभी बहुत अच्छे से रख रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है आप सभी का बहुत ही खास कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला लेकर। स्वागत है आप सभी का ढेर सारी बातों के साथ, ढेर सारे मनोरंजन के साथ और सबसे खास बात ढेर सारी जानकारियों के साथ। तो दोस्तों आज 21st यानी कि 21 सितंबर 2026 का दिन, सोमवार का दिन, रूटीन की शुरुआत, नए दिन की शुरुआत प्यारी हो, खूबसूरत हो, यही दुआ है आप सभी के लिए। फिलहाल आइए दोस्तों कार्यक्रम में बातचीत की शुरुआत के साथ साथ शुरुआत करते हैं मनोरंजन की। तो एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये पहला गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर।

तो सर उदित नारायण की आवाज में आप सभी ने एंजॉय किया कार्यक्रम का ये बहुत ही प्यारा सा गीत, दिल परदेसी हो गया मूवी का। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। और दोस्तों, कौन कहां से आया है, कहां जाने वाले हैं कोई नहीं जानता, बस दुनिया की इस भीड़ के पीछे एक दूसरे के पीछे भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, न मंजिल का पता, न राह का पता, न जाने किस और जा रहे हैं। फिलहाल हम तो कार्यक्रम में इस बहुत ही प्यारे से सफर में इंजॉय की ओर जा रहे हैं जी दोस्तों। तो फिलहाल लेकर चलते हैं आप सभी को मौसम की ओर। तो इस समय दोस्तों धर्मशाला का तापमान लगभग 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है आप सभी इस समय महसूस कर सकते हैं। और मौसम विभाग के अनुसार मौसम की क्या अपडेट रहने वाली है ये भी जानना बेहद जरूरी है। तो आइए लेकर चलते हैं आपको मौसम विभाग की तरफ।

दोस्तों, प्रदेश में मानसून विदाई की ओर बढ़ रहा है। राज्य में अगले चार दिन मौसम साफ रहने का अनुमान है। 21 से 24 सितंबर तक प्रदेश में कहीं भी बारिश की संभावना नहीं है। इसके बाद 25 और 26 सितंबर को मौसम में बदलाव आएगा और मैदानी तथा मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। इन दो दिनों के दौरान भारी बारिश को लेकर कोई चेतावनी या अलर्ट जारी नहीं किया गया है। जी दोस्तों, तो पिछले दो दिनों से आप सभी देख रहे हैं बहुत ही प्यारी सी धूप जो है वो खिली खिली सी नजर आ रही है। लेकिन बात करें किसानों की, तो दोस्तों फसलों के लिए शायद जो धान की खेती है, तो जो अब हम देसी धान से थोड़ा हटकर अलग अलग जो है वैरायटी के धान लगा रहे हैं, तो कुछ को तो अभी पानी की ज़रूरत है, यानी कि बारिश की ज़रूरत है। तो खैर, मौसम किस तरह से साथ देता है, किस तरह से साथ नहीं देता है, वो तो समय के साथ ही पता चलेगा। लेकिन कहते हैं ना, डर तो मन में बैठ ही जाता है कि कहीं हमारी मेहनत खराब न चली जाए। तो बिल्कुल दोस्तों, बहुत मेहनत से इस मुकाम तक पहुँचते हैं, चाहे वो कोई भी सफ़र हो, ज़िंदगी का किसी से भी जुड़ा हो। फिलहाल आइए लेकर चलते हैं फिर से आप सभी को एक और खूबसूरत से गीत की ओर। तो एंजॉय कीजिए दोस्तों कार्यक्रम का ये अगला गीत अपने रेडियो सेट से 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों फिजा मूवी का ये बहुत ही प्यारा सा गीत उदित नारायण अलका याग्निक के आवाजों के साथ आप सभी तक पहुंचाया आप सभी के अपनी रेडियो दोस्त रुचिका ने। ट्यून किया है आप सभी ने इस समय 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम के साथ दिन की शुरुआत रूटीन को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं और साथ ही कार्यक्रम को भी एंजॉय कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों इसी के साथ अपनी बातचीत को आगे की ओर लेकर चलते हैं और जिस रूटीन को हम एंजॉय कर रहे हैं जो समय हमारे आसपास खूबसूरती के साथ और भी प्यारे प्यारे पल लेकर आ रहा है उसकी भी बात करते हैं। जी दोस्तों तो बात करें इन पलों की खूबसूरत से पलों की तो कुछ पल जुदाई के पल हैं खास करके बेटियों के लिए है ना, क्योंकि शादियों का सीजन फिर से शुरू हो चुका है मे भी कुछ समय के लिए और कुछ घर से अपने मायके से दूर जाने का जो है एक होता है ना डर होता है और एक्साइटमेंट भी होती है अलग अलग मूड के हिसाब से हर किसी की जिंदगी का तरीका रहता है। उसी तरह से दोस्तों जो एक मंथ की छुट्टी जो बेटियों ने अपने मायके में बिताई बहुत ही खूबसूरत से पल उनके लिए भी वो रहे और अब वापस अपने ससुराल यानी कि अपने घर पहुंच चुके हैं, क्योंकि जो बचपन का घर था वो तो मायका बन चुका और जो ससुराल है वो अपना घर बन गया। तो अब गृहस्थी की शुरुआत एक नए सिरे के साथ नए पलों के साथ नई शुरुआत प्यारी सी खूबसूरती के साथ। जी दोस्तों तो आई इसी खूबसूरत सी बात के साथ बैठे हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से आप सभी तक पहुंचाते हैं एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

चलो दोस्तों, इस बहुत ही खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की ढेर सारी बातों के साथ, और साथ ही साथ इन प्यारे प्यारे से गीत संगीत के मनोरंजन के साथ। दोस्तों कहते हैं ना, जब शुरुआत अच्छी हो तो फिर पूरा दिन अच्छा जाता है, पूरा सफ़र अच्छा जाता है। तो कोशिश रहती है कि आपकी सुबह की शुरुआत और दिन की शुरुआत अच्छी जाए, ताकि पूरा दिन जो है आपका बोरिंग ना रहे, परेशानियों से भरा ना रहे। और परेशानियां तो खैर आती जाती रहती हैं, लेकिन वो हम पे निर्भर करता है कि हम उसे कहाँ तक साथ लेकर चलते हैं। जब सोचते रहेंगे उसके बारे में तो ऑब्वियसली वो हमारे साथ चलती ही रहेंगी, और फिर हम जिंदगी के उन खूबसूरत से पलों को कैसे एंजॉय करेंगे, ये बहुत सोचने वाली बात है। खैर दोस्तों, कहते हैं ना, थोड़ा सा खुश होने के लिए एक छोटा सा बहाना ही हो तो बहुत होता है। और इन्हीं बातों से हटकर अगर आज की हम बात करें तो दोस्तों, आज 21 सितंबर 2026 का दिन है, बहुत खास दिन है। और इतिहास के उन पन्नों को अगर हम पलट कर देखें तो आज के दिन की बहुत ही खासियत है, बहुत ही प्यारा सा दिन है। जिस दिन की हम बात करें दोस्तों,

शायद अगर हम हिमाचल की बात करें, खास करके पहाड़ी इलाके की हम बात करें, तो जिसके बिना सुबह की शुरुआत ही नहीं होती है और हिमाचल की खूबसूरती भी उसी से दोगुना और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो किस बारे में बात की जा रही है, हिमाचल की, हिमाचल के कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस की अगर हम बात करें तो वो बहुत प्रसिद्ध है उस चीज़ के लिए। और क्यों है, क्या है आज के दिन, तो थोड़ा सा आप सोच कर देखिए, थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालिए और घुमाइए इस दिमाग की बत्ती को कि आखिर सुबह की शुरुआत किस चीज़ के बिना नहीं होती है या फिर ऐसे अधूरी अधूरी सी लगती है। फिलहाल तब तक इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट से 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों, इस खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। आप सभी एंजॉय कर रहे हैं इस प्यारे से सफर को अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो दोस्तों, आज का दिन क्यों खास है, क्या खासियत है, आई होप सो कि आप सभी ने ये गेस कर ही लिया होगा। खास करके पहाड़ी इलाके की बात करूं, जो धर्मशाला के लोगों की बात करूं, तो बहुत सारे लोगों ने आइडिया तो थोड़ा बहुत लगा ही लिया होगा, और वाकई में कुछ श्रोताओं ने लगाया है जिन्होंने मैसेज भी कर दिया है, तो बिल्कुल सही है। तो आज का दिन क्यों खास है, क्योंकि दोस्तों आज के दिन चाय दिवस जो है वो मनाया जा रहा है, और हम पहाड़ियों के बिना चाय के सुबह की शुरुआत वाकई में नहीं होती है। जब तक चाय जो है हाथों में ना हो, तब तक ऐसा लगता है कि सुबह भी अधूरी है, और ऐसा कुछ फीका फीका सा सब कुछ नजर आता है। दोस्तों, सुबह सुबह अगर खिड़की के बाहर धौलाधार की चोटियां नजर आ जाएं, मौसम में हल्की ठंडक, और वाकई में मौसम में बदलाव जो है वो थोड़ा बहुत देखने को मिल ही रहा है, और साथ ही हाथ में हो गर्मा गर्म चाय का कप, तो क्या ही बात है दोस्तों। इससे खूबसूरत सुबह और क्या ही होगी। और जो हम गांव के लोग होते हैं ना दोस्तों, तो हम तो एक छोटे छोटे से बहाने पे भी अगर कोई मेहमान आ जाते हैं, हम खेतों से घर आते हैं, या फिर थोड़ा सा भी मन ऐसे परेशान हो, सर दर्द हो रही हो, तो बस एक कप चाय, हर बात पे एक कप चाय। लेकिन हर किसी का टेस्ट अलग, हर किसी का तरीका अलग। कोई ब्लैक टी, तो कोई ग्रीन टी, तो कोई मसाला चाय, तो कोई अदरक वाली चाय, मतलब हर किसी का अपना अपना तरीका है एंजॉय करने का, लेकिन चाय तो चाय है दोस्तों। तो बिल्कुल आइए दोस्तों, इस दिन को और भी खूबसूरत बनाते हैं, और भी प्यारा बनाते हैं, और आप सभी के साथ ये सारी बातें भी एंजॉय करते हैं।

बिल्कुल दोस्तों, चाय का नशा जो है ना वो अलग ही है, और चाहे कुछ भी हो जाए चाय नहीं छूटनी चाहिए। अगर डॉक्टर ने कह दिया कि आपको शुगर हो चुकी है तो हम क्या करते हैं, बिना चीनी की चाय पीना शुरू कर देते हैं या शुगर फ्री चीज़ें, मतलब कोई ना कोई तरीका जो है ना हम निकाल ही लेते हैं, क्योंकि बिना चाय के ना सुबह की शुरुआत होती है और ना ही शाम की एंडिंग होती है। तो बस इसी तरह से पूरे दिन की दिनचर्या चलती रहती है, और कई बार तो सुबह से लेकर शाम तक न जाने कितने चाय के कप जो है हम बातों ही बातों में पी जाते हैं। कोई बीमारी नज़र नहीं आती, कोई कुछ नज़र नहीं आता। तो यही होती है कुछ खास बातों की खासियत। लेकिन हाँ दोस्तों, अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी हमें ज़रूर रखना चाहिए, थोड़ा सा केयरफुल होना उसके लिए बेहद ज़रूरी है। इसी के साथ दोस्तों आइए लेकर चलते हैं आप सभी को एक बहुत ही खास जानकारी की ओर। जहाँ मनोरंजन की बात हो रही है दोस्तों, तो वहाँ मनोरंजन से जुड़ी जानकारियाँ आप सभी तक ना पहुँचे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बिल्कुल दोस्तों, वैजनाथ बीट बिलिंग में करीब 2 महीने के अंतराल के बाद एक बार फिर रौनक लौट आई है। पैराग्लाइडिंग गतिविधियां शुरू होने के साथ ही घाटी में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ गई है, जिससे कारोबारियों, होटल, होम स्टे संचालकों, टैक्सी ऑपरेटरों और अन्य पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के चेहरों पर भी खुशी नजर आने लगी है। वीकेंड पर वीट बिलिंग घाटी बाहरी राज्य से पहुंचे पर्यटकों से जो है वो बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा नजर आया। पहले दिन 340 पर्यटक ने टेंडम उड़ानों का लुत्फ उठाया। जी दोस्तों, तो ये मनोरंजन के साधन होते हैं हम सभी के लिए, और ख़ास करके जो कारोबार को एक तरह से रोज़गार को बढ़ावा मिलता है जब पर्यटक दूर दूर से ये इंजॉय करने के लिए आते हैं, खूबसूरत से इस नज़ारे को, हमारी इन प्यारी प्यारी सी धौलाधार की वादियों के नज़ारे को, प्रकृति के सुंदर से खूबसूरत से इस प्यार से भरे नज़ारे को। जी दोस्तों, लेकिन साथ ही हमें अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार मस्ती मजाक में हम अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल ना करें, बिल्कुल सिक्योरिटी सेफ्टी के साथ जो है आप इन चीज़ों का इंजॉय लें और ज़िंदगी में आगे की ओर बढ़ें। तो फिलहाल आइए हम भी कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। तो आप सभी के लिए, आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की तरफ से कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: दोस्तों कुर्बान मूवी का ये गीत अभिजीत सारिका कपूर की आवाजों के साथ आप सभी तक पहुंचाया। आप सभी ने ट्यून किया है इस समय 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। जी दोस्तों, तो जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें भी आप सभी एंजॉय कर रहे हैं और साथ ही आज का दिन बहुत खास चाय दिवस जो है आप सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसी के साथ अगर हम सेहत की बात करें तो एक और खास दिन आज के दिन आप सभी को उसके बारे में जानना चाहिए, सर्च करना चाहिए। जी दोस्तों, आज विश्व अल्जाइमर दिवस जो है वो आप सभी मना रहे हैं। कभी कभार किसी का नाम भूल जाना किसी के साथ भी हो सकता है। हालांकि बार बार एक ही सवाल पूछना, जानी पहचानी जगहों पर रास्ता भटक जाना या रोजमर्रा के कामों में कठिनाई होना चिकित्सकीय सलाह का विषय है। जी दोस्तों, विश्व अल्जाइमर दिवस 2026 जो 21 सितंबर यानी कि आज मनाया जा रहा है। अल्जाइमर रोग और मनोभ्रंश के अन्य कारणों के बारे में बेहतर समझ विकसित करने को प्रोत्साहित करता है। ये चिंताजनक परिवर्तनों को पहचानने, कलंक को चुनौती देने और मनोभ्रंश से पीड़ित लोगों और उनके परिवारों का समर्थन करने का एक बहुत ही खास अवसर है। यथार्थ हॉस्पिटल के लिए अल्जाइमर रोग के प्रति जागरूकता का अर्थ है समय पर मूल्यांकन और सहानुभूतिपूर्ण देखभाल को प्रोत्साहित करना, साथ ही परिवारों को ये समझने में मदद करना कि पेशेवर सलाह कब लेनी चाहिए। तो दोस्तों, बीमारी कोई भी हो इसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि कई बार हम अपनी बातों में ही उलझे रहते हैं और समय हाथों से निकल जाता है। उसी तरह से इस समय समाचारों का समय कहीं हमारे हाथों से निकल ना जाए। बिल्कुल दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि थोड़ा सा समय में बदलाव है, तो अभी 9:50 पे जो है प्रादेशिक समाचार आप सभी तक पहुंचाए जा रहे हैं कुछ समय के लिए। तो आइए लेकर चलते हैं आप सभी को समाचारों की ओर, उसके बाद फिर से वापिस आते हैं अपनी इस बहुत ही खास बातचीत के साथ।
1: सिरमौर जिले के जी जू में अब सुनेगी बंगाल टाइगर की। पहुंचा बंगाल टाइगर का जोड़ा और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज से शिमला स्थित सचिवालय में नए कार्यालय से सरकार चलाएंगे। करीब 2 साल से निर्माणाधीन सीएम कार्यालय का मुख्यमंत्री आज उद्घाटन करेंगे। इस भवन में मुख्यमंत्री कार्यालय के अलावा वरिष्ठ अधिकारियों के लिए भी अलग अलग कार्यालय बनाए गए हैं। नए भवन की एक मंजिल मुख्य सचिव और उनके स्टाफ के लिए रखी गई है, जबकि दूसरी मंजिल पर सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यालय के साथ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव का कार्यालय होगा। हालांकि कुछ अन्य कमरों का कार्य अंतिम चरण में है जो जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर प्रदेश को कर्ज के बोझ में दबाने का आरोप लगाया है। हमीरपुर जिले के सुजानपुर में भाजपा के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सम्मान समारोह में उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने केवल 19,600 करोड़ रुपए का ऋण लिया था, जबकि वर्तमान सरकार 3.5 वर्ष में ही 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज ले चुकी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इसके बावजूद भी प्रदेश में कोई नया विकास कार्य नहीं हुआ है। शिमला के भट्टाकुफर से संजोली के चलौंठी और शांति विहार क्षेत्र में 4-लेन सुरंग निर्माण के दौरान हो रही ब्लास्टिंग के कारण कई मकानों और ढली संजोली बाईपास सड़क में दरारें आने का मामला सामने आया है। हमारे जिला संवाददाता के अनुसार शांति विहार वार्ड के समिट्री से सटे रिहायशी इलाके में 7 से ज्यादा भवनों को खतरा पैदा हो गया है और इन भवनों के फर्श और दीवारों पर दरारें आ गई है, जिससे स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। लोगों का आरोप है कि रात के समय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा ब्लास्टिंग की जा रही है, जिससे सुरंग के ऊपर बने रिहायशी इलाकों को खतरा पैदा हो गया है। लोगों ने इलाके का निरीक्षण कर टनल निर्माण बंद करने का मामला भी उठाया है। इस बीच इस मामले पर NHAI ने कहा है कि परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान सभी जरूरी सावधानियां बरती गई है। NHAI के अधिकारियों का कहना है कि प्रभावित स्थानों पर मुरम्मत का कार्य पहले ही पूरा किया जा चुके हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि नवंबर 2025 से ब्लास्टिंग का कार्य रोक दिया गया है और इसके बाद कोई भी ब्लास्टिंग नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि NHAI जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और परियोजना क्षेत्र पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में घुमारवी विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा, खेल और आधारभूत ढांचे के विस्तार को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। वे कल PM श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घुमारवी में 3 दिवसीय जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि खेल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। सिरमौर जिले के श्री रेणुकाजी जू में अब बंगाल टाइगर की दहाड़ सुनने को मिलेगी। करीब एक दशक के इंतजार के बाद कल नागपुर से रॉयल बंगाल टाइगर का जोड़ा श्री रेणुकाजी जू में कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचा। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे नाहन संवाददाता।
2: रेणुकाजी मिनी जू में लंबे समय से चल रहा टाइगर का इंतजार आखिरकार समाप्त हो गया है। टाइगर का पहला जोड़ा रविवार देर शाम सुरक्षित श्री रेणुकाजी पहुंचाया गया है। नागपुर के बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान से रॉयल बंगाल टाइगर्स को कड़ी सुरक्षा के बीच रेणुकाजी लाया गया। इन दोनों टाइगर्स ने नागपुर से श्री रेणुकाजी तक करीब 1800 किलोमीटर का लंबा सफर तय किया। करीब 43 घंटे चली इस लंबी यात्रा के दौरान वन्य प्राणी विभाग की विशेष टीम लगातार उनके साथ रही। टाइगर्स के लिए श्री रेणुकाजी में आधुनिक सुविधाओं से युक्त 1,67,00,000 रुपए की लागत से बाड़ा तैयार किया गया है। साथ ही एक आधुनिक वन्य प्राणी अस्पताल भी बनाया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए सिरमौर से सतीश शर्मा।
1: ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और YouTube चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। बाकी के समाचार इस अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। शिमला जिला प्रशासन ने हर पंचायत को आदर्श पंचायत के रूप में विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य के तहत पंचायतें अपनी स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर विकास कार्यों के प्रस्ताव तैयार करेगी और उसी के अनुरूप कार्यों को आगे बढ़ाएगी। अधिक जानकारी के साथ हमारे जिला संवाददाता।
1: पहले चरण में जिला के 4 विकास खंडों मशोबरा, जुब्बल, नारकंडा और बसंतपुर के खंड विकास अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई है। आगामी चरण में अन्य अधिकारियों के साथ भी बैठकें आयोजित की जाएंगी। उपायुक्त शिमला ने कहा है कि जिला के समग्र विकास के लिए सुदृढ़ कार्यतंत्र तैयार किया गया है। सांसद निधि, विधायक निधि सहित विभिन्न योजनाओं एवं प्रतिस्पर्धात्मक योजनाओं के तहत उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। विभागीय बजट के माध्यम से स्कूल भवनों, अस्पताल भवनों तथा अन्य आधारभूत एवं जनहित से जुड़े विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
0: राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण व जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कुल्लू के तत्वाधान में बाल रक्षा भारत द्वारा आपदा मित्र स्वयंसेवकों के लिए 2 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य आपदा मित्र स्वयंसेवकों को जीवन रक्षक कौशल, प्राथमिक उपचार व CPR, अग्नि सुरक्षा, खोज व बचाव, प्रारंभिक चेतावनी सहित मॉक ड्रिल जैसे महत्वपूर्ण व्यवहारिक कौशलों से सशक्त बनाना था। इस मौके पर उपायुक्त सुरजीत सिंह राठौर ने कहा कि आपदा के समय सही तैयारी, समय पर निर्णय और जीवन रक्षक कौशल कई लोगों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकतर भागों में आज मौसम साफ बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 24 सितंबर तक प्रदेश में मौसम के आमतौर पर साफ रहने का पूर्वानुमान लगाया है। हालांकि 25 व 26 सितंबर को पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की वर्षा की संभावना जताई है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश भर में मौसम शुष्क बना रहा। मैदानी इलाकों में लोगों को तापमान में इजाफा होने से दिन के समय गर्मी का एहसास भी करना पड़ रहा है। हालांकि बीते दिनों ऊंची चोटियों पर हिमपात व बारिश से तापमान में गिरावट से यहां के लोगों को ठंड का एहसास होना शुरू हो गया है। गौरतलब है कि इस मॉनसून सीजन में बारिश सामान्य से कम रही है, लेकिन बारिश से जुड़ी घटनाओं में जानमाल को काफी नुकसान पहुंचा है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के आंकड़ों के अनुसार जून से अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 329 लोगों की मौत हुई है और 567 लोग घायल हुए हैं। उपमंडल स्तरीय योजना विकास व 20 सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति की बैठक आज कांगड़ा जिला के इंदौरा में आयोजित होगी। बैठक की अध्यक्षता स्थानीय विधायक मलेंद्र राजन करेंगे। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति, लंबित कार्यों व उनके क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं की भी समीक्षा की जाएगी। कुल्लू जिला के GB के समीप देर शाम एक सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल चालक की मृत्यु हो गई, जबकि एक युवती घायल हुई है। युवती का उपचार कुल्लू अस्पताल में चल रहा है। व्यक्ति की पहचान केरल राज्य के निवासी के रूप में की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। और अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकतर समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला के शब्द है, पार्वती परियोजना की टनल से रिसाव, 3 मकान दबे, सड़क बंद से फंसा। पंजाब केसरी ने लिखा है, कुल्लू में पार्वती परियोजना की टनल्स में रिसाव, पालचरा गांव में आधी रात को मची तबाही, लोगों ने भागकर बचाई जान। दैनिक जागरण ने लिखा है, किन्नौर में सड़क निर्माण के दौरान विस्फोट, कांगड़ा निवासी की मौत। 9 इको टूरिज्म साइटें आवंटित करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में, कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार, दैनिक भास्कर की एक खबर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज से शिमला स्थित सचिवालय में नए कार्यालय से चलाएंगे सरकार, CM कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। शिमला के भट्टा कुफर चलौठी सुरंग निर्माण में ब्लास्टिंग से आसपास के कई मकानों में दरारें, लोगों में भय का माहौल। संजौली में मकानों में दरारों पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का स्पष्टीकरण, परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान बरती गई सभी जरूरी सावधानियां, नवंबर 2025 से सुरंग में ब्लास्टिंग बंद। सिरमौर जिले के श्री रेणुकाजी जू में अब सुनेगी बंगाल टाइगर की दहाड़, नागपुर से जू पहुंचा बंगाल टाइगर का जोड़ा। और राजधानी शिमला सहित प्रदेश भर में मौसम साफ, 24 सितंबर तक बारिश के आसार नहीं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं प्रातः 11 बजे। नमस्कार।

दोस्तों प्रादेशिक समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा ये कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, एक दिन सब कुछ ही छूट जाना है, लेकिन उससे पहले खुद को मत खो देना। लोग कहते हैं सब मोह माया है, सब छोड़ दो, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है इंसान संसार छोड़ने से पहले ही संसार से हार जाता है। जिंदा शरीर लेकर चलता है, मगर भीतर से मर चुका होता है। चेहरे पर मुस्कान होती है, आंखों में थकान होती है, और दिल में ऐसे दर्द छिपे होते हैं जिनका गवाह सिर्फ भगवान होता है। किसी को खोने का डर, किसी के बदल जाने का दर्द, किसी के धोखे की खामोशी, ये सब जिंदगी के पहलू हैं और ये चलते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। बस इसी तरह से हमें भी जिंदगी में चलते रहना है, लेकिन अपने आप को खो कर नहीं। दोस्तों, जिंदगी एक ही बार मिली है, इसकी अहमियत को इतना कम मत समझिए कि किसी अननोन पर्सन के लिए आप इसे ऐसे ही गवा दें, किसी की वजह से आप अपनी जिंदगी को खुलकर एंजॉय ना कर सकें। क्योंकि जिंदगी आपकी है, फैसला भी आपका होना चाहिए। तो फिलहाल आइए दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट से।

तो सो इस गीत के बाद एक बार फिर से रुक करते हैं अपनी बातचीत की ओर, और कार्यक्रम में बहुत ही खास बातचीत जो है आज के दिन हम कर रहे हैं दोस्तों। चाय दिवस भी मना रहे हैं और साथ ही अल्जाइमर दिवस भी हम मना रहे हैं, लेकिन पहले बात करते हैं चाय दिवस की। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो है वो हर साल 21 मई को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय चाय दिवस की अगर हम बात करें तो भारत और अन्य जगहों पर मसाला चाय और इसके स्वाद का जश्न मनाने के लिए ये 21 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि आज का दिन मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने चाय के उत्पादन और उपभोग को बढ़ावा देने के लिए 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में घोषित किया। इसका उद्देश्य चाय श्रमिकों की आजीविका में सुधार करना और गरीबी से मुकाबला करने में चाय के योगदान को उजागर करना है। तो दोस्तों चाय का सुकून जो है ना वो शायद शब्दों में बयां तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है हम बात करते हैं नशे की कि नशीले पदार्थ जो है वो बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, लेकिन चाय जो है ना ये भी एक तरह का नशा ही है। एक दिन अगर हमें सुबह सुबह चाय ना मिले तो पूरा दिन सर ऐसे भारी भारी सा रहता है और ऐसा लगता है कि बस सर दर्द शुरू हो ही चुकी है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, ना कुछ काम करने का मन, समझ नहीं आता कि आखिर अधूरापन रहा है तो कहाँ रहा है, लेकिन वो अधूरापन एक कप चाय का रहा होता है। जी दोस्तों, किसी के लिए चाय मतलब सुबह की शुरुआत, किसी के लिए चाय दोस्तों के साथ गपशप, किसी के लिए ऑफिस जाने से पहले दो घूंट सुकून, और हिमाचल में तो कई बार चाय का मतलब होता है पहले चाय पी लो फिर बाकी बात करेंगे। जी दोस्तों, तो इसी तरह से जो है हम चाय के साथ भी अपने जो है इन पलों को खूबसूरत बना सकते हैं। और आप सभी जानते हैं कि जब बारिश होती है चाहे मौसम कोई भी हो तो चाय किसी भी मौसम में हमें बुरी नहीं लगती। हाँ, गर्मियों में थोड़ा सा हम उब जाते हैं क्योंकि ज़्यादा गर्मियों में चाय पीना थोड़ा सा अजीब सा लगता है, गर्मी हो जाती है, लेकिन फिर भी हम पीछे नहीं हटते हैं क्योंकि चाय का सुकून चाय से ही मिलेगा, न किसी की बातों से, ना किसी की मौजूदगी से, ना किसी और चीज़ से, उसका कंपैरिजन शायद ही कहीं किया जा सकता है। तभी तो बीमारियां हो एक साइड लेकिन चाय का सुकून एक साइड। तो बिल्कुल दोस्तों, आइए इसी सुकून के लिए आप सभी के लिए एक और खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, तो पी ली आप सभी ने अदरक वाली चाय। अदरक वाली हो, इलायची वाली हो, या फिर हो मसाला चाय, चाय तो चाय है। और चाय की चुस्की के साथ दिन को खूबसूरत, सुबह की शुरुआत को भी प्यारा और शाम की एक तरह से एंडिंग को भी प्यारा बनाया जाता है। तो हर किसी का एंजॉय करने का अपना अपना तरीका और अपना अपना अंदाज, और इसी अंदाज के साथ हमारी जिंदगी और भी खूबसूरत बन जाती है, और भी प्यारी बन जाती है। तो दोस्तों, चाय के साथ साथ और भी खास बात है आज के दिन की, तो ये भी हमें नहीं भूलना है, क्योंकि सेहत की बात हमारे लिए सबसे पहले होनी चाहिए। तो विश्व अल्जाइमर दिवस जो कि आज के दिन हम मना रहे हैं, तो आखिर ये विश्व अल्जाइमर दिवस क्या है? दोस्तों, विश्व अल्जाइमर दिवस अल्जाइमर रोग और मनोभ्रंश पर केंद्रित एक अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता अभियान है। ये मनोभ्रंश से पीड़ित लोगों, देखभाल करने वालों, स्वास्थ्य पेशेवरों और समुदायों के एक साथ लाता है। ये दिन स्मृति संबंधी समस्याओं, मूल्यांकन तक पहुंच और परिवारों को आवश्यक सहायता के बारे में बातचीत के लिए प्रोत्साहित करता है। साथ ही ये इस गलत धारणा को भी चुनौती देता है कि मनोभ्रंश बुढ़ापे का एक अपरिहार्य हिस्सा है। जी दोस्तों, कई बार कही सुनी बातों में हम इतना उलझ जाते हैं कि बीमारी को एंड तक पहुंचने देते हैं, फिर हम उसका सही इलाज जो है करने के बारे में सोचते हैं। तो इतनी देर होते होते जो है फिर बीमारी हाथ से निकल जाती है और फिर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं रहता, कोई समाधान नहीं रहता। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमारी जिंदगी से बढ़कर, हमारे स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर हम एक हफ्ता या दो हफ्ते तक बिस्तर पकड़ कर सो जाएं बीमारी से, तो घर वालों को भी कई बार जो है फिर वो परेशानी होने लग जाती है। कोई अपना जो है वो अपना नहीं बनता उस समय में। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो साथ निभाते हैं और हर मुश्किल दौर में उनके साथ खड़े रहते हैं, लेकिन बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है। जब तक काम करते रहें तब तक अच्छे हैं, जब तक उनके मतलब चीज़ें सुटेबली, एक मतलब कि बोल सकते हैं ना कि अच्छे से चल रही है जिंदगी की रूटीन, तो बढ़िया है। लेकिन अगर उन्हें किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने पे बात आ जाए तो फिर सारी चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं, मुश्किलें बढ़ जाती हैं। और कई बार हमें खुद ही जो है अपने ही अंदर कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो कम होता हुआ देखने को मिलता है। हमें खुद को लगता है कि कहीं हम बोझ तो नहीं बन गए हैं अपने ही परिवार पे। तो ये सारी बातें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, तो सोचिए बीमारी फिर कहाँ से कम होगी, बीमारी तो और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। जितना हम सोचेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें समय रहते, कोई भी बीमारी हो दोस्तों, उसमें कोई शर्म कोई झिझक जो है हमें नहीं करनी चाहिए। बीमारियाँ हैं, आती जाती रहती हैं, लेकिन समय रहते इलाज सबसे बेहतर एक समाधान है हम सभी के लिए। तो कोई भी बीमारी हो, कोई शर्म मत कीजिए, कोई झिझक मत कीजिए कि समाज क्या कहेगा। समाज सिर्फ कहेगा ही कहेगा, लेकिन निभाना आपको है, जिंदगी जीनी आपको है। फिलहाल आइए इसी के साथ एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और खूबसूरत सा गीत आप सभी के साथ, कार्यक्रम में इस प्यारे से सफर के साथ।

बिल्कुल दोस्तों, जिंदगी के हर एक पल को जीना बेहद जरूरी है और इंजॉय करना तो उससे भी ज्यादा जरूरी है। और जिएंगे हम कब, जब हर एक पल को समझेंगे और उसकी अहमियत को समझेंगे, क्योंकि अक्सर हम जिंदगी को काट रहे होते हैं, जी नहीं रहे होते। बस जिंदगी का सफर निकलते जा रहा है और हम भी उसके साथ चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। तो फिलहाल हम भी कार्यक्रम में आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं और जहां मनोरंजन की बात हो रही है, तो दोस्तों क्यों ना एक प्यारा सा पंजाबी गीत भी हो जाए म्यूजिकल ट्रैक आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट से 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से, क्योंकि बातचीत अभी ढेर सारी बाकी है और जानकारियां भी अभी आप सभी का इंतजार कर रही है। फिलहाल एंजॉय कीजिए इस प्यारे से म्यूजिकल ट्रैक को।

0: बिल्कुल दोस्तों, जो दिन बीत गया वो बीत गया, वो दोबारा मुड़ कर नहीं आएगा। इसीलिए तो कह रही हूँ दोस्तों कि जो पल आपके हिस्से में हैं, जो इस समय आप जी रहे हैं, उन्हें दिल खोल कर इंजॉय कीजिए और जिंदगी के इन पलों को खूबसूरत बनाइए। ट्यून किया है आप सभी ने इस समय 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला जी दोस्तों, और इस बहुत ही प्यारे से सफर को इस समय आप सभी इंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए फिर से लेकर चलते हैं आपको चाय के कप की ओर, क्योंकि बहुत खास है दोस्तों। और चाय की बात हो ना तो सचमुच बहुत, जितना भी हम कोशिश कर लें, कई बार ऐसा होता है ना कि डॉक्टर ने हमें मना कर दिया कि नहीं, आपको चाय थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, शुगर लेवल बढ़ गया है, या फिर कई बार बीपी भी हाई हो जाता है चाय की वजह से भी। कहते हैं ना, एक छोटा सा बहाना ही चाहिए होता है, जितनी सी एक छोटी सी दवाई होती है उसी तरह से ये चाय भी कई बार असर कर जाती है, बेअसर भी हो जाती है। लेकिन कई बार बहुत परेशान है तो सुकून भरा ये चाय का कप बहुत राहत दे जाता है। तो अलग अलग तरीके से, सिचुएशंस के हिसाब से, समय के हिसाब से अपना असर ये जरूर दिखाता है दोस्तों। कांगड़ा घाटी की चाय की अपनी एक अलग पहचान है। कांगड़ा की चाय सिर्फ एक पेय नहीं बल्कि इस क्षेत्र की कृषि और स्थानीय विरासत से भी जुड़ी हुई है। पालमपुर और आसपास के चाय बागानों की हरियाली, सुबह की धुंध, पहाड़ों के बीच चाय की कतारें और पत्तियों को चुनते मेहनतकश हाथ। सोचिए, जिस चाय को हम घर में बैठकर कप में महसूस करते हैं, उसकी कहानी शुरू होती है उन हरी भरी पहाड़ियों से। जी दोस्तों, चाय के इस खुशबू को थोड़ा और संगीत की मिठास देते हैं और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक और खूबसूरत से गीत की ओर। बातचीत अभी बाकी है।
1: What song would you keep best to be like?

0: जी बेटा जी, सज्जन मिलना है।
1: तो सो आइए इसी गीत के साथ फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम में बातचीत की ओर, और कार्यक्रम में ढेर सारी बातों के साथ साथ ढेर सारी जानकारियां भी आप सभी तक पहुंचाई जा रही हैं। तो आइए दोस्तों फिर से रुक करते हैं जानकारियों की ओर। दोस्तों स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अक्टूबर नवंबर में होने वाली डीएलएड परीक्षाओं के लिए प्रदेश में 26 सरकारी और निजी संस्थानों को परीक्षा केंद्र बनाए हैं। बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों पर नकल और अन्य अनियमितताओं को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने कहा कि किसी केंद्र पर सामूहिक नकल या परीक्षा नियमों के उल्लंघन का मामला यदि सामने आया तो उस पर उसकी मान्यता तत्काल प्रभाव से रद्द की जा सकती है। परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। केंद्रों को परीक्षा की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग कम से कम 6 माह तक सुरक्षित रखनी होगी। परीक्षा में किसी तरह की शिकायत आने पर बोर्ड संबंधित केंद्र से रिकॉर्डिंग मांग सकते हैं। रिकॉर्डिंग उपलब्ध न करवाने पर संबंधित केंद्र के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। बोर्ड ने परीक्षा स्टाफ की भूमिका को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं। परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों के प्रयोग, सामूहिक नकल या परीक्षार्थियों को अनुचित सहायता देने का मामला सामने आने पर संबंधित परीक्षा केंद्र के साथ वहां तैनात स्टाफ के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जी दोस्तों, शिक्षा की बात करें तो शिक्षा व्यवस्था पे बहुत सारे सवाल जो हैं कुछ समय से हमारे सामने देखने को मिल रहे हैं, और कहते हैं ना, एक शिक्षित व्यक्ति ही अपनी जिंदगी में आगे बहुत अच्छे से बढ़ते हैं और अपने जीवन को उजागर करते हैं, मंजिलों तक लेकर जाते हैं। तो शिक्षा व्यवस्था पे ही ये बातें जो है सामने आई थी, तो शिक्षा व्यवस्था को ही सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासन की तरफ से जो है ये प्रयास किए जा रहे हैं, और इसी के चलते जो है ये सख्त निर्देश जो है वो दिए गए हैं। तो दोस्तों कहते हैं ना कि एक छोटी सी गलती से किसी का भविष्य भी खराब हो सकता है और किसी की जिंदगी पे भी बहुत सारे सवाल उठ जाते हैं, क्योंकि कई बार जो मेहनत करते हैं बच्चे, बहुत मेहनत से यहाँ तक पहुँचते हैं, इसी वजह से वो पीछे रह जाते हैं, और जो किसी वजह से किसी जान पहचान की बात करें या न जाने कौन कौन सी ऐसी बातें सामने आती, तो उसी के चलते वो आगे निकल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मेहनत कर रहे बच्चे होते हैं उनका दिल भी टूटता है, उनके सपने भी टूटते हैं, उनकी उम्मीदें भी टूटती हैं, और उनके साथ साथ उनके परिवार की उम्मीदें भी टूटती हैं। सिर्फ एक बच्चे की नहीं, पूरे परिवार की उनकी मेहनत जो है उन्हें टूटती हुई नजर आती है। तो फिलहाल दोस्तों ये थी बहुत ही खास जानकारी जो कि आप सभी तक पहुंचाई गई है रेडियो गुंजन धर्मशाला के माध्यम से, और फिलहाल पहुंचाने जा रही है आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिका आप सभी तक कार्यक्रम का ये अगला गीत आप सभी के लिए।

कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला, इस समय आप सभी सुन रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। और बहुत ही खास बातचीत आज के कार्यक्रम में आप सभी के साथ कर रही हूं। दोस्तों, एक तो चाय दिवस हम सभी मना रहे हैं और साथ ही अल्जाइमर दिवस भी हम मना रहे हैं। तो दोस्तों, अल्जाइमर रोग जिसके बारे में हमने बात की कि ये एक प्रगतिशील मस्तिष्क विकार है जो स्मृति, सोचने की क्षमता और रोजमर्रा के कार्यों को रोकने की क्षमता को प्रभावित करता है। जैसे जैसे ये रोग बढ़ता है, व्यक्ति को संचार, व्यक्तिगत देखभाल और सुरक्षा के लिए अधिक से अधिक सहायता की आवश्यकता हो सकती है। ये मनोभ्रंश का सबसे आम कारण है। अल्जाइमर रोग में मस्तिष्क में परिवर्तन होते हैं जिनमें असामान्य प्रोटीन का जमाव और तंत्रिका कोशिकाओं के बीच संबंधों को नुकसान शामिल है। इसी के साथ दोस्तों, अगर हम बात करें कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिससे कि हमें पता चल सकता है कि हमें कहीं ना कहीं ये अल्जाइमर रोग जो है परेशान कर रहा है या दस्तक दे रहा है हमारे शरीर में, तो लक्षण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जिन बदलावों पर ध्यान देना आवश्यक है वो है हाल की बातचीत या घटनाओं को बार बार भूल जाना, बिना उत्तर याद रखे वही सवाल बार बार पूछना, तिथियों या परिचित स्थानों को लेकर भ्रमित हो जाना, उन कार्यों में कठिनाई हो रही है जिन्हें पहले वो स्वतंत्र रूप से संभाल लेते थे, बातचीत को समझने या सही शब्द ढूंढने में कठिनाई होना, निर्णय, मनोदशा या व्यवहार में परिवर्तन, सामान्य गतिविधियों या सामाजिक संपर्कों से दूरी बनाना। तो ये सारे लक्षण हैं जैसे कि हमें पता चल सकता है। और दोस्तों, इसमें जो है ध्यान देने की आवश्यकता जो है बहुत ज्यादा रहती है और चिकित्सा सहायता की आवश्यकता जो है दोस्तों जो है अचानक भ्रम की स्थिति में तत्काल बेहद जरूरी है। ऐसा नहीं कि हमारे मन में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं और उसी के चलते हम इलाज को डिले करते जाते हैं और फिर बाद में हाथों में रह जाता है सिर्फ और सिर्फ पछतावा। फिलहाल कार्यक्रम में मनोरंजन के साथ साथ बातचीत चल रही है, तो बिल्कुल फिर से लेकर चलते हैं आप सभी को कार्यक्रम में एक और गीत की ओर।

तो सो इस खूबसूरत से गीत के साथ ही कार्यक्रम में फिर से रुख करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सी बातचीत की ओर। जी दोस्तों, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी एंजॉय कर रहे हैं और कार्यक्रम में बहुत ही प्यारी प्यारी सी खास बातें, क्योंकि आज का दिन ही खास है, चाय दिवस और अल्जाइमर रोग दिवस जो है, अल्जाइमर दिवस एक तरह से हम सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो एक तरफ चाय का सुकून है और एक तरफ बीमारी का भी एक कह सकते हैं अलर्ट है। तो चाय से भी कई बार जो है बीमारियों का खतरा बढ़ता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में हमें थोड़ा सा दोस्तों क्या होता है कि अक्सर हम पहाड़ों की गांव की बात करें तो सुबह उठते ही फटाफट से चाय बना के फिर जो है एक ऐसा लगता है कि मूड अब फ्रेश हो गया और एक ताजगी सी सामने नजर आ जाती है और फिर काम की शुरुआत करते हैं, अपनी डेली रूटीन की शुरुआत करते हैं। लेकिन एक बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सुबह उठते ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो खाली पेट चाय पीने से बचना चाहिए, क्योंकि जब हम खाली पेट चाय पी लेते हैं तो अक्सर गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम जो है वो हमें सामने नज़र आती है, हो सकता है देखने को मिल सकती है। तो बीमारियों से बचने के लिए चाहे आप एक बिस्किट ले लीजिए, चाहे आप रस ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए चाय के साथ, मतलब खाली पेट चाय ना पिए तो शायद ज़्यादा बेहतर रहेगा। और हिमाचल में घर घर के अपने अपने स्वाद हैं दोस्तों, कहीं चाय के साथ सिड्डू भी चलते हैं तो कहीं पकौड़े चलते हैं तो कहीं बबरू चलते हैं और कहीं स्थानीय नमकीन भी चलती है तो कहीं बस दो बिस्कुट और लंबी बातचीत। तो यही है हर घर की कहानी। और पहाड़ी घरों में तो कई बार मेहमान से पूछा जाता है चाय लोगे, तो मेहमान कहते हैं नहीं नहीं बस ऐसे ही आए हैं। तो घर वाले अरे चाय तो पीनी पड़ेगी, यही अपनापन तो हिमाचल की पहचान है, ना ना करते करते भी चाय का कप हाथों में थम ही जाता है और फिर गपशप और भी प्यारी और भी खूबसूरत हो जाती है। तो फिलहाल हमारी ये बहुत ही प्यारी सी गपशप भी प्यारी तो होनी चाहिए, तो यहाँ भी एक मनोरंजन का तड़का लगना चाहिए। तो एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का अगला गीत।

बिल्कुल दोस्तों, हम भी चाय के बहाने न जाने कितनी बातें कर गए। देखिए 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का ये सफर कैसे चाय चाय में ही निकल गया। तो आज की चाय तो आप सभी को जरूर पसंद आई होगी, ये उम्मीद करती हूँ दोस्तों। चाहे फिर वो अदरक वाली चाय हो, या मसाले वाली चाय हो, या फिर इलायची वाली चाय, या फिर ब्लैक टी या ग्रीन टी, कोई भी हो, चाय तो चाय है दोस्तों। चाय के एक घूंट में जो सुकून है वो कहाँ इस दुनिया में और मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता। फिलहाल दोस्तों कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी एंजॉय कर रहे हैं और इस बहुत ही प्यारे से सफर में आप सभी जुड़े हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। दोस्तों पत्थर को तराश कर जब भगवान की सुंदर मूर्ति बनाई जा सकती है, तो इंसान अपने भीतर के घमंड को तोड़कर एक अच्छा इंसान क्यों नहीं बन सकता, है ना, कितना प्यारा सा सवाल। असली महानता ऊंचा पद पैसा या दिखावा नहीं, बल्कि विनम्रता और अच्छे व्यवहार में होती है। जी दोस्तों, कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि हमारा जो ये व्यवहार है सबके साथ, जिनके भी साथ हम मिलते हैं सुबह से लेकर शाम तक, न जाने कितने लोगों के साथ मुलाकात होती है, तो वहां हम अपनी डिग्रियां नहीं दिखाते, हम वहां पर अपने व्यवहार से ही बता देते हैं कि हम कितने पढ़े लिखे हैं और कैसे हमारे संस्कार हैं। इंसान की पहचान उसके घमंड से नहीं, बल्कि इस बात से होती है कि वो दूसरों के साथ कितने सम्मान और प्यार से पेश आता है। इसलिए घमंड छोड़िए, इंसानियत अपनाइए, क्योंकि यही सबसे खूबसूरत पहचान है। और चाय का मजा जरूर लीजिए। फिलहाल कार्यक्रम में एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का एक और अगला गीत।

0: हाल मस्त, कोई हाल मस्त।
1: बिल्कुल दोस्तों, तो कोई दाल रोटी खाकर ही मस्त, कोई चाय पीकर ही मस्त है, बिल्कुल। तो आज का ये बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला आप सभी ने एंजॉय किया दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। पता ही नहीं चला 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का ये 2 घंटों का सफर कैसे और कब निकल गया। आप सभी के साथ बातचीत करते करते मैंने तो ढेर सारा एंजॉय किया और उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी ने भी इसको खूब सारा एंजॉय किया होगा। और आज की चाय तो शायद आपको कभी नहीं भूलेगी क्योंकि बहुत चाय पिला दी आप सभी को सिर्फ 2 ही घंटों के इस प्यारे से सफर में। तो अब समय हो गया है आप सभी से अलविदा लेने का, तो दीजिए अनुमति दोस्तों कार्यक्रम संपन्न करने की। फिर होगी मुलाकात आप सभी के साथ एक नई बातचीत नई जानकारियों के साथ। तब तक आप सभी इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपनेपन की, आप सभी के अपनेपन की।
0: कोई हाल मस्त, कोई चाल मस्त, कोई हाल मस्त, कोई चाल

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: दोस्तों, जब जनगणना अधिकारी आपके दरवाजे पर आए तो वो आपसे फोटो आईडी, दस्तावेज और यहाँ तक कि आपके फोन का ओटीपी भी मांगेंगे। जरा संभल के रहिए। बिल्कुल गलत। आइए आज सच जानते हैं। जनगणना अधिकारी कभी भी आपसे फोटो आईडी, ओटीपी या कोई भी दस्तावेज नहीं मांगेंगे। बस उनके सवालों का सच्चाई से जवाब दीजिए। ऐसी अफवाहों से दूर रहिए और जनगणना में जरूर हिस्सा लीजिए।
3: हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
1: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते हैं, अभी ठीक हो जाएगा।
0: या फिर मुंह से जहर चूस के निकालें क्या?
2: अरे ठहरिए ठहरिए, अस्पताल ले जाने के अलावा आप लोग सब ऐसी ऐसी बातें कर रहे
3: हैं। उठाओ उठाओ, अस्पताल ले जाओ भाई।
2: कमाल के हाँ, इन्हीं सब के चक्कर में हर साल मैं आपको बता दूं, 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए, समझे? तो याद रखिए देवी और सज्जनों, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
0: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
4: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
5: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
6: धृतराष्ट्र ने अपने 100 बेटे क्यों खो दिए? कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ था, धरती खून से लाल थी, राजमहल में एक पिता धृतराष्ट्र टूट चुके थे, कृष्ण के सामने फूट पड़े और कहे, प्रभु मेरे 100 बेटे मेरी आंखों के सामने मारे गए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? कृष्ण ने उनकी पीड़ा सुनी और शांत स्वर में कहा कि महाराज, आज से 50 जन्म पहले आप एक शिकारी थे, आपने एक पक्षी को मारने की कोशिश की लेकिन निशाना चूक गया, क्रोध में आकर आपने उस पक्षी के 100 बच्चों को मार डाला, आज जो दुख आप झेल रहे हैं वो उसी पाप का फल है। धृतराष्ट्र रोते हुए कहते हैं कि लेकिन प्रभु वो पाप तो 50 जन्म पहले किया था, सजा आप क्यों? कृष्ण बोले, क्योंकि पिछले जन्मों में आपने बहुत पुण्य कमाए थे, उन्हीं पुण्य

आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारी से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 MHz पर। यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और गीत।

तो आप सभी ने सुना ये गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपने होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 MHz पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये गीत अपनी रेडियो दो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

0: ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।
1: दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी

जवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किसी में है दम यह ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर। यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: दोस्तों, जब जनगणना अधिकारी आपके दरवाजे पर आए तो वो आपसे फोटो आईडी, दस्तावेज और यहाँ तक कि आपके फोन का ओटीपी भी मांगेंगे। जरा संभल के रहिए। बिल्कुल गलत। आइए आज सच जानते हैं। जनगणना अधिकारी कभी भी आपसे फोटो आईडी, ओटीपी या कोई भी दस्तावेज नहीं मांगेंगे। बस उनके सवालों का सच्चाई से जवाब दीजिए। ऐसी अफवाहों से दूर रहिए और जनगणना में जरूर हिस्सा लीजिए।
3: हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
1: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते हैं, अभी ठीक हो जाएगा।
0: या फिर मुंह से जहर चूस के निकालें क्या?
2: अरे ठहरिए ठहरिए, अस्पताल ले जाने के अलावा आप लोग सब ऐसी ऐसी बातें कर रहे
3: हैं। उठाओ उठाओ, अस्पताल ले जाओ भाई।
2: कमाल के हाँ, इन्हीं सब के चक्कर में हर साल मैं आपको बता दूं, 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए, समझे? तो याद रखिए देवियों सज्जनों, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
0: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
4: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
5: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
6: धृतराष्ट्र ने अपने 100 बेटे क्यों खो दिए? कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ था, धरती खून से लाल थी, राजमहल में एक पिता धृतराष्ट्र टूट चुके थे। कृष्ण के सामने फूट पड़े और कहे, प्रभु मेरे 100 बेटे मेरी आंखों के सामने मारे गए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? कृष्ण ने उनकी पीड़ा सुनी और शांत स्वर में कहा कि महाराज, आज से 50 जन्म पहले आप एक शिकारी थे। आपने एक पक्षी को मारने की कोशिश की लेकिन निशाना चूक गया। क्रोध में आकर आपने उस पक्षी के 100 बच्चों को मार डाला। आज जो दुख आप झेल रहे हैं वो उसी पाप का फल है। धृतराष्ट्र रोते हुए कहते हैं कि लेकिन प्रभु, वो पाप तो 50 जन्म पहले किया था, सजा आप क्यों? कृष्ण बोले, क्योंकि पिछले जन्मों में आपने बहुत पुण्य कमाए थे, उन्हीं पुण्यों के चलते आपको इस जन्म में 100 पुत्र मिले, ताकि आप अपने कर्मों का फल का पूरा भोग सके। जीवन का सत्य यही है, कर्म लौटते जरूर है, कब लौटेंगे?
7: कुछ मीठा बोलूं?
8: रहने तो तुम्हारे बस की नहीं है।
7: मैं खाने की बात कर रही थी।
8: एक खाकर गुलाब जामुन मंगा दो।
7: कोई जरूरत नहीं है, अब घर चल के ही खाना। तुम

0: नमस्कार दोस्तों, 91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और अब समय है दोस्तों कार्यक्रम हमारी सेहत का। तो दोस्तों ये कार्यक्रम हमारी सहयोगी संस्था ऑर्गन इंडिया द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जीवन एक अनमोल उपहार। ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से 91.2 MHz पर।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं सहयोगी संस्थान ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है, अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: मेरा नाम है पायल और हम सब ये आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा है। ऑर्गन इंडिया एक गैर सरकारी सामाजिक संस्थान पराशर फाउंडेशन की पहल है और हम हर कार्यक्रम में आपके लिए अंगदान, नेत्रदान और देहदान से जुड़ी हुई सूचना और अनोखी कहानियाँ लेकर आएंगे। आज एक ऐसी ही दिलचस्प कार्यक्रम के साथ हम फिर लौटे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आज के कार्यक्रम में ऑर्गन इंडिया से डॉक्टर सौरभ शर्मा हमारे साथ हैं और आज हम एक बार फिर से एक और प्रेरणा से भरी हुई कहानी लेकर आए हैं और वो हमें बहुत ही खास मेहमान से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए डॉक्टर शर्मा से बात करते हैं।
2: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सौरभ और मैं आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार है, मैं स्वागत करता हूँ। मैं ऑर्गन इंडिया की तरफ से भी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज जो हमारे साथ मेहमान हैं, जिनसे मैं आज आपको मिलवाना चाहता हूँ, बहुत ही डायनेमिक पर्सनैलिटी हैं, बहुत ही मोटिवेटेड, अपने आप में एक मोटिवेशन है और दूसरे लोगों को भी ये बहुत अच्छे से प्रेरित करते हैं अलग अलग कॉजेस के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए। सो दोस्तों, आज जो हमारे साथ मेहमान है, मैं आपको ज़्यादा देर ना करते हुए उनका नाम बताता हूँ। इनका नाम है प्रीति मस्के। ये पुणे की रहने वाली है और मिडिल एज में आके अपनी फैमिली और अपने जो जॉब है उन सब से हट के इन्होंने कुछ अलग करने का सोचा कि इन चीज़ों को तो मैं करूँगी ही, सभी लोग करते हैं, लेकिन मैं समाज के लिए क्या कर सकती हूँ। तो इन्होंने इस सोच को लेके साइकिलिंग स्टार्ट करी ताकि फिटनेस को बढ़ावा दे सकें। तो साइकिलिंग करने के साथ साथ ही इन्होंने बहुत सारे कॉजेज भी चुने। अपनी हर एक साइकिल की ट्रिप पर वो एक कॉज को प्रमोट करती हैं और लास्ट टाइम इन्होंने जब वो साइकिल की जो राइड वेस्ट टू ईस्ट जो की थी, मतलब भारत के पश्चिमी छोर से पूर्वी छोर तक जो अपनी साइकिल राइड की थी, उसमें उन्होंने अंगदान को प्रमोट किया था, अंगदान के ऊपर जागरूकता फैलाने की कोशिश की थी। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए उनसे बात करते हैं। प्रीति जी, आप

0: हस्बैंड को उसके काम में मदद करती थी, लेकिन ये करते करते ना मैं बहुत बोर हो गई थी। ऐसा लग रहा था मेरी लाइफ यहीं पे खत्म हो रही है। इतनी निराशा आ चुकी थी ना कि क्या करूं समझ में नहीं आ रहा था। तब भी मुझे ये मिला रनिंग और साइकिलिंग जो इंट्रोड्यूस हुआ, जिसने मेरी लाइफ चेंज कर दी, और जिसमें एक के बाद एक मुझे मौके मिलते गए, और जो बेहतरीन कर सकती हूँ वो उसमें मैं कोशिश करते गई, और आज 3-4 गिनीस रिकॉर्ड करते हुए अलग अलग टाइप के मैसेजेस स्प्रेड करते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, और अभी नया कुछ करने का ठान के इनसे मिलने आए हैं।
1: तो प्रीति जी, आप साइकिलिंग एंड रनिंग में करते क्या हैं? आप कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेते हैं या किसी स्टेट या किसी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, या फ्रीलांसर आप अपनी अपना लक्ष्य खुद चुनते हैं, और किस तरह से आप ये चीज़ें करते हैं?
0: ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूँ, दिस इज़ नॉट अ प्रोफेशन जी, ये मेरा शौक है, पैशन है जी। कि साइकिलिंग करते हो, जैसे कश्मीर टू कन्याकुमारी हुआ, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हुआ, मनाली टू लेह साइकिलिंग, या रनिंग, या वेस्ट टू ईस्ट साइकिलिंग, ये सारे ये रूट है जो गिनीस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आते हैं। तो चांस मिला है तो वो रिकॉर्ड्स करते करते क्या कर सकती हूँ सबके लिए, मतलब मुझे जो सोसाइटी से मिल रहा है वो कैसे बैक दे सकती हूँ मैं, ये सोचते हुए एक कॉज लेके चलती हूँ, और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचे, यही मेरा रहता है।
1: आपने जैसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बात की, तो आपने अपने नाम पर कोई रिकॉर्ड दर्ज किया?
0: ये सारे रिकॉर्ड प्रीति मस्के के नाम पे है।
1: कौन से सारे?
0: मनाली टू लेह साइकिलिंग है, मनाली टू लेह
1: साइकिलिंग कितने कुछ घंटे की अंदर की?
0: लेह मनाली साइकिलिंग है वो 55 घंटे में हुआ था, जो गिनीस रिकॉर्ड बन चुका, जो मुझे गिनीस ने 60 घंटे दिए थे। देन वही रूट हमने इमीडिएट एक महीने बाद किया रनिंग से, तो वो हुआ था, गिनीस ने दिए थे 6.5 दिन, जो हमने 4 दिन 22 घंटे और 9 मिनट में किया था।
1: तो कितने किलोमीटर था ये रूट?
0: ये है 430 किलोमीटर
1: 430 किलोमीटर
0: और वो भी अल्टीट्यूड पे।
1: और इसमें रुक सकते हैं या कंटिन्यूअसली रनिंग होती है?
0: नहीं, रुक सकते, अपने हिसाब से आप सब कुछ कर सकते हो, ले उनके सारे रूल्स फॉलो करके
1: उस टाइम लिमिट के अंदर आपको पूरी करनी है।
0: हाँ, पूरी करनी।
1: हाँ, ओके, तो आपने उनकी टाइम लिमिट से पहले ही हर रिकॉर्ड कर दिया और अपने नाम कर लिया जी। ओके, सो इस तरह की कितनी जो रिकॉर्ड्स हैं, कितनी राइड्स आप कर चुके हैं रनिंग या साइकिलिंग में?
0: ऐसे कर चुके तो बहुत 5-6 है, लेकिन गिनीस होके आए हैं ऐसे 3 है,
1: 3
0: चौथा आएगा, और देखते हैं लोगों की ऐसे ही
1: 4 गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गए हैं, और वैसे आपने 5 या 6 किए जी। सो जैसा मैंने श्रोता आपको बताया था कि इन्होंने अंगदान के ऊपर भी जागरूकता अपनी लास्ट रूट में फैलाई थी, तो थोड़ा सा उसके बारे में प्रीति जी बताइए कि अंगदान क्यों, मतलब सडनली अंगदान के बारे में कहाँ से आपको जानकारी मिली, और कैसे आपने डिसाइड किया कि मैं साइकिलिंग के थ्रू अंगदान के ऊपर भी जागरूकता बढ़ा सकती हूँ लोगों में?
0: रिकॉर्ड तो मेरे लिए थे, लेकिन उसमें मैं खुद के रिकॉर्ड बनाते बनाते ऐसा क्या कर सकती हूँ जो मुझे सोसाइटी से मिल रहा है मैं वापस दूँ, तो वो सोचते सोचते मुझे ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस रीबर्थ फाउंडेशन वाले मिले, उन्होंने उनसे बात हुई तो पता चला कि मैं मेरे रिकॉर्ड के साथ ऐसा कुछ मैसेज लेके जा सकती हूँ। फिर हमारी बातचीत हुई और मैं कॉज से जुड़ गई, और ऑर्गन डोनेशन इसलिए है क्योंकि ऑन रूट ही, मतलब रास्ते पर ही बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, लोगों को प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वहीं पे हमको लोगों को समझाना ज़रूरी है ऑर्गन डोनेशन के बारे में। तो मुझे लगा था दिस इज़ द बेस्ट कि जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है वहीं से वो कॉज लेके चलते हैं।
1: बिल्कुल श्रोताओं, मैं आपको बताऊँ कि हमने अभी इससे पहले जितने लोगों से बात करी है या जितने लोगों के साथ हमने शोज किए, सब में एक कॉमन फैक्टर था कि वो किसी ना किसी तरह से ट्रांसप्लांट और अंगदान से जुड़े हुए थे, या तो उनके परिवार में किसी को ज़रूरत थी, या फिर उन्होंने अपने परिवार में किसी के अंगदान किए थे, या फिर वो डॉक्टर थे या ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर थे, तो वो किसी ना किसी तरह से अंगदान से जुड़े हुए थे, तभी उन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया। लेकिन प्रीति जी पहली वो शख्स हैं जिनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ कि इनका बैकग्राउंड अंगदान या अंग प्रत्यारोपण ऑर्गन ट्रांसप्लांट से रिलेटेड नहीं है। इन्होंने खुद से इन चीज़ों से लिंक ना होते हुए इस टॉपिक को चुना, तो प्रीति जी इसका तो हम आपको बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने लेवल पर इस चीज़ को चुना और इस चीज़ को आगे बढ़ाया। अगर हम नंबर्स में बात करें तो करीब कितने लोगों को आप अंगदान के बारे में जागरूक कर पाई हैं।

0: अभी तक?
1: जैसे मुझे बताया गया, हमने वेस्ट टू ईस्ट अभी किया था अंगदान का मैसेज लेते हुए, तो हम लोग बाय काउंट मुझे पता था कि 8.5 करोड़ लोगों तक पहुंचे, लेकिन यहाँ आने से पहले उन्हीं लोगों ने मुझे बताया कि हम लोग 17 करोड़ लोगों तक पहुंचे, जहाँ पे लोगों को पता ही नहीं था कि ये क्या होता है। वहाँ पे लोगों को ये जागरूकता अलग अलग माध्यम से पहुंचाई, और मैं चाहती हूँ कि ये कार्य मैं और बड़ी लेवल तक आगे तक लेके जाऊँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रीति जी, हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अपनी इस चर्चा को जारी रखेंगे। दोस्तों, हम थोड़ी देर में वापस आते हैं और अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
2: ब्रेक से पहले आइए सुनते हैं भजन सम्राट अनूप जलोटा जी का अंग दान से जुड़ा अपना व्यक्तिगत अनुभव।
3: कहते हैं जान है तो जहान है, बात सच है, लेकिन जब जान नहीं रही तो क्या हम किसी और को जिंदगी दे सकते हैं? जी हाँ, हम जाने के बाद अपनी आंखें किसी को दे सकते हैं, तो हमारी आंखों से वो दुनिया को देख सकता है। हम अपने दूसरे ऑर्गन दे सकते हैं, दिल दे सकते हैं, और किसी और को जिंदगी मिल जाएगी। मेरी वाइफ मेधा, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ और 13 साल उसने जिंदगी और गुजारी। ये तभी हो पाया कि जिसने हार्ट डोनेट किया था उसको ये अवेयरनेस थी कि मेरे जाने के बाद मैं किसी और को एक्स्ट्रा जिंदगी दे सकता हूँ। अगर ये चीज़ हम आप सब समझ जाएं, तो ना जाने कितने लोगों का संसार खूबसूरत हो सकता है हमारे जाने के बाद। हिंदुस्तान में हर साल करीब 5 लाख लोग इसलिए मर जाते हैं कि उनको वो ऑर्गन नहीं मिलते जिससे कि उनकी ज़िंदगी बच सकती है। आप ऑर्गन डोनेट करके हीरो बन सकते हैं। हीरो बनने के बहुत से तरीके हैं, ये भी एक तरीका है हीरो बनने का। इस ज़िंदगी भर कोई आपकी बातें करेगा, एक व्यक्ति 8 लोगों की ज़िंदगी बचा सकता है। 8 लोगों को आप ऑर्गन डोनेट करते हैं केवल एक बॉडी से, और यदि आप ऐसा करते हैं तो वो सब लोगों के तो आप हीरो हो गए। तो कितना अच्छा होगा कि इस बात को समझें और लोगों को समझाएं। हमारा मकसद यही है कि ये खबर सब तक पहुंचाएं, सब इस बात को जानें कि एक आदमी 8 लोगों की जान बचा सकता है, उन 8 लोगों के आप हीरो बन जाएंगे। तो आज ही प्लेश करिए और हमारा साथ दीजिए।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सौरभ और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे प्रीति मस्के जी से, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं और 4 बार हैं। सो हम बात कर रहे थे उनकी जर्नीज के बारे में कि कैसे उन्होंने अंगदान के मैसेज को अपनी जर्नी के थ्रू फैलाया। सो उन्होंने ब्रेक में जाने से पहले, प्रीति जी आपने बताया कि 17 करोड़ लोगों को आपने इसके बारे में जानकारी दी है, तो वेस्ट टू ईस्ट रूट आपने कहा, तो अगर हम सिटी की बात करें तो किस सिटी से किस सिटी तक और इसमें कितनी टोटल सिटीज आपने कवर करी?
2: सिटीज तो काफ़ी कवर की। ये शुरू हुआ था वेस्ट मीन्स पाकिस्तान बॉर्डर कोटेश्वर गुजरात का, और ये खत्म हुआ किबिथू अरुणाचल प्रदेश जो जिसको हम चाइना बॉर्डर बोलते हैं
1: जी।
2: ये था 3955 किलोमीटर का जो हमने तय किया सारी मुश्किलों के बावजूद 13 दिन 18 घंटे और 38 मिनट में, और ये गिनीस रिकॉर्ड बना।
1: 13 दिन 18 घंटे 38 मिनट।
2: हाँ, ये 8 स्टेट में से गुजरे थे हम
1: जी।
2: सबसे चैलेंजिंग तो उसमें था आसाम और अरुणाचल, जो अपने एरिया में किसी को भी सुन के भी लगता है आसाम और अरुणाचल कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत सारी बातें उसके बारे में सुनते हैं।
1: 13 घंटे में तो शायद इंडियन रेलवे भी नहीं पहुंचती दिल्ली से उनका भी टाइम, मतलब जबकि वो कंटिन्यू रन करती हैं। तो आप भी कंटिन्यू रन करती थी या कंटिन्यू साइकिलिंग करती थी या फिर बीच में ब्रेक लेती थी? और अगर ब्रेक लेती भी थी, ऑब्वियसली लेना ही पड़ेगा, तो मैक्सिमम कितने घंटे तक आप ब्रेक लेते हो और उसके बाद कंटिन्यू करते अपनी जर्नी?
2: ये जो अभी वाला सफर रहा वो मिनिमम 17-18 घंटे साइकिल चली, और मैक्सिमम मेरा क्रू बताता है कि 24 घंटे भी चली, मतलब वो बोलते हैं 27 घंटे नॉनस्टॉप चली थी जिसमें खाने का ब्रेक ऑब्वियस था, बट बिना सोए वाला 27 घंटे भी एक बार चली थी, लेकिन बोलते 27 घंटे नहीं है तो 24 घंटे हम चले थे।
1: मतलब हम ये मान लें 24 घंटे कंटिन्यूअसली विदाउट ब्रेक आपने कंटिन्यूस साइकिलिंग करी। तो जैसा मैं भी क्यूरियस हो गया हूँ इस चीज़ के बारे में, मैं भी आपसे जानना चाहता हूँ कि कई बार सिक्योरिटी का इशू होता है, तो अननोन स्टेट्स रहते हैं, अननोन जगह रहती हैं, तो इस तरह की कोई चीज़ आपने सामना किया सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू, या क्योंकि बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं
2: सुनते
1: और आपने बताया कि आप नाइट में भी साइकिलिंग करते हो अगर आप थके नहीं होते तो दिन में रात में, आपके लिए दिन रात कुछ नहीं है।
2: हाँ।
1: तो जी, सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई इशू हुआ आपको?
2: Okay.
1: कहीं डर लगा हो आपको किसी एरिया से गुजरने में? कोई बहुत सारी कहानियां रहती हैं, बहुत सारी चीजें रहती हैं, बहुत सारे एरियाज रहते हैं जो बदनाम रहते हैं, यहाँ पर लूटपाट होती है, यहाँ पर परेशान किया जाता है।
2: ऐसे हर एक रिकॉर्ड में कोई ना कोई एरिया आता है जहाँ पे लोग बताते हैं, लेकिन थैंकफुली मुझे ऐसा कोई एक्सपीरियंस तो नहीं आया है, क्योंकि रिकॉर्ड से सपोर्टेड है तो ऑफिशियल्स और क्रू चलते हैं
1: जी,
2: जो ये रिकॉर्ड्स ऑब्जर्व करके उसको नोट डाउन करते रहते हैं, तो दैट्स व्हाई ये भी हो सकता है तभी मैं दिन रात परफॉर्म कर पाती हूँ। लेकिन हाँ, हर जगह पे क्रू भी बोलते हैं कि आज हम यहाँ पे रुकने वाले हैं, ये एरिया बिल्कुल अच्छा नहीं है
1: जी।
2: ऐसा बिहार में हुआ था, आसाम में भी बहुत सारे क्षेत्र है वहाँ पे सुना था, लेकिन ऐसा मुझे एक्सपीरियंस तो कभी नहीं आया। लेकिन लोगों का तो रहता है कि ये वाला एरिया है ना सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है, यहाँ पे मत जाओ, यहाँ पे आतंकवादी होते हैं, लूटमार वाले होते हैं, जानवर होते हैं, जंगल होते हैं, ऐसा बहुत सारा सुनने में आता है।
1: और आप जिन जिन शहरों से गुजरते हैं तो वहाँ पर जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपकी हेल्प करता है इस चीज़ में?
2: हाँ, आपकी जो भी है सारे लोग हेल्प करते हैं, लेकिन रिकॉर्ड्स में ये होता है कि आप कंटिन्यू चलोगे तो लोग तो चाहते हैं आपसे मिलना या एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन आप रुक नहीं सकते हो।
1: जी।
2: बहुत बुरा लगता है जब लोग बोलते हैं कि हम आपके लिए वेट करते रहे या आप गए और हम आ चुके थे, लेकिन कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपके लिए तब एक ही टारगेट होता है। लेकिन सारा होता है, मेनली मेरे लिए था मनाली लेह साइकिलिंग और रनिंग, ये आता है एरिया अपने आर्मी के अंडर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, तो उन्होंने काफी हद तक वहां पे सपोर्ट किया था, इसलिए ये दोनों सबसे मुश्किल वाले अल्टीट्यूड वाले एक्सपीडिशन सबसे आसानी से हम कर गए, पता भी नहीं चला था। सो होता है हर जगह पे आपके सपोर्ट के लिए कोई ना कोई,
1: जब आपके लिए सपोर्ट के लिए आर्मी खड़ी हो तो फिर किस चीज का डर?
2: सोचा नहीं था, इट वाज सरप्राइजिंगली मिल गया, बट आई एम फॉर्चुनेट कि ये मौका मिला।
1: बिल्कुल बिल्कुल। सो अगर हम अंगदान के बारे में वापस आए तो आपने इसके बारे में क्या फील किया, इस अंगदान के बारे में, कि आपने इतने लोगों को अवेयर किया, इतने लोगों से बातें करी होंगी, आपने मिले होंगे, सबके एक्सपीरियंस जाने होंगे, जो एक्सपर्ट हैं आपने उनसे भी बातें की होंगी, तो अगर आपका व्यू देखें ओवरऑल अंगदान के ऊपर, जागरूकता के ऊपर, तो आप क्या कहना चाहेंगे?
2: मेनली मैं जितना समझ रही हूँ ना, उतना पता चल रहा है कि अपने पास इतना सब कुछ है लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है, इसीलिए बाकी लोग जिनको ज़रूरत है वो इस चीज़ से वंचित हैं। तो ये अंगदान का पहले तो लोगों को पता चले, फिर उसके बारे में अवेयर हो, तो लोग इन्वॉल्व होना शुरू होंगे। सो पहले इसी के ऊपर काम करते हैं कि अवेयरनेस, ये जब तक लोगों में नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। और जब ज़रूरत है तभी हम उठे, मतलब मेरे रिलेटिव्स को, मुझे या मेरे दोस्तों को ज़रूरत है तभी हम इसके बारे में क्यों बोले, अभी से हम इसके बारे में बात करें, उसके ऊपर काम करें, जब बाकी लोगों को ज़रूरत है और हम कुछ कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
2: तो ये हर एक जन सोचेगा ना तो हम बहुत लंबा जा सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल प्रीति जी, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, इसलिए मैंने आपका एग्जाम्पल इस पॉइंट पर दिया कि आप एक लौती ऐसी हैं पर्सन हैं जिनसे मैं मिला हूँ, जिनसे इसके आगे पीछे का कोई रिलेशन नहीं दिखता, फिर भी आप इस चीज़ से जुड़ी हुई हैं। सो प्रीति जी, हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक में आके हम अपनी इस चर्चा को जारी रखेंगे। श्रोताओं, आप कहीं मत जाइएगा, हम अभी 2 मिनट के ब्रेक में आते हैं।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: नमस्कार दोस्तों, हम वापस आ गए हैं अपने इस शो में। हम बात कर रहे हैं प्रीति मस्के जी से, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं और अपनी अगली जर्नी के लिए बिल्कुल रेडी हैं। सो प्रीति जी, हम बात कर रहे थे अवेयरनेस के ऊपर, तो आपने बताया कि लोगों को इससे अंगदान से तब नहीं जुड़ना चाहिए कि जब उनके घर में किसी को ज़रूरत हो या कोई पेशेंट है जिसके उन्होंने अंगदान किए हों। इन सब कारणों के बिना भी खुद से बात करनी चाहिए इनके ऊपर। तो अगर आपका एग्जाम्पल दिया जाए कि आपने ऐसा ही किया, तो कभी आप ऐसे लोगों से मिली हैं जिनका इससे लिंक ना हो, फिर भी वो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, इस चीज़ के ऊपर काम करते हैं?
2: मैंने इसी चीज़ से इम्प्रेस होकर करना शुरू किया। मैंने जिनका जिक्र किया था लास्ट वाले रिकॉर्ड में, जिनके साथ काम किया था रीबर्थ फाउंडेशन, उसमें से एक भी मेंबर ना कभी उन्होंने किसी को ज़रूरत थी उनके फैमिली मेंबर में या उनको इसीलिए शुरू किया, बल्कि वो लोग ऐसा कुछ करना चाहते थे समाज के लिए, इसलिए उन्होंने शुरू किया था। तभी मुझे लगा था कि अगर ये ज़रूरतमंद नहीं है या ना डोनर है ना रिसिपियंट है, फिर भी काम कर रहे हैं, तो मैं भी कर सकती हूँ। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे लोग हैं जिनकी वजह से ये दुनिया चल रही है, हम ऐसा बोल सकते हैं, तो उन्हीं के कारण है। तो यही लोग सोचने पे मजबूर करते हैं कि हाँ, हम एक कदम उठाते हैं लोगों को मदद करने के लिए।
1: अगर हम फ्यूचर की बात करें, तो अब फ्यूचर प्लान्स आपके क्या हैं इसको अंगदान को लेके?
2: अगले महीने मैं कश्मीर टू कन्याकुमारी साइकिलिंग कर रही हूँ।
1: कश्मीर टू कन्याकुमारी? हाँ। वर्टिकल में पूरी इंडिया को?
2: हाँ, जो पहले कर चुकी हूँ, अभी कम से कम टाइम में रिकॉर्ड के लिए कर
1: एक बार आप कर चुकी हैं?
2: कर चुकी हूँ।
1: वो कितना, क्या टाइमिंग थी उसकी वो, जिसमें आपने फिनिश किया था?
2: ये नॉन सपोर्टेड था इंडिया बुक रिकॉर्ड के लिए। 2019 में सबसे पहला एक्सपीडिशन था, और वो मैंने 17 दिन 17 घंटे में हमने किया था ग्रुप से, और अभी जितना मिनिमम हो सके
1: खुद के रिकॉर्ड को तोड़ने की पूरी तैयारी में।
2: हाँ, ऐसा बोल सकते हो।
1: और इसमें कौन से कॉज को आप सपोर्ट करने की
2: ऑब्वियस
1: कोशिश कर रहे हैं?
2: ऑर्गन डोनेशन ही है अभी तो, ये मेरी लाइफ से जुड़ चुका है। मैं चाह भी जब भी जाऊंगी, मतलब जो कुछ भी करूंगी।
1: ऑर्गन डोनेशन से पहले कॉजेस चेंज होते थे, लेकिन जब ऑर्गन डोनेशन आया तो उसके बाद अब वही मेन चीज है,
2: क्योंकि यहाँ पे इसमें करने जैसा बहुत कुछ है।
1: बिल्कुल, ये एक तरह से हर चीज का अपने अंदर कवर कर लेता है। अगर आप बात करें कि अदर हेल्थ फैक्टर्स की, कि चलो अंगदान की नौबत ही ना आए,
2: हाँ,
1: तो अगर हम फिटनेस को प्रमोट करेंगे तो अंगदान की नौबत ही नहीं आएगी, तो एक तरह से आप वो भी सपोर्ट कर रहे हो। अगर अंगदान की नौबत आ गई है तो आप अंगदान लोग ज्यादा से ज्यादा करें, उसके लिए जागरूकता पर काम कर रहे हो। और जिन लोगों ने अंगदान करवा लिया है, उनके लिए भी एक तरह से आप परफेक्ट एग्जाम्पल हो कि एक पर्सन जिसका कोई लेना देना नहीं है इनसे, वो इतना कर सकता है जब इस कॉज को प्रमोट करने के लिए। तो जिन लोगों को ऑलरेडी अंग मिले हुए हैं, जो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहे हैं, एक नई ज़िंदगी उन्हें मिली है, तो वो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करें और इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। एक तरह से तीनों चीज़ें हमने कवर कर ली हैं जी। ओके, तो प्रीति जी, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हमारे श्रोताओं को अगर आप कोई संदेश देना चाहती हों फिटनेस पर, अंगदान के ऊपर, या अंगदान से जुड़े हुए जो भ्रांतियाँ हैं आपने समाज में सुनी होंगी, तो उनके ऊपर तो आप क्या कहना चाहेंगे?
2: एक तो है, पहले खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालो, थोड़ा सा फिटनेस के ऊपर ध्यान दो। ज़्यादा नहीं, आधा या पौना घंटा बहुत काफ़ी है, जिससे सच में नौबत ही नहीं आएगी कि हमको रिसिपिएंट होने की।
1: अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं प्रीति जी, जब आपने ये बात कही पहली कि पहले खुद के लिए थोड़ा सा टाइम लगा लो, निकालो, तो मैं भी डॉक्टर हूँ और मैंने कई लोगों को ये ऑब्जर्व किया है कि जब आप उनसे बोलते हैं कि आप कसरत करें या आप थोड़ा सा अपने फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, तो लोगों को ये लगता है कि हम उनके मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग टाइम की बात कर रहे हैं, और जो उनके लिए पॉसिबल नहीं रहा। तो मैं आपके माध्यम से भी ये बताना चाहूँगा हमारे श्रोताओं को कि टाइम इज़ नॉट द रेस्ट्रिक्शन।
2: यस,
1: मतलब अगर आपको सुबह नहीं उठते बनता, बिल्कुल मत उठिए, आप बिल्कुल सुबह वाली कसरत मत करिए, वो अच्छी है सबसे अच्छी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप उसके अलावा किसी और टाइम में कर रहे हो तो वो फायदेमंद नहीं रहेगी। आपको अगर रात को 10 बजे टाइम मिलता है, सोने से पहले आधा घंटा अपने आप को दें, थोड़ी स्ट्रेचिंग, थोड़ा सा योगा भी कर सकती हैं आप, या फिर एक सिंपल वॉक, 5-6 हज़ार स्टेप्स की एक सिंपल वॉक भी आप करें तो बहुत सारी चीजें आपकी, आप 15 दिन के अंदर खुद के अंदर बहुत सारी चीजें चेंज होते हुए देखेंगे। तो ये टाइम रेस्ट्रिक्शन बहुत लोग मानते हैं कि अच्छा किसी ने कसरत करने की बोल दी, अब सुबह कौन उठाएगा, मुझसे तो नहीं उठा जाएगा। तो ये टाइम रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको रात को 12 बजे टाइम मिलता है, आप तब कर सकते हो।
2: और मैं ना और वही, आपको किसी आप जो फिटनेस शुरू करोगे ना उससे अपने आप टाइम मिलेगा
1: जी,
2: क्योंकि ना आप जो फास्ट हो जाओगे ना बाद में दिन भर सुबह के आधा घंटे से कसरत से, वो टाइम आपका पूरे दिन का 1 घंटा से ज्यादा बचाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: क्योंकि अपने आप वो फास्टनेस अपने आ जाता है
1: जी,
2: और पॉजिटिविटी आती है। क्योंकि पूरा दिन अपन अगर अपने टेंशन के बारे में, काम के बारे में सोचेंगे, फिटनेस में कोई भी फिटनेस हो या शौक हो उसमें आप अपार्ट फ्रॉम सोचते हो, वो जो टाइम होता है ना वो आपको एक रिफ्रेशिंग फ्रेगनेंस दे जाता है लाइफ में।
1: बिल्कुल बिल्कुल। सो आप अंगदान के बारे में कुछ कह रही थी,
2: तो यही है कि इसीलिए आप मेन फिटनेस करो तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, और फिर भी पड़ी तो सबके लिए सोचना शुरू करोगे ना तो आपके लिए अपने आप सोचा जाएगा। तो हम क्यों सोचे, हमारे घर में किसी को जरूरत नहीं है, दोस्तों को नहीं है, ये बात छोड़ दो। सिर्फ हम जहाँ पे है ना वहां से हम क्या दे सकते हैं, इस बारे में सोचना शुरू करोगे ना तो कम से कम उसके बारे में बात करो, ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस के बारे में, या किसी को जरूरत है उसको हेल्प करो, या जो दूसरे को हेल्प कर रहा है उसको सपोर्ट भी करो ना, तो भी वो बहुत बड़ी चीज होती है।
1: और जितनी ज्यादा हम बात करेंगे उतनी ज्यादा भ्रांतियां खत्म होंगी, क्योंकि अक्सर हम लोग कोई भ्रांति ऐसी सुनते हैं किसी के मुंह से तो हम लोग वो अपने तक रख के बैठ जाते हैं, उसके बारे में डिस्कस ही नहीं करते, तो वो क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं होता। तो अगर आपको ऐसा कुछ सुन रखा है तो आप अपने परिवार में, अपने दोस्तों से, या फिर आप हमारी हेल्पलाइन पर भी कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, हम उन भ्रांतियों को तोड़ेंगे और आपको सही जानकारी देंगे। तो प्रीति जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें इतना टाइम दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने हमारे श्रोताओं को बताई।
2: धन्यवाद, थैंक यू।
1: तो दोस्तों, ये थी प्रीति मस्के जी, जिन्होंने 4 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। आमतौर पर लोग जब शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद ये सोचते थे कि अब तो यही हमारी लाइफ है और बस घर गृहस्थी में ही जुटना है, तो प्रीति जी एक परफेक्ट एग्जांपल है कि वो चीज़ तो कहीं गई नहीं है, वो चीज़ तो आप तब भी कर सकते हो लेकिन समाज के लिए कुछ ज़रूर करना चाहिए। जैसे कंपनीज़ की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वैसे एक इंडिविजुअल की भी CSR पॉलिसी होनी चाहिए कि आप समाज से जितना भी कुछ लिया है आपने आज तक उसको वापस क्या दे रहे हो। तो मैं आप लोगों से, सभी से यही विनती करना चाहूँगा कि प्रीति जी जैसे समाज को बहुत कुछ देने की कोशिश कर रही हैं, हम सभी को भी कुछ ना कुछ समाज को देना चाहिए। ज़रूरी नहीं है अंगदान, आप कोई और चीज़ टॉपिक भी उठा सकते हैं और किसी ना किसी रूप में समाज के प्रति थोड़ा सा जागरूक बने, समाज के प्रति थोड़ा सा उत्तरदायी बने। इससे बहुत सारी चीज़ें हमारी कंट्री की, हमारे वर्ल्ड की सुरक्षित भी होती हैं और ठीक भी हो जाती हैं। तो इसके साथ ही मैं आज के शो में आपसे विदा लेता हूँ। अगली बार हम जल्दी से हाजिर होंगे आपके सामने एक नई हस्ती के साथ और एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।
3: आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, एकता का परचम चहुं ओर फहराएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, दिया है हौसलों की उड़ान का, दिया है उत्सर्ग के सम्मान का, दिया है राम का रहमान का, दिया है समग्र हिंदुस्तान का। जीवन संगीत बजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं।
4: आज का ये विशेष कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे इसी संदेश के साथ विदा लेते हैं कि अगर हम अंग दान या नेत्र दान करें या अपने जाने के बाद किसी के जीवन में खुशियां भर सकते हैं तो हमें ये जरूर करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800120 3648 पर फोन कर सकते हैं या info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं। यदि आप अंग दान का संकल्प लेना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और एक सर्टिफिकेट ईमेल किया जाएगा। इसके बारे में आप अपने परिवार को जरूर बताएं और अपने आसपास सभी को प्रेरणा दें। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है, अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें, अंगदान का संकल्प लें, अंगदान जीवन दान।
1: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन उसके मालिक कर्मचारी प्रबंधन प्रायोजक एवं सहयोगी जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वार्ता कार्यक्रम के दौरान उसमें उपस्थित अतिथियों समेत दिए गए कोई भी बयान या मत या विषय का हम किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं। हम इसे सत्य कहकर इसका समर्थन नहीं कर रहे, इसका निर्णय आप स्वयं करें। यद्यपि हमारी कोशिश ईमानदारी से सच कहने की ही रहेगी तथा यदि कोई अपेक्षित सत्य हो तो उस पर सवाल करने का अधिकार हमारे पास रहेगा। हमारा इरादा किसी को बदनाम करना, किसी से भेदभाव करना, नफरत फैलाना या किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। इसके अलावा ये कोई चिकित्सा सलाह नहीं है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चिकित्सा उपचार से संबंधित नहीं है। हमारा विश्वास है कि ये हमारे बुनियादी अधिकारों का हिस्सा है और साथ ही हमारा कर्तव्य है कि हम इस जानकारी या राय का प्रसार करें। हालांकि हम अन्य लोगों की लिखित बोली गई या सांकेतिक राय की जिम्मेदारी नहीं ले सकते।

0: को जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी के लिए फिलहाल 1100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं और सरकार का उद्देश्य इनकी संख्या प्राथमिक स्वास्थ्य इकाइयों के स्तर तक ले जाने का है। सुश्री पटेल ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को ये जानकारी देने की सूची में भारत 8वें स्थान पर पहुंच गया है।
1: इंडिया टुडे हैज रिजन फ्रॉम द
2: भारत आज WHO के डेटाबेस में दवा सुरक्षा संबंधी जानकारी साझा करने में दुनिया में 8वें स्थान पर है, जबकि 2009 से 2014 के बीच वे 123वें स्थान पर था। दुनिया के करीब 25 देश भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देते हैं और स्वीकार करते हैं।
1: Which recognize and accept the Indian pharmacopoeia।
0: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आज मेरठ पहुंचे। श्री नबीन आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मेरठ और सहारनपुर के दौरे पर हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद श्री नबीन का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये पहला दौरा है। इस दौरान उन्होंने बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल और जिला स्तर तक संगठन की तैयारियों की समीक्षा की और कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद किया। श्री नबीन ने सुभारती विश्वविद्यालय में आयोजित युवा संवाद में छात्र छात्राओं से बातचीत की। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में आवारा पशुओं के लिए आश्रय स्थल बनाने के निर्देश के खिलाफ दायर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित करने पर सहमति व्यक्त की है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ ने प्राधिकरण को आश्रय स्थल बनाने का निर्देश दिया था, जबकि ये जिम्मेदारी स्थानीय निकायों और प्रशासन की है। सॉलिसिटर जनरल ने प्राधिकरण की याचिका पर सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की विशेष पीठ के पुनर्गठन का भी अनुरोध किया। दिल्ली उच्च न्यायालय में आज 7 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 50 हो गई है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय ने न्यायमूर्ति निवेदिता अनिल शर्मा, निशा सहाय सक्सेना, संजय शर्मा, भरत पाराशर, अदिति चौधरी, दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज को पद की शपथ दिलाई। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ को लेकर लोगों से सतर्क रहने को कहा है। विभाग ने दोहराया है कि ऐसा किया जाना एक दंडनीय अपराध है, जिसमें 3 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। संचार मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अपने मोबाइल का नियमित रूप से सत्यापन करें। आधुनिक युद्धक क्षमताओं से लैस स्वदेशी जहाज INS सह्याद्री और INS कुलिश फिलीपींस की सुबे खाड़ी पहुंचे। दोनों जहाजों को नौसेना की संचालनगत तैनाती के अंतर्गत भेजा गया है। ये युद्धपोत फिलीपींस में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक और संयुक्त सहयोग गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। रूस में सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसदीय चुनाव में बढ़त बना ली है। रूस के केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अनुसार पार्टी ने करीब 58% वोट हासिल किए हैं। अंतिम परिणाम 25 सितंबर तक आने की उम्मीद है। यूनाइटेड रशिया पार्टी ने पिछले चुनावों में 324 सीटें जीती थी। ये चुनाव यूक्रेन के साथ जारी संघर्ष के बीच हो रहा है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 2 पदक जीते। हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भी रजत पदक जीता था। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में महिलाओं के 60 किलोग्राम पारंपरिक सेमीफाइनल में सिंगापुर की हुई हुंटो से 0-2 से हारने के बाद सुचिका तारियाल ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: दोस्तों, जब जनगणना अधिकारी आपके दरवाजे पर आए तो वो आपसे फोटो आईडी, दस्तावेज और यहाँ तक कि आपके फोन का ओटीपी भी मांगेंगे। जरा संभल के रहिए। बिल्कुल गलत। आइए आज सच जानते हैं। जनगणना अधिकारी कभी भी आपसे फोटो आईडी, ओटीपी या कोई भी दस्तावेज नहीं मांगेंगे। बस उनके सवालों का सच्चाई से जवाब दीजिए। ऐसी अफवाहों से दूर रहिए और जनगणना में जरूर हिस्सा लीजिए।
3: हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: क्या हुआ? अरे इसे क्या हुआ?
1: सांप ने काटा, सांप ने।
2: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
3: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते हैं, अभी ठीक हो जाएगा।
2: या फिर मुंह से जहर चूस के निकालें क्या?
4: अरे ठहरिए ठहरिए, अस्पताल ले जाने के अलावा आप लोग सब ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं।
5: उठा उठा उठी, अस्पताल ले जाओ भाई।
4: कमाल के हाँ हाँ, इन्हीं सब के चक्कर में हर साल मैं आपको बता दूं, 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए, समझे? तो याद रखिए देवी और सज्जनों, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
2: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
6: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
7: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
8: धृतराष्ट्र ने अपने 100 बेटे क्यों खो दिए? कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ था, धरती खून से लाल थी, राजमहल में एक पिता धृतराष्ट्र टूट चुके थे। कृष्ण के सामने फूट पड़े और कहे, प्रभु मेरे 100 बेटे मेरी आंखों के सामने मारे गए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? कृष्ण ने उनकी पीड़ा सुनी और शांत स्वर में कहा कि महाराज, आज से 50 जन्म पहले आप एक शिकारी थे। आपने एक पक्षी को मारने की कोशिश की लेकिन निशाना चूक गया। क्रोध में आकर आपने उस पक्षी के 100 बच्चों को मार डाला। आज जो दुख आप झेल रहे हैं वो उसी पाप का फल है। धृतराष्ट्र रोते हुए कहते हैं कि लेकिन प्रभु वो पाप तो 50 जन्म पहले किया था, सजा क्यों? कृष्ण बोले, क्योंकि पिछले जन्मों में आपने बहुत पुण्य कमाए थे, उन्हीं पुण्यों के चलते आपको इस जन्म में 100 पुत्र मिले, ताकि आप अपने कर्मों का फल का पूरा भोग सके। जीवन का सत्य यही है, कर्म लौटते जरूर है, कब लौटेंगे?
9: कुछ मीठा बोलो।
10: रहने तो तुम्हारे बस की नहीं है।
9: मैं खाने की बात कर रही थी।
10: एक खाओ कर, गुलाब जामुन मंगा दो।
9: कोई जरूरत नहीं है, अब घर चल के ही खाना। तो

श्रोताओं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी हो इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी ते मेरे नाल तुसी कार्यक्रम इंजॉय करना है आज पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम। जी हाँ श्रोताओं आओ सुनदे ने कार्यक्रम दा सब तो पहला पंजाबी गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी कार्यक्रम तुसी इंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम ते आओ श्रोताओ सुनते ने कार्यक्रम दा अगला पंजाबी गीत।

दोस्तों मैं थोड़ी रेडियो दोस्त पिंकी ते मेरे नाल तुसी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हो पंजाबी की तादा कार्यक्रम रेडियो गुंजन धर्मशाला ते 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते।

श्रोता 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी बने होए हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम।

दोस्तों मैं थोड़ी रेडियो दोस्त पिंकी ते मेरे नाल तुसी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हो पंजाबी की तादा कार्यक्रम रेडियो गुंजन धर्मशाला ते 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: दोस्तों, जब जनगणना अधिकारी आपके दरवाजे पर आए तो वो आपसे फोटो आईडी, दस्तावेज और यहाँ तक कि आपके फोन का ओटीपी भी मांगेंगे। जरा संभल के रहिए। बिल्कुल गलत। आइए आज सच जानते हैं। जनगणना अधिकारी कभी भी आपसे फोटो आईडी, ओटीपी या कोई भी दस्तावेज नहीं मांगेंगे। बस उनके सवालों का सच्चाई से जवाब दीजिए। ऐसी अफवाहों से दूर रहिए और जनगणना में जरूर हिस्सा लीजिए।
3: हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
1: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते हैं, अभी ठीक हो जाएगा।
0: या फिर मुंह से जहर चूस के निकाले क्या?
2: अरे ठहरिए ठहरिए, अस्पताल ले जाने के अलावा आप लोग सब ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं।
3: उठाओ उठाओ डीसी, अस्पताल ले जाओ भाई।
2: कमाल के हाँ, इन्हीं सब के चक्कर में हर साल मैं आपको बता दूं 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए, समझे? तो याद रखिए देवी और सजनो, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
0: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
4: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
5: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
6: धृतराष्ट्र ने अपने 100 बेटे क्यों खो दिए? कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ था, धरती खून से लाल थी, राजमहल में एक पिता धृतराष्ट्र टूट चुके थे, कृष्ण के सामने फूट पड़े और कहे, प्रभु मेरे 100 बेटे मेरी आंखों के सामने मारे गए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? कृष्ण ने उनकी पीड़ा सुनी और शांत स्वर में कहा कि महाराज, आज से 50 जन्म पहले आप एक शिकारी थे, आपने एक पक्षी को मारने की कोशिश की लेकिन निशाना चूक गया, क्रोध में आकर आपने उस पक्षी के 100 बच्चों को मार डाला, आज जो दुख आप झेल रहे हैं वो उसी पाप का फल है। धृतराष्ट्र रोते हुए कहते हैं कि लेकिन प्रभु वो पाप तो 50 जन्म पहले किया था, सजा आप क्यों? कृष्ण बोले, क्योंकि पिछले जन्मों में आपने बहुत पुण्य कमाए थे, उन्हीं पुण्यों के चलते आपको इस जन्म में 100 पुत्र मिले, ताकि आप अपने कर्मों का फल का पूरा भोग सके। जीवन का सत्य यही है, कर्म लौटते जरूर है, कब लौटेंगे?
7: कुछ मीठा बोलूं?
8: रहने तो तुम्हारे बस की नहीं है।
7: मैं खाने की बात कर रही थी।
8: एक काम करो, गुलाब जामुन मंगा दो।
7: कोई जरूरत नहीं है, अब घर चल के ही खाना। तो

कानवी दशमलव दो मेगा हर्ट्स पर ए दोहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने में शशि हाजिर होई यो कार्यक्रम लेकरी माटी दी महक तशु तो माटी दी महक कार्यक्रम दे सफर च तोहा सारे दा ही स्वागत है। इसी कने स्वागत जेड़े से यहाँ करी ते कने तोहा सारे भी कार्यक्रम कने जुड़ी होने न अपना अपना जेड़ा रेडियो सेट है से ऑन जेड़ा से तुहां करी लिया होना है। तो रेडियो सेट ऑन करी लिया तो उन्हें एक और काम जेड़ा से करी लिया उन तुहां सोचा दे उन्हें कि क्या काम करना। जेड़ा सबसे पहला काम था से तो तुहां सारे ही जरूर करी लिया होना है कने अगर नहीं किते होंगे तो जल्दी जल्दी अपना अपना रेडियो सेट जेड़ा से ऑन करी लिया कने जेड़ा फ्रीक्वेंसी है से भी जरूर तिहा जो भी सेट करी लिया क्या वे फ्रीक्वेंसी है 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस वक्त जेड़ा कार्यक्रम चलिया है से चलिया है माटी दी महक नंबर भी जेड़ा दुआ काम मैं तुहां तक पहुंचाना चाहती थी से नंबर तुहां तक पहुंचाना है कि नंबर तुहां तक पहुंचेगा ताई तो तुहां इस नंबर पर कॉल करी सकते या टेक्स्ट मैसेज करी सकते या व्हाट्सएप मैसेज जेड़ा है से जरूर करी सकते। तो मुझे लगा था तुहां पेन या कॉपी जरूर पकड़ी लिया होना है या मोबाइल फोन अपना पकड़ी लिया होना है। नंबर है 701-811-7091 नंबर तुहां तक पहुँचाई तय कने बाकी जेड़ा काम है से तुहां दे। इसी कने अहां अपने कार्यक्रम दा जेड़ा आगाज है से जरूर कर देना क्योंकि कार्यक्रम दा आगाज अगर एक प्यारे दे गीत कने होइया तो कार्यक्रम दा जेड़ा सफ़र है से और भी प्यारा लगता है। तो जरूर सफ़र जो हाँ प्यारा बनाना है कने तो सारे भी इस सफ़र जो अपनी जेड़ा हाजिरी है से जरूर लगा देना कने हाँ भी तुह तक जेड़ा तुह दियाँ प्यारिया प्यारिया फरमाइशन प्यारे प्यारे गीत हैं सभी तुह तक पहुँचा देन। तो आगाज करा दे इस गीत कने तुह सारे भी इंजॉय करा कार्यक्रम का जेड़ा माहौल है उस जो थोड़ा दिया बदलाव कर देना तो इस कने गीत तुह तक पहुँचा दे।

0: अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला पहले श्रोता हाँ कन्ने जुड़ चुके हो न कर दें तिना कन्ने गल बात। हेलो
1: हेलो नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न
1: जी? ठीक ठाक है
0: जी। यहाँ भी ठीक ठाक है जी। तुह कुतु ते बोला देख ने तुहांदा ना किए जी?
1: ना सुकड़े ते बोला भी ना
0: जी। सुकड़े ते माया जी?
1: हाँ जी
0: जी। तो माया जी क्या काम कार तुह लगाया, क्या करा दे?
1: खाना
0: खुना जी खाई लिया फिर प्रोग्राम में सुनना जी शुरू हुई।

0: ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਜੀ ਜੁਨੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ
1: ਬੜਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ
0: ਜੀ
1: ਜੀ
0: अगले जेड़ा श्रोता है ना सभी जुड़ चुके हैं ना कर दें तीना करने गल बात। हेलो
2: नमस्ते महाराज जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला चे। ठीक ठाक है ना?
2: हां जी ठीक ठाक महाराज जी।
0: जी तुहां कुत्थों ते बोला दे कने तुहांदा नाम के है जी?
2: मैं जी डार ते बोला दा जी, मेरा नाम हरदेव है जी।
0: जी डाड दे हरदेव जी बोला दे
2: जी महाराज
0: जी। ता हरदेव जी आज कना जेड़ा दिन है सेक दे है की चलिया तो हंदा
2: दिन महाराज? बिल्कुल ठीक ठाक है जी।
0: जी ठीक ठाक है न?
2: बिल्कुल उस मालिक दी मोई ते चले ठीक है
0: जी। ता
2: कने हां जी बोल दे नी जे कोई साथ सती होए नी सा गलाई करनी हुंदी जनाब कुठी था 6 बजे का टाइम था, सड़क सुतड़ी है दखिये दे बाहर। ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜੀ।
0: ਜੀ ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਨੇ ਲਗਾਣੇ ਵਾਲੀ ਹੁੰਗੀ ਤਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਜੀ ਪੱਟੀ?
2: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਨਾਬ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਜੀ, ਕਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰੇ ਚ ਮਤਲਬ ਫੋੜੇ ਹੋ ਗਿਆ
0: ਜੀ।
2: ਅਲੀ ਕੀ ਦਵਾ ਖਾਦੀ
0: ਜੀ,
2: ਮੈਂ ਦਵਾ ਸੜੀਤੀ
0: ਜੀ।
2: ਕਨੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆਇਆ ਕਨੇ ਬਣਾ ਕਨੇ ਗਾਂਧਰਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਕਨੇ ਛਾਰਾ ਮਾਰਾ ਲਿਆ, ਕਨੇ ਜਵਾਨੇ ਪਾਈ ਕਨੇ ਬਾਂਹ ਲਵਾਸੀ ਜੀ।
0: फायदेमंद राष्ट्रीय चाय दिवस पसंद है कि नहीं है?
2: जनाब पहले पहले प्रसन्न होंगी जी, चल चल रेडियो सुने कि चाह घर पीना चाहिए, पहले ऐसे कि दिने दे चार चार बारी चाह पींदे पांच पांच बारी पींदे, और मैं दिने दे ध्यागा पीनी कने संझा दिए पीनी है बस।
0: कटाई थी चाह तो?
2: हां जी हां जी कटाई थी महाराज जी।
0: जी जी हां जी, तो मैं अपनी गल करे तो मिंजू तो जितनी बारी चाह मिली है मैं उतनी बारी पी लेंदी।
2: चलो सर अपनी खुशी है महाराज जी।
0: हरदेव जी डार दा मौसम कदे है?
2: मौसम बिल्कुल साफ है जी। बाकी जान क्या कुछ कुछ पक गया कुछ कच्चे
0: भी
2: निसरे भी नी जी। हां
0: हरदीप जी आज तुम कुंदिया गीत जिड़े से सुनना पसंद करके
2: आगे ये सीता बाबा जी बैठे पीछे संगत सारी जी।
0: हां जी जहाज बनाना
2: जी महाराज जी।
0: जी जरूर तो हंदी जेड़ा फरमाइश है भजन है से तुम तक पहुंचा दें जी, जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तो हंदा।
2: धन्यवाद महाराज जी।
0: तो शो तो हम भी अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ान दे ने कने तो जो लेकर चल दे ना अगली फरमाइश दी ओर। त ਤੈਨੇ ਸੁਣਦੇ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਗੁੰਜਨ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਗੁੰਜ।

0: तो श्रोताओं तो सारे सुनिया ये भजन फरमाइश माया जी तक हाँ ये फरमाइश पहुँचाई कने से रहने वाले न सुकड़े ते तो इसी कने आज हाँ जिड़ा कार्यक्रम च खास दिन बना दिन या दिनांक दी ओर चलिए ता आजकनी जिड़ा दिनांक है सेवे 21 सितंबर 2026 दिने दी गल करिए ता सोमवार दा ये दिन है कने जिड़ा शुरुआत है से आंदी अजकने दिने ते जिड़े से हो आंदी है क्योंकि पिछले कल था संडे कने संडे वाला दिन थोड़ा आंदा मौज मस्ती भरा होंदा कने फ्री ते दिने दी जिड़ा दिनचर्या है से शुरू हो आंदी है। इसी कने आहां जिड़ा दिने दी शुरुआत करदे न से चाहे कने आहां अपने दिने दी जिड़ा शुरुआत है से जरूर करदे न चाहे ना मिले तो कुछ अधूरा दिया अधूरापन जिहड़ा इसे लगता है जिन्हें चाहे मिली आती है तो कुथी ना कुथी अहां दा जिहड़ा दिने दी शुरुआत है सभी बेहतर तरीके ने जिहड़ा इसे हो जाती है। इसी कने अगले जिहड़ा श्रोता ने से जुड़ चुके हो ना कर दें तीन कने गल बात। हेलो
1: हेलो मैडम नमस्ते।
0: नमस्ते जी स्वागत है जी तुम्हारा।
1: मैडम मैं यो से बोल रहा पर सलाम
0: जी योल ते बोला दे पर सराम जी।
1: हाँ एक भजन है शेर सिंह का।
0: जी जी
1: हाँ जी
0: जी कुंडिया
1: शेर सिंह का चूरना बोली काटना तोली
0: जी
1: ये बोला भजन शेर सिंह दे।
0: जी जी अच्छा ये भजन तो हाँ सुनने है जी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी तक दिया लग गया तो हम जो कार्यक्रम जी।
1: हाँ जी हाँ जी बड़ा अच्छा लग रहा।
0: जी जी
1: बस और कहा ठीक है काम।
0: जी जी ता
1: हाँ
0: जी ता आज जेड़ा कार्यक्रम च खास दिवस हां बना देन सभी तो हां सुनी ली होनी है गल बात।
1: हां जी सारी सुन रहे हां
0: जी ता तोहंदी भी फेवरेट है चाहे कि नहीं।
1: हां जी
0: चाहे जेड़ा ऐसे तोहंदी भी पसंदीदा है कि नहीं है।
1: हां जी हां जी ठीक ही है मेरे जेड़ा मेरे खल्ले जेड़ा घट सुबह दा कल गल है।
0: जी अच्छा
1: तेरी आवाज दा अच्छा हो जा दी।
0: जी जी अच्छा मेरी आवाज जेड़ा ऐसे तू हां तक क्लियर पूजा दी कि नहीं पूजा दी।
1: आवाज साफ नहीं पूजे पीछे हटा दी आवाज।
0: जी अच्छा पीछे हटा दी।
1: हां जी
0: जी उन ठीक पूजा दी।
1: हां जी हूं ठीक है।
0: जी जी को दी ओड़ी ना जी।
1: हां जी सब ठीक है जी।
0: जी जी जरूर तो हुंदी जेड़ा फरमाइश है से तू हां तक पहुंचा दें जी।
1: ठीक है लड़ी जी जय माता दी।
0: जी अगले जेड़ा श्रोता है ना सभी यहाँ कने जुड़ चुके हैं ना कर दें तीन कने गल बात। हेलो
2: नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते जी स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च ठीक ठाक है ना।
2: मैडम जी है जी।
0: जी तुहां कुत्थों दे रहने वाले ने कने तुहांदा नाम क्या है जी।
2: हां अपना रसाई दे रहने वाले अशोक
0: जी। जी रसाई दे रहने वाले अशोक जी। जी ता अशोक जी क्या हाल चाल है इन रसाई वाले आंदे।
2: बड़े अच्छी बढ़िया मौसम है
0: जी। अच्छा मौसम बड़ा बढ़िया है ना जी। जरूर मौसम दा जेड़ा लुप्त है सभी लै दे होने ना कने चाय दी जेड़ा प्याली है सभी जरूर पी दे होने तो हां ना जी।
2: जी कम है जी व्यसन पूरे।
0: जी चलो काम भी करने कने चाय भी पीनी है ना जी क्योंकि आज जहां खास दिन जेड़ा से बना दे ना जी। जी जी ता आज तो हां कुंदिया गीत जेड़ा से सुनना पसंद करके जी। हेलो श्रोताओं कॉल जेड़ा से जरूर डिस्कनेक्टेड हुई हो ता कार्यक्रम च जेड़ा गलबात अह कन चाय दी चाय जेड़ा से हर कुसी दी पसंद है। इसी कने अहां अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ांदे न कने तुहां जो अगले फरमाइश की ओर लेकर चलते न हरदेव जी तक कहाँ ये भजन पहुँचा देन कने से रहने वाले न डाड़ते तो हाँ सारे भी इस भजन जो इंजॉय करा।

आबोला दिन रेडियो गुंजन धर्मशाला ते गणतोहा सारे इस वक्त कार्यक्रम एंजॉय करा देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने इसी कन्ने तोहा जेड़ा गलबात है सभी एंजॉय करा देने न कन्ने समय भी अपनी रफ्तार लेकरी जरूर चले आए 2 बजे करी 3 मिनटा कार्यक्रम चोइया न कन्ने आधा घंटा जेड़ा है इसे कार्यक्रम दा निकली है तो जल्दी जल्दी तोहा सारे भी कार्यक्रम दे सफर चाहां करने जुड़ी सकते 21 सितंबर दी गल करिए ता आज जहां जेड़ा खास दिन बना देन से बना देन राष्ट्रीय चाय दिवस। चाय पीने दा हर कोई शौकीन है पर चाय पीने दे फायदे भी हैं नुकसान भी हैं से तो हां जो पता है कि हर चीज़ अगर लिमिट ते ज़्यादा हो जाती है तो कुथी ना कुथी से हां जो नुकसान भी जरूर दिंदी है। तो शो तो जिड़ा दिन की शुरुआत है से हाँ चाय कन्ने करते न कन्ने कई बार हाँ 2 ते 3 बार या 4 बार जिड़े से चाय दी प्याली जिड़े से जरूर पी लेंदे न। तो आजकना जिड़ा हाँ खास पर्व त्यौहार ही बोली सकते कि चाय दा जिड़ा त्यौहार हर दिन वैसे तो दिन की शुरुआत बाकी कुछ मिले ना मिले पर चाह जिड़े से अहां जो मिलना चाहिए कने अगर चाह ना मिले तो कुछ अधूरापन जिड़े से जरूर लगता है कि चाह जिड़े से अहां जो नहीं मिली है। तो जरूर जिड़ा भी चाय दे प्रेमी हैं जिन्हें जो चाह चाह चाह पसंद है या हर किसी की अपनी अपनी पसंद होंगी ना अगर अहां जो थकान है तो अहां चाह पीना पसंद करते न। बारिश का मौसम है कमी अहां चाय दी प्याली जिड़ा है से पीना पसंद करते न। सर्दी दा मौसम है तमी अहां सोचते न कि चाह जिड़ा है से पी लिए तालू तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता कि चाह 3-4 बारी मिलियाँ या 5-6 बारी मिलियाँ तो जरूर अहां पी लेनी। ठंडू दा मौसम है हर किसी दी अपनी अपनी पसंद है कने तो सारी भी इस कार्यक्रम दे सफर जहां कन्ने जुड़ सकते कने अहां कन्ने गलबात जिड़ा है से जरूर करी सकते। एक बारी फिर ते तुहां तक नंबर जिहड़ा है से पहुँचा देन नंबर तुहां नोट करा नंबर है 701-811-7091 नंबर तुहां तक पहुँचाईता है कने फिर ते थोड़ा दे आगे वर्ड देन कने अगली जिहड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुँचा देन सुन देनी साहब प्यारी दिया फरमाइशा जो

0: ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो तो शशि कन्ने इसी कन्ने कार्यक्रम दा जेड़ा सफ़र है से तुह तक लाइव चलिया तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफ़र जहाँ कन्ने जुड़ सकते कन्ने यहाँ कन्ने गलबात जेड़ा से जरूर करी सकते कन्ने गलबात अहाँ जेड़ा कार्यक्रम च करा देना से करा देना तो हाँ सारे ही सुना देने न जेड़ा राष्ट्रीय चाय दिवस जेड़ा है से आज हाँ बना दिन कने तो हाँ मुझे लगा था आज तक ज़्यादा जेड़ा चाय से पी देने न अगले जेड़ा श्रोता है न से यहाँ करने जुड़ चुके न कर दिन तीना करने गल बात। हेलो
1: नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न?
1: हाँ जी मैडम जी।
0: जी तुह कुछ दे रहने वाले न कने तुहंदा ना क्या है जी?
1: पछाड़ी गया तुम आपको ही
0: जी धर्मशाला ते विजय जी बोला दे ना जी।
1: हां जी और जी जी
0: जी ता विजय जी क्या हाल चाल है धर्मशाला वाले आंदे क्या काम कार छेड़े हो?
1: मैडम जी साला भाई काम मैं सिलाई किया था
0: जी। अच्छा सिलाई दा काम मैं ते नए नए जेड़ा डिजाइन हन से जरूर तो हां हर दिन निकाल दे उने ना जी।
1: जी मैडम जी
0: जी ये भी को हुनर है ना जी।
1: जी जी
0: जी क्योंकि हर अगर हम कोई भी काम कर दे ना ता से करी करी होंदा है ना जी।
1: हां जी टाइम ही लगदा कोई प्रॉब्लम
0: जी। कने एक जेड़ा कपड़े दी गल करिए ता से सिर्फ एक सिंपल दे कपड़ा होंदा फिर तो हां तीस चार चांद जेड़े से जरूर लगाई दे ना जी।
1: जी मैडम जी
0: जी जी जी ता विजय जी तो हां गल बात जरूर सुना दे उने ना जी।
1: ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਜੀ ਉਣੀ ਤੇ ਹਲ ਚਲੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਸੀ
0: ਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰੇਡੀਓ ਸੈਟ ਔਨ ਕੀਤਾ ਲਈ ਤੋ
1: ਜੀ ਜੀ
0: ਜੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਦਿਨ ਬਣਾ ਦੇਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਾਇ ਦਿਵਸ।
1: ਅੱਛਾ
0: ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਚਾਇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫੇਵਰਿਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ?
1: ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ
0: ਜੀ ਜੀ जी। तो चाय पीने दे फायदे भी हैं नुकसान भी हैं पर दिने दी शुरुआत ही हंदी चाय करने हुंदी ना जी।
1: हां जी भी अगर शुरू हो जल्दी चाय
0: जी जी अगर चाय ना मिले तो थोड़ा कुछ अधूरापन दे लगदा ना जी कि कुछ
1: भी है जी। ठीक बोल रहे चाय पीते ना मेरी दिल लगी ना दा चाय नहीं पीती
0: जी जी सही ना कि अलदा लगी रहंदी है यो कि नी कल की चाय मिलती है कि नहीं मिली है ता जरूर पी के यहाँ जेड़ा अपना मन है उस जमाना है ना जी। जी जी तो विजय जी आज तो हाँ कुंदिया गीत जेड़े से सुनना पसंद करके
1: आज हाँ जमाकड़ा सुनाई दिया
0: जी। अच्छा जमाकड़ा सुनना है तो हाँ आज
1: मैं बोले ब्याह भी लगी होना
0: जी जी ब्याह तो लगी होनी जी तो है नहीं ब्याह कुथी
1: नहीं मैडम जी।
0: जी अच्छा
1: आज तो ब्याह तो करना हुंदा था
0: जी जरूर
1: कम ही ऐसा डाला था
0: जी जी जी जरूर तुहंदी जेड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुंचा दें जी जुने वास्ते धन्यवाद।
1: ठीक है ठीक है
0: जी। तो श्रोताओं तुहां सारे भी कार्यक्रम दे सफर च जुड़ सकते कने आहा कने गलबात जेड़े से जरूर करी सकते गलबात जो फ्री ते थोड़ा ते आगे बढ़ांदे न कने तुहां जो ले करी चलदे न अगली फरमाइश दी ओर सुनदे नि सा फरमाइशा जो तुहां सारे भी इंजॉय करा।

दर्शो तो तुम सारे सुनिया ये गीत, फिर ते हम वापिस आई हो ना अपनी गलबात उपर। थोड़ा देया सोच विचार करी के दिखा कि हाँ चाय दी जेड़ा प्याली है से कुथी ना कुथी निकाली देना ता हाँ अपने दोस्त करने जेड़ा समय है से किस प्रकार बिताई सकते, या अपना जेड़ा ऑफिस का टाइम है या दोस्त करने या फैमिली करने। कई बार होंगे ना कि चाय दी जेड़ा टाइमिंग है सभी यहाँ जरूर रखी होंगी कन्नै फैमिली कन्नै जेड़ा है से मिली जुली करी यहाँ चाय दी जेड़ा प्याली है सभी जरूर पींदे न। तो चाय दी जेड़ा समय है अगर हाँ कुथी ना कुथी निकाली दे न तो हाँ अपना जेड़ा समय अपनी फैमिली जो या खुद जो जेड़ा थकान महसूस कर दे न से कुथी ना कुथी यहाँ निकाली दे न। कन्नै जिन्हें यहाँ घर पुजते ही ना तो सबसे पहले सवाल जेड़ा से यहाँ दा अपनी फैमिली तक यही रहता है कि सबसे पहले जेड़ा चाय से यहाँ जो दे दिया, चाहे से कॉलेज है चाहे से स्कूल है। स्कूल के बाद भी यहाँ घर पहुँचते ही ना तो ज़रूर चाह जेड़ा से तो वहाँ पींदे ही होने न। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जेड़ा से सेलिब्रेट करा देना कने तो वहाँ सारे भी गलबात भी सुना देने न। तो ज़रूर हाँ फिर ते थोड़ा दिया अगे बढ़ते न कने कार्यक्रम का जोड़ा माहौल है उस जो चेंज करते न, थोड़ी देर जोड़ा रौनक वाला माहौल है से बनाते हैं।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: दोस्तों, जब जनगणना अधिकारी आपके दरवाजे पर आए तो वो आपसे फोटो आईडी, दस्तावेज और यहाँ तक कि आपके फोन का ओटीपी भी मांगेंगे। जरा संभल के रहिए।
3: बिल्कुल गलत। आइए आज सच जानते हैं,
0: क्योंकि जनगणना हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: दोस्तों, जब जनगणना अधिकारी आपके दरवाजे पर आए तो वो आपसे फोटो आईडी, दस्तावेज और यहाँ तक कि आपके फोन का ओटीपी भी मांगेंगे। जरा संभल के रहिए।
3: बिल्कुल गलत। आइए आज सच जानते हैं। जनगणना अधिकारी कभी भी आपसे फोटो आईडी, ओटीपी या कोई भी दस्तावेज नहीं मांगेंगे। बस उनके सवालों का सच्चाई से जवाब दीजिए। ऐसी अफवाहों से दूर रहिए और जनगणना में जरूर हिस्सा लीजिए।
4: हमारी जनगणना हमारा विकास।

0: क्या हुआ? इसे क्या हुआ?
1: सांप ने काटा, सांप ने।
2: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
3: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते, अभी ठीक हो जाएगा।
2: या फिर मुंह से जहर चूस के निकाले क्या?
4: अरे ठहरिए ठहरिए, अस्पताल ले जाने के अलावा आप लोग सब ऐसी ऐसी बातें कर रहे
5: हैं। उठाओ उठाओ, अस्पताल ले जाओ भाई।
4: कमाल के हाँ, इन्हीं सब के चक्कर में हर साल मैं आपको बता दूं, 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए, समझे? तो याद रखिए देवी और सज्जनों, सांप का वार, अस्पताल में ही उपचार।
2: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
6: सांप का वार, अस्पताल में ही उपचार।
7: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
8: धृतराष्ट्र ने अपने 100 बेटे क्यों खो दिए? कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ था, धरती खून से लाल थी, राजमहल में एक पिता धृतराष्ट्र टूट चुके थे। कृष्ण के सामने फूट पड़े और कहे, प्रभु मेरे 100 बेटे मेरी आंखों के सामने मारे गए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? कृष्ण ने उनकी पीड़ा सुनी और शांत स्वर में कहा कि महाराज, आज से 50 जन्म पहले आप एक शिकारी थे। आपने एक पक्षी को मारने की कोशिश की लेकिन निशाना चूक गया। क्रोध में आकर आपने उस पक्षी के 100 बच्चों को मार डाला। आज जो दुख आप झेल रहे हैं वो उसी पाप का फल है। धृतराष्ट्र रोते हुए कहते हैं कि लेकिन प्रभु, वो पाप तो 50 जन्म पहले किया था, सजा क्यों? कृष्ण बोले, क्योंकि पिछले जन्मों में आपने बहुत पुण्य कमाए थे, उन्हीं पुण्यों के चलते आपको इस जन्म में 100 पुत्र मिले, ताकि आप अपने कर्मों का फल का पूरा भोग सके। जीवन का सत्य यही है, कर्म लौटते जरूर है, कब लौटेंगे?
9: कुछ मीठा बोलू?
10: रहने तो तुम्हारे बस की नहीं है।
9: मैं खाने की बात कर रही थी।
10: अच्छा, एक काम कर, गुलाब जामुन मंगा दो।
9: कोई जरूरत नहीं है, अब घर चल के ही खाना। तो

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

सुहानी नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: दोस्तों, जब जनगणना अधिकारी आपके दरवाजे पर आए तो वो आपसे फोटो आईडी, दस्तावेज और यहाँ तक कि आपके फोन का ओटीपी भी मांगेंगे। जरा संभल के रहिए। बिल्कुल गलत। आइए आज सच जानते हैं। जनगणना अधिकारी कभी भी आपसे फोटो आईडी, ओटीपी या कोई भी दस्तावेज नहीं मांगेंगे। बस उनके सवालों का सच्चाई से जवाब दीजिए। ऐसी अफवाहों से दूर रहिए और जनगणना में जरूर हिस्सा लीजिए।
3: हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: क्या हुआ? अरे इसे क्या हुआ?
1: सांप ने काटा, सांप ने।
2: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
3: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते हैं, अभी ठीक हो जाएगा।
2: या फिर मुंह से जहर चूस के निकाले क्या?
4: अरे ठहरिए ठहरिए, अस्पताल ले जाने के अलावा आप लोग सब ऐसे ऐसी बातें कर रहे
5: हैं। उठाओ उठाओ, अस्पताल ले जाओ भाई।
4: कमाल के हाँ, इन्हीं सब के चक्कर में हर साल मैं आपको बता दूं, 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए, समझे? तो याद रखिए देवी और सज्जनों, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
2: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
6: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
7: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
8: धृतराष्ट्र ने अपने 100 बेटे क्यों खो दिए? कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ था, धरती खून से लाल थी, राजमहल में एक पिता धृतराष्ट्र टूट चुके थे, कृष्ण के सामने फूट पड़े और कहे, प्रभु मेरे 100 बेटे मेरी आंखों के सामने मारे गए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? कृष्ण ने उनकी पीड़ा सुनी और शांत स्वर में कहा कि महाराज, आज से 50 जन्म पहले आप एक शिकारी थे, आपने एक पक्षी को मारने की कोशिश की लेकिन निशाना चूक गया, क्रोध में आकर आपने उस पक्षी के 100 बच्चों को मार डाला, आज जो दुख आप झेल रहे हैं वो उसी पाप का फल है। धृतराष्ट्र रोते हुए कहते हैं कि लेकिन प्रभु वो पाप तो 50 जन्म पहले किया था, सजा आप क्यों? कृष्ण बोले, क्योंकि पिछले जन्मों में आपने बहुत पुण्य कमाए थे, उन्हीं पुण्यों के चलते आपको इस जन्म में 100 पुत्र मिले, ताकि आप अपने कर्मों का फल का पूरा भोग सके। जीवन का सत्य यही है, कर्म लौटते जरूर है, कब लौटेंगे?
9: कुछ मीठा बोलो।
10: रहने तो तुम्हारे बस की नहीं है।
9: मैं खाने की बात कर रही थी।
10: एक खाकर गुलाब जामुन मंगा दो।
9: कोई जरूरत नहीं है, अब घर चल के ही खाना। तो

नमस्कार छोटो, दिखावे री मुस्कान हर कोई दिसी लेंदा हा, लेकिन कोई अंदर था खुश बुआ छोटो सो व्यक्ति किया सो ज्यादा खुश रहा। हम सचिन कपूर 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सब ये ट्यून करो छोटो और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा लेकर आऊँ हाजिर हुआ हा। बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है सभी होने वाले रहा सभी श्रोतागण रहा। तो सब श्रोता जी जनाब, आज बिल्कुल है लाइव चले आए ना वीडियो सेट में, और तो सब श्रोतागण सो कॉल कर सकते हैं 701-8-8-7-0-9-8 पर। नंबर एक मुख्य फिर तो वो गया हूँ शेयर कर लूँ हाँ, इस नंबर वंश तो है कॉल कर सकते हैं 701-8-8-7-0-9-8 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं, और कॉल करी करी अपना पसंदीदा गीत के श्रोताओं से हो नहीं सकते ना अपने क्षेत्र रे जानकारी की असो साझा कर सकते हैं। यह गल खास ख्याल रहे कि जानकारी की असो साझा करने लायक जरूर हुआ जानकारी किया सो रेडियो मंच दसने लाइक किया श्रोताओं सो जरूर हुआ। और यह कार्यक्रम जो हगो बृंदन श्रोताओं और कार्यक्रम रा आगाज कर दें, पहले आगाज बहुत ज़रूरी है कार्यक्रम रे इस गीत सो के आगाज कर दें, और तथों बाद श्रोताओं सभी री फरमाइश है कि इस वह ज़रूर पूरी कर ले। और आज श्रोताओं कुछ खास दिन भी हा, क्या खास दिन है सो भी तो सो गया है ज़रूर दस ले। आज हा श्रोताओं विश्व कोफ विश्व चाय दिवस, यानी कि जो चाय रे प्याले पिंदे हैं और जो चाय रे दीवाने हैं तिया वास्ते आज खास दिन है कि आज चाय के सो तो है ज़्यादा पी लिया। लेकिन अय्या आगाज कर दे हिन कार्यक्रम रा इस प्यारे दे भजना सोगी श्रोताओं, और फिर कार्यक्रम जो बड़े ले हागू

0: श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून गुरु और कार्यक्रम आरजे सचिन कपूर सो के बिल्कुल लाइव हूँ कर दिन जनाब अपने अपने रेडियो सेट में बहुत बहुत स्वागत है आगमो के फिर सभी होने वाले रहे सभी श्रोता रहे आइए जी अबे सभी श्रोता रे कॉल किए सो है ज़रूर अटेंड कर लें देन और कुछ खास जानकारी भी अपने श्रोताओं के किया सो साझा कर लें देन बहरहाल इन द श्रोतागण के सो असोगी बिल्कुल कनेक्टेड हिन पुछ दिन कौन बल्लू देन और करी थो बल्लू कर देन नमस्ते जी
1: हेलो नमस्ते सचिन जी
0: नमस्ते जी नमस्ते
1: जी ठीक ठाक
0: बहुत बढ़िया जी कौन बल्लू देन और करी थो बल्लू देन
1: ओ काले पोला हूँ मछली बड़ी करना मजा डाले बात
0: अच्छा काले पोला था
1: हाँ हाँ

0: तो बड़े महीने बाद बोली सकता हूँ, बड़े महीने बाद कॉल करे।
1: मेरे काम ही अंदर है, सजू ना तो अंदर कर नहीं सकता।
0: अच्छा
1: बड़े
0: अच्छा अंदर तो है, कर ही ना सकते।
1: बाहर निकल हुआ थोड़ा।
0: अच्छा अंदर कड़ी मतलब कड़ी ना कर सकते तो है अंदर
1: लाइब्रेरी हुंदे ना थी किताबा कुजुबा घेरा।
0: अच्छा लाइब्रेरी में। अच्छा अच्छा तो कड़ी लाइब्रेरी में कड़ी तो है जी।
1: हां खास लाइब्रेरी ना जी।
0: हां जी
1: हां तो किताबा कुजुबा दी बरसाल रे साथ शुरू करनी लमारी ते मौका ने मुंह फोन करने।
0: अच्छा अच्छा चलिए जी, तुंदे चेहरे री खुशी अरे करी मेरे दिल जो बड़ा सुकून मोड़ो है जी।
1: हाँ जी हाँ जी मतलब आ रहा
0: है। हाँ जी जी कुन दिन गीत होना पसंद कर ले।
1: गाना भी सर सुनी गाने लाल जा फातरे की फातरे।
0: अच्छा
1: जड़े तो दंड फातरे की फातरे।
0: ठीक है जी जरूर होना ले दसो गीत ना जी।
1: ठीक है जी ठीक है
0: ठीक है जी। श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रो और कार्यक्रम सचिन कपूर सो बिल्कुल लाइव किया सो हुनु करते हैं और तो सब श्रोता हसु होगी जरूर बनु करते हैं अगले श्रोता जो कि असो कनेक्ट करते हैं। नमस्ते जी।
2: नमस्ते सचिन जी।
0: नमस्ते जी। नमस्ते
2: जी क्या हाल चाल।
0: हाल चाल ठीक रखा। ठीक ठीक तो बल्ला तो ठीक ने जी
2: बिल्कुल जी।
0: जी कौन बल्लुंदन और कड़ी थों बल्लुंदन।
2: हां बल्ला वृंदावनी खिलड़ू हूं वीर सिंह।
0: वीर सिंह जी।
2: हां जी
0: क्या जगह रा नाम दसु तो है जी।
2: वीर सिंह।
0: तुंदा नाम तो दीप सिंह है ना जी।
2: हां जी
0: जगह रा नाम जड़ी तो है बल्लू गर्दन
2: वृंदावनी।
0: वृंदावन
2: जी।
0: क्या बात है क्या बात है। क्या कर दें जी तो है।
2: प्लम्बर
0: का काम कर दें। अच्छा आज का दिन किने किने को तुंदा।
2: आज का दिन आज तक फिलहाल सीढ़ी लेबर लगो रही था घूम रहे होते आज।
0: अच्छा
2: आज का काम की कोने का।
0: अच्छा अच्छा जी कौन दिन की थोड़ा पसंद कर ले।
2: ये शांत भारद्वाज रखना दे गोजरी वाला।
0: गोजरी भी शांत भारद्वाज तरह ही ना कड़ूरी
2: लेटेस्ट जेड़े गोजरी नवा जेड़ा निकलूगा
0: नवा। ठीक है जी जरूर होने ले।
2: ठीक है जी धन्यवाद।
0: धन्यवाद जी धन्यवाद। श्रोतम एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून क्यों रो और कार्यक्रम सचिन कपूर सोगे हुनु कर देन। हाई अगली जानकारी की जानकारी के सतु सोगे शेयर कर दें। श्रोतम विश्व प्रसिद्ध पैराग्लाइडिंग घाटी बीड़ बिलिंग में करीब 2 महीने रे अंतराल रे बाद के श्रोतों आँख मौके फिर रौनक किया सो वापस आया रौनक किया सो लौटे है। श्रोतों पैराग्लाइडिंग गतिविधि शुरू होने वे सोगी ही घाटी में किया पर्यटकारी आवाजाही बढ़ गई है। श्रोतों जत्थों स्थानीय कारोबारी होटल होमस्टे संचालक जो किया सो टैक्सी ऑपरेटर हैं और अन्य पर्यटक व्यवसाय थो जुट रहे जितने भी मन उन त्यारे चेहरे मगर कनकर का रौनक किया और खुशी भी नज़र किया श्रोतों सो आया है ना अक चेहरे में रौनक किया सो आया उदासी किया सो बंद हुए शतों। वीकेंड पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ किया सो हिरने जो मुड़े शतों बीड़ बिलिंग घाटी में शतों बाहरी राज्य थो भी किया सो पर्यटक इच्छु करते हैं और लब किया सो नजर इच्छु गर्दन की बाहरी राज्य थों भी किया सो पर्यटक काफ़ी ज़्यादा लब किया न सो भर रहे हैं। हाँ तो सो दसना चाहता पहले दिन 340 पर्यटक किया सो उड़ान भरी और उड़ान रा लुफ्त किया सो चुकू हा श्रोतों। लंबे समय थों पैराग्लाइडिंग गतिविधि वे दोबारा शुरू होने व इंतजार कर पर्यटक माँ भी किया सो खास उत्साह है ने जो किया श्रोतों सो मड़ोहा जानकारी रा सिलसिला की असोई चले रहना हाँ तो ये सब बंडन इस समय आरजे सचिन कपूर सोगी और कॉल कर सकते हैं अपना पसंदीदा गीत।

के असो होनी सकते हैं। आइए श्रोता हम कार्यक्रम जो हगो बढ़ देन और जो फरमाइशा पेंडिंग प्यूरिन इन जो कर देन पूरी। तो सब बने रहा आर जे सचिन कपूर सोगे गूंज अपने पन रे।

0: शत एफ एम पैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेरी गुंजन धर्मशाला तो ट्यून कर रहा और हम बिल्कुल लाइव है जी 7018 7019 पर तो है कॉल कर ही सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत की ऐसा होने सकते हैं जनाब अगर तुसु लगता कि कुछ जानकारी की ऐसा साझा करने लायक है तो सो जानकारी भी तो है ज़रूर साझा कर सकते हैं रेडियो मंच की ऐसा ज़रूर दस सकते हैं बहरहाल कार्यक्रम जो हगो बढ़ते हैं शतों और कार्यक्रम मंच तुसु जो लेकर ही चल देन कजो कि बिल्कुल खबर के सभी छुगर दी न सोगे शतों घर बनाने वास्ते 3,00,000 रुपये की असो दीना सरकार है मुख्यमंत्री विधवा एकल नारी आवास योजना रे तहत मुलने महिला जो मदद शतों हिमाचल में हले तक की 26 महिला जो 78,00,000 रुपये री सहायता भोया वित्त वर्ष में योजना रे वास्ते की 102 करोड़ रुपये रा प्रावधान भुआ है सीएम बल्लुंदे ने कि जरूरतमंद महिला हिन त्यारे सोगे के न सो सरकार के असो हमेशा खड़ रहा मनु जो सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल देना सरकार री प्राथमिकता है सामाजिक सुरक्षा वास्ते सामाजिक सुरक्षा वे सोगे आवास री जरूरत पूरी करने रा प्रयास किया सुहाशो तुम इस प्रकार सोगी जानकारी रा सिलसिला चले रहना है इन दोतागन असुगे कनेक्टेड हैं पुछ दिन कुन बल्लुंदेन और कड़ी थो बल्लुंदेन नमस्ते जी
1: नमस्ते
0: नमस्ते जी नमस्ते अजय कौन बल्लुंदेन और कड़ी थम बल्लुंदेन
1: मेरा नाम अग्नि है
0: हाँ जी
1: मैं खनियारा मौली से बोल रही हूँ मैंने निकी जी निकोजी का गाना सुन लिया
0: ठीक है जी धन्यवाद तैयार शतों कार्यक्रम जो हगो बनंदे हैं और अगली कुछ एक और जानकारी तो हो गया है धर्मशाला री की असो साझा करते हैं स्मार्ट सिटी धर्मशाला वे श्याम नगर रोड पर किया सो कुछ सप्ताह पहले तक झाड़ी रे बिच किया झोला रे बिच झोल बसूटे रे बिच अगर हम प्योर गद्दियाँ बल्लू था पूरी तरीके की छिपरी थी शतों छिपरी प्योरी थी जो ड्रेनेज लाइन बुंदी त्या भी दुर्दशा झाड़ी हटाने थो बाद गया सो सामने इना लगे हा शतों जी बिल्कुल शतों झाड़ी हटने थो बाद के सो सामने आया सड़क किनारे बन रही करीब 1.5 फुट गहरी नाली वे कई हिस्से में मिट्टी और गंद थो पूरी तरीके होगी कि सो नाली भर रही है शतों भरी चुक रही हिन और कुछ स्थानों पर तो हालत ऐसी है शतों की नाली में जमा मिट्टी सड़क वे स्तर तक किया सो पुज के छो रहा झाड़ी के कारण पहले पता ना लगे लगी पिंदा थो शतों और पता लगाना गया सो भी मुश्किल थो सड़क किनारे नाली जो बन रही हिन अबे जो झाड़ी कटने थो बाद शतों सो नाली के न सो हुजिन की इतनी ज़्यादा दती गंदगी मिट्टी और न जाने क्या चीज़ के न सो भर रही हिन शतों कुछ ता कुछ जगह ऐसी भरी छूरी हिन शतों एयर रहना का बिल श्याम नगर रही तो चलो खबर है लेकिन न जाने कस ग्रां अंदर भी ऐसी सिचुएशन कस ग्रां रे कस सड़क अंदर की असो ऐसी सिचुएशन बुझ सकते हैं कि झाड़ी कटे करके असो नाली साफ करन ता इतना ज़्यादा गंद के सो निकलूंगा और बहरहाल हैर लगी भी होता अपने घर अरे आस पास भी सफाई करना गया असो करखन करखा सभी रा दायित्व बने गंदा हा कीड़े कंडू थो थोड़ा करे बच करके असो जरूर रहना शतों और साफ सफाई की असो अभी धीरे धीरे शुरू करी नहीं कचो कि अभी धुप्पा हीन और बरसाड़ा के असो असो टाटा बाय बाय अलविदा के असो बल्ली कछूरा हा शतों और अबे एक दिन अगले साल कहने ने मानसून की सो दस्तक दिन था फिलहाल गुड बाय करेगो मानसून असु शतों ता प्रकृति भी असु ये चीज़ किया शतों सो सिखंदे हा एनवायरनमेंट भी असु ये चीज़ किया सो सिखाऊंदा कि मनु जो गुस्सा मनु जो अहंकार मनु जो ईगो इतने ज़्यादा हा गुस्सा इतना ज़्यादा हा शोतों कि नियम इंजॉय करी कि बली तय आए में वे अकॉर्डिंग करी को ना चलो इतना ज़्यादा अहंकार आ इतना ज़्यादा ईगो आ एरोगेंट इंसान अचकनी डेट में शोतों कि मतलब सो सोचता कि जो कुछ आ सब मेरा है और मेरे बलने पर किया सो सब कुछ बोर आऊँ किया सो ही करूँ और मेरे बलने पर ही करी किया सो बोआ है ना। लेकिन ऐसा नहीं, ये नियम आ कि स्थिर कुछ भी नहीं आ, तो है जस अहंकार मरे हो कर देन, जस एटीट्यूड मरे हो कर दे या जस गुस्से मरे हो कर देना सो सिर्फ सो कुछ भी नहीं आ, कजो कि यह दुनिया में स्थिर किया सो कुछ भी नहीं, बदलिंदा जरूर आ, वक्त रहा पहिया जनाब इस घूमना जरूर आ और बदलना गया सो जरूर हा। ता अज अगर तुंदा बुरा वक्त आ शो तुम तो निराश ना भूना, दतो तुंदा अच्छा वक्त किया सो भी जरूर रहना हा और बेहतरीन वक्त किया सो बढ़ना हा। बरहाल इंदे अगले श्रोता सूगी कनेक्टेड हिन। नमस्ते जी।
2: नमस्ते सतेंद्र जी, हाँ जी।
0: हाँ जी बढ़िया जी बढ़िया। कौन बोलूं देन और कड़ी थो बोलूं देन? अच्छा अच्छा जी किशन जी ठीक ठाक राजीव बाजी?
2: बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया।
0: बड़े दिन बाद फोन करो तो है भैया। भी ठीक न जी किशन जी, चल रही जिंदगी दी भी? अच्छा धन्यवाद किशन जी, ये तुंदा अपना कार्यक्रम है जी। धन्यवाद और ये तुंदा अपना कार्यक्रम है जी। इकेला सचिन कपूर का कार्यक्रम नहीं, पूरी गद्दी कम्युनिटी का कार्यक्रम आ, जितने भी इंदे अपने मनु हिन गद्य मनु हिन त्यारा सभी का कार्यक्रम है जी। बिल्कुल बिल्कुल। और गादे सो गए अन्य अन्य कम्युनिटी में मनु भी कहन सो हिंदी इंदे लान पान हिंदी बोली जो है ना पसंद कर देता, त्यारा भी एक कार्यक्रम ऐसा नहीं कि इंदे चलो त्यारा भी हा
2: सभी
0: पर बिल्कुल जी। पर मेनली है कि कम्युनिटी का कार्यक्रम है, सो कम्युनिटी ज़्यादा फोन कर दे इस कार्यक्रम में था है ना। ताई
2: जी जी जी, जी। तो बाकी नहीं आकर दिया था हम जिनसे तो जुड़े हैं जैसे हम जाने रहे प्रोग्राम में तो नहीं जैसा प्रोग्राम में गाते हैं हम जरन जरन कॉल इंजर हम जरन जरन की जिनके से नहीं आकर प्रोग्राम
0: जी जी। कुन दिन की थोड़ा जनाब तुस और कुछ नोई ताजी तुंदे घर घर आ रहे?
2: बस नोई ताजी है, कमाई चल रहा खाई चल रहा सब अपना लुभिया ना बाकी लेस लोग से सर खाई चल रहा था बच्चा हम राज्य के परिवार का तो घर हमारे
0: चलो बल दे ना इंसान जो जो तो है गल बल्ले की कमाई चल रहा खाई चल रहा है ठीक बल्लू देन तो है अक जो परिवार भी स्थिति में फंस रहा बंदा इंसान ना सो इस प्रकार होगी सोचंदा और इस प्रकार होगी चलता भी आ बेचारा दिन रात मेहनत भी करता कि सेरा परिवार की सो सुख ही रहा खुश रहा है ना तंदुरुस्त रहे सेरा परिवार। इसी वास्ते हर परिवार रख शख्स की सो जरूर कमाना गंदा खासकर मिडिल क्लास फैमिली आले यानी कि ऐसो तुस हो के सो ज़्यादा संघर्ष रहा है ना। तो यह तो है भी संघर्ष ताई करते कि परिवार की सो खुश रहा यह तो है पूरा दिन पिटे करे घर होगा और घर खिंच करे सोए मुँह फुल रहे बोने या डंडकाला बहुत सो मज़ा नहीं इंदा है ना जिंदगी जीने रहा। तो थोड़ा करे परिवार मन च बड़ा जरूरी बंदा कि सो प्यार सो माहौल एनवायरनमेंट और अक्सर बनता कि सो बुना चिंदा।
2: हां जी सचिन जी चाहे बंदा अपना घर सो कुछ चाहे बो ना ताकि मन को रुके खाना
0: जी
2: ता सो आप जैसे के बारे खुराक लगने से बदल न देता घर मन अगर सो कुछ चाहे ना बहुत अच्छा सुन रहा ना कोनो बंदा तो बैठे सो कुछ चाहे ना बात का सुनने का ना बोल रहा।
0: Exactly, बिल्कुल ठीक बोल रहे
2: जी। जनानीपुर जनानी गलती आपको दंड का
0: बिल्कुल
2: 500 खाएगा ना
0: जी जी जी
2: कसर भी दिक्कत है ना
0: बिल्कुल लेता हाँ यहाँ तो है घर है पूरी फैसिलिटी अगर ना दिच्छू कर दें तो फिर तो सो मतलब घर में चीज़ अनबैलेंस बूनी बूनी ने है ना कलेश कलेश तो बूना बूना चलो यही चल रहे ठंडे पेंदे जिंदगी के करना सब भी रे
2: सही गल ताकि जीने का साथ
0: बिल्कुल बिल्कुल। और हम तो सभी मर्द समाज जो है बोलना चाहता कि चलो जिंदगी की ऐसो ही चले भी रहते हैं, थोड़ा मानसिक संतुलन की ऐसो बनाना पैंदा, अपना अपना मन मारना पैंदा, करखा करखा मन घोटना पैंदा, तो जिंदगी की ऐसो पैरेलल चल दिया, आसान चल दिया, है ना, तरीके होगी चल दिया, बराबरी होगी चल दिया।
2: जी जी जी
0: जी
2: सब कुछ पैसा
0: बिल्कुल बिल्कुल पैसा पैसा अमल तो जिंदगी में खुश ही ताई बंदे की पैसा बोआ, जेब अंदर पैसा ना बोआ तो कोई हंसी राजी नहीं है। चंडीगढ़ गो तो अभी अब जो ना जी हुकरो चंडीगढ़ छूरत हो तड़ी एक मुंजो की मुलाकात बोई थी।

0: बहुत रे 3.5 करोड़ रे गड्डी की सो तेरे घर है बार कोठी बार घर में ना थे कोठी थे कोठी बार के सो 3.5 करोड़ रे अरेंज रोड हो
1: जी
0: गया सो खड़ रहे थे जो युवा बुने यह कंपनी जो जानते बुने जो नाम है ना लियो रेंज रोवर
1: जी
0: कोठी चंडीगढ़ में कोठी मतलब करोड़ रुपये रे सो कोठी थे है ना।
1: जी
0: लेकिन अः जी बैखे अब सभी पता अपना अपना मतलब इंसान अरे अपना अपना घर आ रहा है नेचर बंदा माहौल बंदा इन्वायरमेंट बंदा और दूसरा इंसान जो छूरा सो समझे गंदा है ना बेशक तो है कितना लोगों वगैरह सो तुम तय घर आ रहा है इन्वायरमेंट के सो परखे गंदा
1: ठीक है जी
0: परखे गंदा तो त्यारे घर में हूँ ये रोंदा तो कि ना सो मौ जो भी बेचारी बेचैनी थी सो बूढ़े जो भी सो बेचैनी थी और जो मंजोगी के छूरे थी मतलब त्यारे सो रिश्तेदारी थी है तिया मंजोए दस कि बेचैन इस वास्ते इनकी यारी औलाद आकी अके दबो दसो थोड़ा मतलब यहाँ नशे वे चक्कर में पीरो और माँ बाप री कदर न करता बह बुछूरा बह बिगराई तुरा लाड़ी भी सेरे घरे थे तो सो बेचैनी तो बोने को सो के सो सोचा तो है मतलब अख गड्डिया उधर सुंदर तीन तीन अख दुई गड्डी और थी तीन ले मतलब लख रीता थी 3 करोड़ा रीना थी ना। लेकिन लेकिन इतना
1: जी
0: इतना पैसा बुने रे बावजूद भी तो हेरा कि तिन्या सो चैन ना थे और ऐ हूँ अब जो गुंजन में बेखुरो गुंजन रे बा रे आईपीएस डिपार्टमेंट रह गया सो बिल्डिंग लग रे बनना इड़ भी एक परिवार आ जो कि यूपी था वो बेचारा अस वहीं है सो भी मेहनत मजदूरी की ऐसो करू करता लेकिन त्यारे हूँ हंसी ये रू करता और त्यारी खुशी ये रू करता कि यह मेहनत मजदूरी में भी तो मजा ना कि यारा यारे दिल खुश है ना मेनली के चलिया कि दिल खुश होना चाहिए पैसा ढेला चलो लगदा मायने रखदा बहुत जगह रखदा इतना गरीब होना चाहिए कि इंसान की सो अपनी बेसिक नीड्स के सो पूरी करी लिया है ना। और लेकिन मोटे गल है कि इंसान रे दिल में तो चैन होना चाहिए
1: हाँ माइनस हो रहा था चैन वाली ना पैसा मन अलग ना पैसा नहीं होगा
0: लेकिन चैन चैन मायने रख दे हाँ जड़ेगी चैन हाँ
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल बिल्कुल चलिए जी जी
1: ठीक
0: जी
1: है सत्यजीत धन्यवाद बड़ी जी
0: जी
1: तो ना
0: चलिए किशन जी
1: ये
0: मेरा सौभाग्य है कि तुसु ही यहीं दे जो श्रोता सो इतना मान सम्मान और इतनी इज्जत मुझे दिंदे हैं और अपना आशीर्वाद और प्यार रख देन आऊँ कोशिश करता जी कि चलो खरा करूँ बढ़िया करूँ और आगूँ और अच्छा करूँ ये कोशिश रहते मेरे है ना जी।
1: जी
0: बिल्कुल बिल्कुल किशन जी कुंदन गीत सुनना पसंद कर ले दादी माता रहा है ना जी भजन होना तो सुख ठीक है किशन जी जरूर होना ले जी धन्यवाद जी धन्यवाद तुंदा भी धन्यवाद। शो तो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रो और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा कैन सो चल रही हैं बहरहाल कार्यक्रम जो हगो बढ़न देन और अब श्रोताओं फरमाइशा के न सो पूरी करते हैं।

0: शत एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रो और कार्यक्रम में सचिन कपूर सो की अपना गादा कार्यक्रम तो हूँ कर दे निंदी अपनी गप इस कार्यक्रम रहना चलिए श्रोतो कार्यक्रम और भी बहुत सारे श्रोता के सो कॉल करू कर दे हिन ता है जरूर कनेक्ट करने की कोशिश की सो सब भी है जरूर कर ले आइए इन देख ले श्रोता असू के कनेक्टेड हिन नमस्ते जी हेलो
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्कार जी नमस्कार
1: नमस्कार जी सचिन जी क्या हाल चाल
0: बहुत बढ़िया जी
1: क्या क्या कमंद है
0: बस जी जी कौन बलून देन और कड़ी थम बलून देन
1: अच्छा तेरा नलवाने थम बलून देन शानी ले अपने
0: अच्छा इधर रेगुलर शोतन तो है लालू जी
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी
0: ठीक ने लालू जी
1: बढ़िया तो होना मोहिता जी
0: बढ़िया जी घर परिवार सब सुखदा
1: सब सब राजीव राजीव
0: आनंद आनंद में
1: आनंद सब राजीव
0: क्या बात है लालू जी क्या फरमाइश है क्या फरमाइश लेकर आए इन तो है आज
1: फरमाइश सुनाए दिए झिकड़ो दीजिए गाना जी
0: हाँ जी
1: ये लग गाना नहीं झिकड़ो दीजिए सुनील राणे का
0: अच्छा अच्छा
1: जी हाँ जी सुनाए दिया जी और ना
0: बस जी
1: चलो
0: जरूर होना लेस की जाना जी
2: शेर सिंह का भजन है घट तोली ना झूठ बोली ना
0: अच्छा
2: सोने का जन्म नहीं मिलता दोबारा
0: हां बिल्कुल जन्म तो ना मिलता पर समझदा कौन है चलिए ठीक है जी जरूर होने ले तू
2: गीत दिखला नहीं होगा टाइम तो कर ही नहीं तो काम से ही
0: जनाब बहुत अच्छा लगा तू सो की गल करके जरूर कोशिश कर
2: हां जी और ठीक है ना सब
0: बढ़िया जी तंदा आशीर्वाद है
2: टूट आर ठीक रहे थोड़ा
0: हां जी बिल्कुल ठीक रहे जी
2: चलो ठीक चाहिदा जी
0: ठीक रहे जी धन्यवाद जी
2: ठीक है जी धन्यवाद
0: शोधो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून करो और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप के ना सो बिल्कुल लाइव चल रही तुम वीडियो सेट में चलिए कार्यक्रम जो होगा बढ़ते हैं शोधो और जानकारी रहा पिटारा गया शोधो सो यहीं खुलते रहना है और जानकारी सोगी सोगी शोधो तो सभी जो है बिल्कुल कोशिश करूँ करते हैं कि जानकारी सोगी सोगी किया सो अगली जानकारी भी पहुँचान हिमाचल में पहली बार किया सो गूंजना पे शोतो रॉयल बंगाल टाइगर री दहाड़ जी बिल्कुल बंगाल टाइगर री दहाड़ सिरमौर में सिरमौर रेणुका जी चिड़ियाघर में किया सो शोतो 11 साल रा इंतज़ार ख़त्म हुआ है महाराष्ट्र रे महाराष्ट्र तो किया सो रॉयल बंगाल टाइगर रा जोड़ा करीब 1900 किलोमीटर रा सफ़र तय करी करी किया सो दोपहर करीब 1 बजे रेणुका जी चिड़ियाघर किया सो पुजू हा शोतों टाइगर रे जोड़े वे पुजते ही किया सो चिड़ियाघर में वन्य जीव प्रेमी और पर्यटक वास्ते किया सो नया आकर्षण किया सो जुड़ी गो लगभग 48 घंटे में लगातार सफर रह बाद किया सो महाराष्ट्र वे नागपुर रे गोरेवाडा जू थो टाइगर व जोड़ा किया सो आ लेकर आए हैं शोतों और आज वैसे भी शोतों चाय रा दिन यानी कि आऊँ दसो करता तो आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के सो भी मनाओ कर दें तो चाय प्रेमी के सो जरूर चाय पींदे और चाय पीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछे कहते हैं ना कद कोई इंसान ये समझ सकता ये समझ ही लेंदा हा शोतों और गल समझ नहीं रही है शोतों जे अगर ये अंडरस्टैंडिंग और ये समझदारी एक ही दुए होगी मिलेगा अच्छा तो रूना कस गला रहा तो इंसान नहीं समझ सकता, कोई इंसान नहीं समझता कि चाय पीने तो इनकी थकावट के सो दूर बुंदे इनके सिरे पीड़ के सो गठ पुछ गंदी और ये मतलब है सोच ही सकते हैं कि ह्यूमन थिंकिंग आए ये पूछ भी सकता हा सोचा ही चीन दे चाय होगी थकावट के सो चले गंदे है ना। इस प्रकार सो की हा जानकारी और इनके श्रोतारा सिलसिला चले रहना तो सब बने रहे रेडी गुंजन धर्मशाला सोगे और इस नाचीज सचिन कपूर सोगे लेकर ही चलता है श्रोता तू सभी जो फरमाइशारी और ये दादी माता रा भजन है श्रोतों इस भजना जो किया सो हुन दे हिंद।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडी गुंजन तो है ट्यून गुर्रो और हम सचिन का पूरा लाइव कार्यक्रम इस समय होस्ट करू कर दहा कार्यक्रम जो हगो बढ़ श्रोतो तो सब अपने अपने वीडियो सेट में बखूबी किए सो बन रहे बुणे हूँ कर दे बुणे और फरमाइशरा दौर किए सो है भाई मकाना लूरक जो कि समय आ किए सो बुझेगो और श्रोतो ये बड़ी सच्चाई है कि हर किसी समय किया सो जरूर।

नमस्कार दोस्तों, ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। अब आप सुनेंगे आज का खास न्यूज बुलेटिन रुचिका के साथ। तो सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पे। हिमाचल प्रदेश में पहली बार गंजी रॉयल बंगाल टाइगर की दहाड़ सुनाई दी। रेणुकाजी चिड़ियाघर में नए मेहमान के आने से वन्य जीव प्रेमियों में उत्साह है। मुख्यमंत्री विधवा एकल नारी आवास योजना के तहत जरूरतमंद महिलाओं को घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। हिमाचल के पेंशनरों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की ऑफलाइन सुविधा जारी रखने की मांग उठी है। संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री से इस संबंध में आग्रह किया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया महिला टीमों के बीच धर्मशाला में होने वाले मुकाबले से पहले कांगड़ा की हवाई यात्रा महंगी हो गई है। दिल्ली से कांगड़ा आने वाले यात्रियों को कुछ उड़ानों में 22,832 रुपए तक किराया चुकाना पड़ सकता है। डीएलएड परीक्षाओं में नकल के मामलों पर सख्ती की जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने और नकल पाए जाने पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सीबीएसई स्कूलों में सिक्योरिटी और प्लम्बिंग कोर्स बंद किए जाने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित बदलाव वर्ष 2027-28 से लागू होने की बात कही गई है। पर्यावरण विभाग के अधिकारियों को भी प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाई के अधिकार दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जा सकेगा। हिमाचल के प्रवेश द्वार वाले शहरों को क्लीन सिटी की पहचान दिलाने की दिशा में योजना तैयार की जा रही है। स्वच्छता, पार्किंग, हरियाली और कचरा प्रबंधन पर विशेष ध्यान रहेगा। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित रेणुकाजी चिड़ियाघर में रविवार का दिन खास रहा। यहां पहली बार रॉयल बंगाल टाइगर की दहाड़ सुनाई दी। महाराजा के गोद से रॉयल बंगाल टाइगर के जोड़े को करीब 1900 किलोमीटर का सफर तय कर दोपहर करीब 1 बजे रेणुकाजी चिड़ियाघर पहुंचाया गया। वन विभाग और चिड़ियाघर प्रबंधन के अधिकारियों की मौजूदगी में दोनों बाघों को सुरक्षित तरीके से उनके नए बाड़े में पहुंचाया गया। बताया गया कि टाइगर के जोड़े के संरक्षण की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। इससे आने वाले समय में रेणुकाजी में वन्य जीव पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। चिड़ियाघर में आने वाले नए वन्य प्राणियों के नामकरण की भी परंपरा है। विभाग की ओर से लोगों से नाम सुझाने का आग्रह किया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री विधवा एकल नारी आवास योजना के तहत पात्र महिलाओं को अपना घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए तक की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर विधवा और एकल महिलाओं को सुरक्षित एवं सम्मानजनक जीवन उपलब्ध करवाना है। जानकारी के मुताबिक अब तक प्रदेश की 26 महिलाओं को इस योजना के तहत 78 लाख रुपए की सहायता दी जा चुकी है। वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में भी इस योजना के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जरूरतमंद महिलाओं के साथ सरकार खड़ी है और सामाजिक सुरक्षा के साथ आवास की जरूरत पूरी करने का प्रयास किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में पेंशनरों के जीवन प्रमाण पत्र को लेकर मामला सामने आया है। संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि पेंशनरों के लिए ऑफलाइन जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा जारी रखी जाए। समिति का कहना है कि दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले बुजुर्ग पेंशनरों को ऑनलाइन प्रक्रिया में तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वित्त विभाग की ओर से नियमों के तहत व्यवस्था बनाने की बात कही गई है। समिति ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर ऑफलाइन सुविधा बंद नहीं करने का आग्रह किया है। पेंशनरों का कहना है कि समिति ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर ऑफलाइन सुविधा बंद नहीं करने का आग्रह किया है। पेंशनरों का कहना है कि ऑनलाइन प्रक्रिया के साथ ऑफलाइन विकल्प उपलब्ध रहने से बुजुर्गों को सुविधा मिलेगी। धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 29 सितंबर से भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच मल्टी डे मुकाबले प्रस्तावित हैं। मैच को लेकर कांगड़ा आने वाले यात्रियों के लिए हवाई किराए में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दिल्ली से कांगड़ा आने वाले यात्रियों को कुछ उड़ानों में 22,832 रुपए तक का किराया चुकाना पड़ सकता है। 28 सितंबर को दिल्ली से कांगड़ा के लिए न्यूनतम किराया करीब 6,668 रुपए और अधिकतम 22,832 रुपए तक बताया गया है। कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए रोजाना 4 से 6 उड़ानें संचालित होने की जानकारी

दी गई है। मैच और पर्यटन सीजन शुरू होने के कारण आने वाले दिनों में हवाई किराए में और तेजी आने की संभावना जताई गई है। हिमाचल प्रदेश में डीएलएड परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। अक्टूबर नवंबर 2026 में होने वाली डीएलएड परीक्षाओं को लेकर परीक्षा केंद्रों की तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। बोर्ड के अनुसार यदि किसी परीक्षा केंद्र पर सामूहिक नकल या नियमों की अनदेखी का मामला सामने आता है तो उस केंद्र को भविष्य में परीक्षा केंद्र बनाए जाने से वंचित किया जा सकता है। सभी परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग कम से कम 6 महीने तक सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की नकल या अनुचित साधनों का प्रयोग पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड ने छात्रों से भी परीक्षा की गरिमा बनाए रखने और अनुशासन का पालन करने की अपील की है। हिमाचल प्रदेश के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में सिक्योरिटी और प्लम्बिंग के पाठ्यक्रम बंद किए जाने का प्रस्ताव सामने आया है। बताया गया है कि प्रस्तावित बदलाव 2027-28 से लागू होगा, जबकि मौजूदा शैक्षणिक सत्र में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इन पाठ्यक्रमों को लेकर स्कूलों और शिक्षकों की ओर से सामने आ रही चुनौतियों के बीच विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है। इसके साथ ही प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा के तहत कई क्षेत्रों से जुड़े पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें आईटी, पर्यटन, बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवाएं, कृषि, सुरक्षा और मीडिया जैसे क्षेत्र शामिल है। सरकार की ओर से व्यावसायिक शिक्षा को और बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में पाठ्यक्रम शुरू किए जाने की जानकारी भी दी गई है। हिमाचल प्रदेश में प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाई को और प्रभावी बनाने के लिए पर्यावरण विभाग के अधिकारियों को भी अधिकार दिए गए हैं। सरकार ने अधिकारियों को प्रतिबंधित प्लास्टिक और अन्य गैर जैव निम्नीकरणीय कचरे के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार दिया है। अब तक संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ साथ पर्यावरण विभाग को भी कार्रवाई के लिए अधिक सक्रिय भूमिका दी गई है। नियमों का उल्लंघन करने पर अलग अलग मात्रा के आधार पर जुर्माने का प्रावधान है। 100 ग्राम तक के प्लास्टिक पर ₹500, 101 से 500 ग्राम तक ₹1500 और 501 ग्राम से 1 किलो तक ₹3000 जुर्माने का प्रावधान बताया गया है। अधिक मात्रा में प्रतिबंधित सामग्री पाए जाने पर जुर्माना बढ़ता जाता है। सरकार की ओर से प्रतिबंधित वस्तुओं की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक को प्रभावी बनाने के लिए कार्रवाई तेज करने की बात कही गई है। हिमाचल प्रदेश के प्रवेश द्वार वाले प्रमुख शहरों को क्लीन सिटी की पहचान दिलाने की दिशा में योजना तैयार की जा रही है। शिमला में आयोजित बैठक में शहरों की स्वच्छता, सार्वजनिक सुविधाओं, यातायात व्यवस्था और सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई। पर्यटन गतिविधियों और यात्रियों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए प्रवेश द्वार वाले शहरों में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। इसके तहत सड़कों के किनारे कचरा प्रबंधन, पार्किंग, हरियाली और सार्वजनिक स्थानों की सफाई पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही बाजारों और मुख्य सड़कों के सौंदर्यीकरण की योजना भी तैयार की जा रही है। अधिकारियों को सार्वजनिक स्थानों की नियमित सफाई और कचरा प्रबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में 9 इको टूरिज्म

0: में से 9 साइटों के आवंटन की प्रक्रिया अंतिम चरण।
1: रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओ आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रही

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: दोस्तों, जब जनगणना अधिकारी आपके दरवाजे पर आए तो वो आपसे फोटो आईडी, दस्तावेज और यहाँ तक कि आपके फोन का ओटीपी भी मांगेंगे। जरा संभल के रहिए। बिल्कुल गलत। आइए आज सच जानते हैं। जनगणना अधिकारी कभी भी आपसे फोटो आईडी, ओटीपी या कोई भी दस्तावेज नहीं मांगेंगे। बस उनके सवालों का सच्चाई से जवाब दीजिए। ऐसी अफवाहों से दूर रहिए और जनगणना में जरूर हिस्सा लीजिए।
3: हमारी जनगणना हमारा विकास।

0: सांप के काटा सांप ने।
1: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
2: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते, अभी ठीक हो जाएगा।
1: या फिर मुंह से जहर चूस के निकालने क्या?
3: अरे ठहरिए ठहरिए, अस्पताल ले जाने के अलावा आप लोग सब ऐसी ऐसी बातें कर रहे
4: हैं। अस्पताल ले जाओ भाई।
3: कमाल के हाँ, इन्हीं सब के चक्कर में हर साल मैं आपको बता दूं 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए, समझे? तो याद रखिए देवियों सज्जनों, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
1: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
5: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
6: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
7: धृतराष्ट्र ने अपने 100 बेटे क्यों खो दिए? कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ था, धरती खून से

0: राजमहल में एक पिता धृतराष्ट्र टूट चुके थे, कृष्ण के सामने फूट पड़े और कहे, प्रभु मेरे 100 बेटे मेरी आंखों के सामने मारे गए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था। कृष्ण ने उनकी पीड़ा सुनी और शांत स्वर में कहा कि महाराज, आज से 50 जन्म पहले आप एक शिकारी थे। आपने एक पक्षी को मारने की कोशिश की लेकिन निशाना चूक गया। क्रोध में आकर आपने उस पक्षी के 100 बच्चों को मार डाला। आज जो दुख आप झेल रहे हैं वो उसी पाप का फल है। धृतराष्ट्र रोते हुए कहते हैं कि लेकिन प्रभु वो पाप तो 50 जन्म पहले किया था, सजा क्यों? कृष्ण बोले, क्योंकि पिछले जन्मों में आपने बहुत पुण्य कमाए थे, उन्हीं पुण्यों के चलते आपको इस जन्म में 100 पुत्र मिले, ताकि आप अपने कर्मों का फल का पूरा भोग सके। जीवन का सत्य यही है, कर्म लौटते जरूर है, कब लौटेंगे?
1: कुछ मीठा बोलू?
2: रहने तो तुम्हारे बस की नहीं है।
1: मैं खाने की बात कर रही थी।
2: एक खाकर गुलाब जामुन मंगा था।
1: कोई जरूरत नहीं है, अब घर चल के ही खाना। तो
3: अब

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला शुरू हो चुका है। श्रोताओ मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी आ गई हूँ आपके साथ इस प्यारे से कार्यक्रम में, रहूँगी आपके साथ 8 बजे तक। श्रोताओ करेंगे आपके साथ बातचीत, धर्मशाला और आसपास की जानकारियाँ आपके साथ साझा करेंगे और कुछ प्यारे प्यारे से फिल्मी गीत आपको इस कार्यक्रम में हम सुनाएंगे। कार्यक्रम में सबसे पहले आइए जानते हैं धर्मशाला का तापमान। 16 डिग्री सेल्सियस तापमान है श्रोताओं और वातावरण में नमी है 82%। और आज के मौसम की हम बात करें तो जनरली बात करें तो धूप खिली खिली थी और ना सिर्फ धर्मशाला में ही बल्कि धर्मशाला के साथ लगते जितने भी हमारे गांव हैं, इलाके हैं, उन सब में अच्छी खासी धूप का जो है सभी ने आनंद लिया। और धूप जब बारिश का मौसम ख़त्म होने के बाद जब धूप खिलती है तो हम लोगों को यही रहता है कि कपड़े सुखा लिए जाएँ या कंबल सुखा लिए जाएँ, जूते जो कई दिनों से अंदर पड़े थे अलमारियों में उनको सुखा लिया जाए। और बहुत से बल्कि हर घर में ये भी होता है कि बरसात का मौसम ख़त्म होने के बाद जब सैर ऋतु शुरू होती है और ये धूप का जो अच्छा खासा आगमन होता है तो जो संदूक, अलमारियां, बेड बॉक्सेस में जो हमारे कपड़े, रजाइयां, कंबल जो पिछले 6-7 महीनों से जिन्हें धूप नहीं लगी होती उनको भी निकाल करके जो है वो अच्छी खासी धूप लगाई जाती है श्रोताओं। और ये एक ऐसा रिवाज है जो मुझे लगता है ख़त्म नहीं हुआ है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि धूप जो है, सूर्य की रोशनी जो है वो हमारे मूड को तो हैप्पी करती ही है, साथ ही साथ हमारे जो कपड़े हैं जो बहुत समय से इस्तेमाल नहीं हुए होते हैं उनमें नेगेटिविटी ना आ जाए, इसलिए उनको जब धूप में सुखाया जाता है तो उनमें सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तो ऐसी मान्यता है कि वो पॉजिटिव हो जाते हैं, कपड़े भी उनमें पॉजिटिविटी आ जाती है और लंबे समय से ना इस्तेमाल किए गए कपड़े भी दोबारा पॉजिटिविटी के साथ इस्तेमाल करने लायक हो जाते हैं। तो संदूक, बक्से, अलमारियां अगर आपके भी सुखाने को अभी हैं, खैर अभी तो शुरू के ही 2-3 दिन है जब धूप ने इस तरह से दस्तक दी है, अभी आगे आने वाले दिनों में बहुत अच्छी खिली खिली प्यारी प्यारी धूप होगी तो हम सब मिलकर के अपने जितने भी कपड़े कंबल हैं उनको सुखाएंगे ज़रूर। श्रोताओ बता दें आपको कि आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला शुरू हो चुका है आपकी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ और आप कार्यक्रम में आपका कहीं दिल यहाँ वहाँ ना चला जाए, इसलिए आपका दिल रेडियो गुंजन के साथ लगा रहे इसलिए हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम में कार्यक्रम का ये सबसे पहला प्यारा सा गीत।

श्रोतो कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला इस समय आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम में अब समय है आपके साथ विचार साझा करने का। तो आइए सुनते हैं विचार। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, समय आने पर उनका फल अवश्य मिलता है, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहें। एक बार फिर से विचार दोहरा रहे हैं श्रोताओं की, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, समय आने पर उनका फल अवश्य मिलता है, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहें। जी हां श्रोताओं, आप सभी ने सुना ही होगा कि कर्म जो है उनका हिसाब किताब जरूर होता है और आज नहीं तो कल उसका फल जरूर मिलता है। और अच्छे कर्म करने के लिए इसीलिए हमें प्रेरणा दी जाती है और इसीलिए कहा जाता है कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा ही फल हमें मिलेगा, और जाने अनजाने अगर हमसे गलत कर्म हो गए हैं तो उनका फल भी परमात्मा अवश्य ही हमें देता है। भले ही आज ना दे, कल ना दे, आने वाले समय में किसी ना किसी रूप में वो फल हमें ज़रूर मिलता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे कर्म करते रहें ताकि कल को अगर हमारे कर्मों का फल हमें मिले तो हमें किसी प्रकार की ग्लानी या दुख ना हो। इसीलिए अच्छे कर्म करते रहिए, कल को अगर हमारे कर्मों का हिसाब होगा भी तो हमें खुशी ही होगी, दुख नहीं। श्रोताओं 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और कार्यक्रम में अब समय हो रहा है आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत सुनवाने का। आप यूं ही बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो गुंजन, गूंज अपने पन की।

श्रोताओं 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला इस समय आप सुन रहे हैं और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। जी हां श्रोताओं, बताना चाहेंगे कि रेडियो गुंजन का जो हमारा फेसबुक पेज है उस पे इस समय हम लाइव भी आ गए हैं। अगर हमारे श्रोता और दर्शक हमसे लाइव जुड़ना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज पर जुड़ सकते हैं। श्रोताओं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन के साथ साथ हमीरपुर के ठटवाल रेडियो केंद्र 88.4 में भी हमें सुना जा रहा है। श्रोताओं कार्यक्रम में आपके साथ बातचीत करेंगे, प्यारे प्यारे गीत सुनाएंगे और साथ ही साथ आज क्या कुछ खास है वो भी आपको जरूर बताएंगे। जी हाँ श्रोताओं, विश्व अल्जाइमर दिवस आज हम मना रहे हैं और इसके बारे में हम सुबह भी कार्यक्रम में बात कर चुके हैं, इसके साथ साथ अभी भी करेंगे। और एक और खास दिन है श्रोताओं, राष्ट्रीय चाय दिवस। और ये दिवस उन लोगों के लिए, खासकर मेरे जैसे लोगों के लिए जो चाय के शौकीन हैं, मुझे लगता है उनके लिए ही ये दिन जो है वो बनाया गया है। वैसे तो श्रोताओं ये जो दिन है ये यूनाइटेड किंगडम में जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, लेकिन चाय एक ऐसा पेय है जो सिर्फ यूके में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में बहुत से लोगों का पेय प्रिय पेय है, हमें ऐसे लगता है। और ये उन ड्रिंक्स में से है जिसके लिए बहुत ज़्यादा धनराशि हमें खर्च नहीं करनी पड़ती है, बस थोड़े से पैसे खर्च करने होते हैं। और चाय किसी के साथ का बहाना होती है श्रोताओं, जब दो दोस्त या दो परिवार के सदस्य काफी समय से एक साथ नहीं मिलकर के बैठे होते हैं तो एक बहाना होती है चाय किसी को साथ बुलाने का, किसी को साथ बिठाने का। चाय का कप वो पुरानी यादों को ताजा करने का बहाना होता है जो हमने स्कूल कॉलेज के दिनों में बिताई होती है, और अरसे के बाद जब हम मिलते हैं तो एक कप चाय पे हम जब हमारी मुलाकात होती है तो वो सारी बातें ताजा होती हैं। और भी बहुत कुछ है चाय के साथ जुड़ा हुआ श्रोताओं, क्योंकि आज है राष्ट्रीय चाय दिवस और चाय के बारे में भी कार्यक्रम में जब समय मिलेगा मैं ज़रूर बात करूंगी। और मेरे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है जब भी चाय का नाम आता है, क्योंकि चाय श्रोताओं मेरे भी प्रिय ड्रिंक्स में से एक है। बड़े बड़े महंगे ड्रिंक्स एक तरफ, लाटे, माचा और न जाने क्या क्या कॉफीज़ के नाम है, अलग अलग ड्रिंक्स हैं, अलग अलग फ्लेवर हैं, वो सब एक तरफ, और अपनी टपरी वाली देसी चाय, अदरक इलायची वाली एक तरफ। अलग ही मज़ा होता है इस चाय का, अलग ही गर्माहट होती है श्रोताओं। और इसी गर्माहट को, इसी मज़े को कार्यक्रम में भी बनाए रखेंगे हम। फिलहाल आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ श्रोताओं, और मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। कार्यक्रम में अब बातों को देते हैं विराम, लिए चलते हैं आपको कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत की ओर। श्रोताओं यूं ही बने रहिए हमारे साथ रेडियो गुंजन धर्मशाला पर, सुनते रहिए रेडियो गुंजन, गूंज अपने पन की।

श्रोताओ, गर्मा गर्म चाय और प्लेट में खनकती हुई प्याली की ये आवाज़ जो है वो मंत्र मुक्त कर देने वाली है। जी हाँ, खासकर टी लवर्स के लिए ये आवाज़ और चाय, खासकर शाम का समय, इस समय और बहुत से लोग चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे होंगे, बहुत से चाय पी चुके हैं और कुछ इंतज़ार कर रहे होंगे। चलिए, चाय एक लिमिट तक पीना सेहत के लिए अच्छा माना गया है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा जब हम चाय का सेवन करते हैं तो चाय के साथ साथ आवश्यकता से अधिक चीनी भी हमारी बॉडी में जो है वो जाती है और एक तरह से चाय जो है वो हानिकारक हो जाती है, लेकिन वो तब होती है जब हम बहुत ज़्यादा चाय का सेवन करते हैं। इसलिए चाय का एक लिमिटेड सेवन, दो कप तो जायज़ होते ही हैं, लेकिन कई बार जो है वो तीन से चार कप भी हो जाते हैं। और हर किसी का चाय का अपना अपना स्वाद होता है, किसी को चीनी कम पसंद होती है, किसी को एकदम कड़क और मीठी वाली चाय पसंद होती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये मत पियो वो मत पियो, लिमिट में रह करके आपको जो भी अच्छा लगता है श्रोताओं वो करना चाहिए। आपको अच्छा लगना चाहिए, बस शर्त सिर्फ इतनी सी होनी चाहिए कि आपके अच्छे लगने से आपके शरीर को नुकसान ना हो और दूसरे कुछ भी आप करते हैं उससे किसी दूसरे भले मानुष का जो है वो कुछ गलत उसके साथ ना हो। श्रोताओं, चाय की इन चुस्कियों का आनंद यूं ही लेते रहिए, हम भी यूं ही बने हुए हैं आपके साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। फिलहाल एक छोटा सा अंतराल।

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। इस समय आप सुन रहे हैं और सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम में। श्रोताओ रुख करते हैं जानकारियों की ओर। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए क्लास 3 पेंशनरों को उनकी पेंशन एरियर का 30%, जबकि क्लास 1 और क्लास 2 पेंशनरों को उनकी पेंशन एरियर का 15% एरियर इस वर्ष अक्टूबर माह में प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स ज्वाइंट फ्रंट के साथ आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार पेंशनरों और कर्मचारियों के सामने आ रही समस्याओं से अवगत है तथा इनके समाधान के लिए गंभीरता से हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समय समय पर कर्मचारियों और पेंशनरों को वित्तीय लाभ जारी करती रही है और आने वाले समय में महंगाई भत्ते की एक और किश्त जारी करने पर भी विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि सभी विभागों को पेंशनरों के लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों को भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 65 वर्ष से अधिक आयु के सभी पेंशनरों का एरियर सरकार द्वारा पहले ही जारी किया जा चुका है। श्री सुक्खू ने कहा कि पेंशनरों ने प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और हिमाचल प्रदेश की प्रगति में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों के हित में बिना किसी राजनीतिक उद्देश्य के पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया ताकि कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें। श्रोताओ ये थी जानकारी 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ कार्यक्रम में अब सुनवा रहे हैं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। आप बने रहिए हमारे साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

श्रोताओ, कुछ नए कुछ पुराने गीतों का संगम लेकर आज आपकी रेडियो दोस्त पिंकी हाजिर हुई है गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम में, और उम्मीद करते हैं आपको ये गीत पसंद आ रहे होंगे। कार्यक्रम में आगे और भी प्यारे प्यारे से नगमे आपको सुनाएंगे श्रोताओ। फिलहाल कार्यक्रम में अब चलते हैं फिर से बातचीत की और। जी हाँ श्रोताओ, 21 सितंबर का दिन है आज और राष्ट्रीय चाय दिवस जो है वो मनाया जाता है, और ये दिन उन लोगों के लिए खास है जो चाय से प्यार करते हैं और अपनी दिनचर्या और संस्कृति का एक अहम हिस्सा चाय को मानते हैं। श्रोतो, ये दिन भारत में और दुनिया भर में चाय की चुस्की लेने और इसके विभिन्न स्वादों का आनंद लेने का दिन है। वैसे तो हर दिन में दो बार हम चाय पीते हैं कम से कम, लेकिन आज का जो खास दिन है वो स्पेशली मनाया जाता है राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में। श्रोतो, भारत में चाय की हम बात करें तो भारत में चाय सिर्फ एक पेय पदार्थ नहीं बल्कि दोस्तों और परिवार के साथ बातचीत का जरिया है और थकान मिटाने का एक तरीका है चाय। मसालों, अदरक, इलायची और लौंग इत्यादि से बनी भारतीय चाय मसाला जो शरीर को ऊर्जा देती है और मन को तरोताजा करती है, और यही हमारी भारतीय जिसे हम देसी चाय कहते हैं वो विदेशों में भी और विदेशी लोगों में भी चाय मसाला के रूप में बहुत ही फेमस हुई है और अभी भी फेमस हो रही है। तो श्रोता, जो चाय लवर होते हैं उनके लिए जैसे ही चाय की बात शुरू होती है ना, उनको लगता है कि बस अभी के अभी एक गर्मा गर्म चाय का प्याला जो है वो आ जाए। जो जो घर में है बहुत आसानी से चाय बना सकते हैं, उनके लिए चाय एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि आसानी से बनने वाला पेय है। तो चलिए गीत का आनंद भी उठाइए श्रोताओं कार्यक्रम में, और साथ ही साथ अगर आप चाय पी रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पी रहे तो जिस तरह से मैंने चाय मसाला का जिक्र किया है मेरे तो मुंह में पानी नहीं आया ये नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ मन बहुत कर रहा है कि चाय जो है वो पिए। और ये बिल्कुल वैसे ही है, एक कह सकते हैं तलब शब्द जो है वो शायद इसके लिए बुरा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं चाय की तलब लगती ज़रूर है श्रोताओं, जो चाय के शौकीन हैं जिनको चाय पसंद है। तो चलिए अपनी चाय की तलब को मिटाइए श्रोताओं, और कार्यक्रम में एक और प्यारा सा गीत आपको सुनवा रहे हैं, इस गीत का आनंद उठाइए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये गीत आपने बहुत लंबे समय से जो है वो सुना नहीं होगा, तो एंजॉय कीजिए रेडियो गुंजन धर्मशाला से इस प्यारे से गीत को।

श्रोताओं, सौतन फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला पर कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, कार्यक्रम में अब एक जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं।

श्रोताओ, एसडीएम देहरा के अनुरोध पर उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने अधिसूचित किया है कि बनखंडी बाया वासा महवा गाड़ हट सड़क के स्तर की उन्नति के कार्य की वजह से ये सड़क सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए 22 सितंबर से 21 अक्टूबर तक बंद रहेगी। इस दौरान इस क्षेत्र के लोगों को यातायात के विकल्प के तौर पर बनखंडी हरिपुर सड़क मार्ग के इस्तेमाल करने का अनुरोध किया गया है। श्रोताओ, ये थी जानकारी 91.2 मेगाहर्ट्ज पर। आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ, कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं आज राष्ट्रीय चाय दिवस के बारे में। जी हाँ श्रोताओ, दुनिया भर में मनाया जाने वाला राष्ट्रीय चाय दिवस जो है वो आज मनाया जा रहा है। भारत में श्रोताओ 21 सितंबर को राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। और चाय जिन लोगों का पसंदीदा पेय पदार्थ है उनको आनंद लेने का अवसर प्रदान करता है आज का ये दिन। वैसे तो चाय का आनंद हम हर रोज ही लेते हैं, लेकिन उसी आनंद की याद में कि किस तरह से चाय का हम आनंद लेते हैं, उसी के लिए चाय प्रेमियों के लिए आज का दिन जो है ये खास तौर पर मनाया जाता है। श्रोताओ, एशिया में चाय का आगमन सबसे पहले 3000 ईसा पूर्व में एक हर्बल पेय और शाही परिवार के लिए एक विशेष व्यंजन के रूप में हुआ था। इसका प्रारंभिक रूप केवल मसालों का मिश्रण था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसमें चाय की पत्तियां नहीं थी। लेकिन चीन में चाय की खोज के बाद ये स्थिति बदल गई। ये दिलचस्प है कि चाय का उन्नत रूप या चाय भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान 19वीं शताब्दी में पुनः विकसित हुआ। अंग्रेजों ने चीनियों से चाय की खेती सीखकर भारतीयों को इसके लिए प्रेरित किया और आज भारत चाय के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक बन गया है। भारत की स्वतंत्रता के बाद चाय कैफे की संख्या में काफी वृद्धि हुई है, जिससे चाय की बिक्री में भी बढ़ावा मिला है।

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और कार्यक्रम में इस समय श्रोताओ समय है चाय पीने का और कार्यक्रम में बात भी हम कर रहे हैं चाय की ही। तो चलिए आनंद उठाए कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत का और यूं ही बने रहिएगा हमारे साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर।

0: श्रोताओं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। कार्यक्रम 7:05 पर भी जारी रहेगा श्रोताओं, उससे पहले 7 बजे आप सुनेंगे समाचार। यूं ही बने रहिए हमारे साथ रेडियो गुंजन धर्मशाला पर।
1: भारत और न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड को होने वाला भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा दर्शाती है।
2: This strategic partnership.
3: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
1: श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, किसानों, हस्तशिल्प और हथकरघा कारीगरों को बहुत लाभ होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 2,00,000 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवरों, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के गोदामों से जुड़ी रिश्वत की शिकायत पर कृषि मंत्रालय के एक मार्केटिंग अधिकारी को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। शिकायत के अनुसार अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान भेरुंदा तहसील के गोदाम से सब्सिडी की राशि जारी करने के बदले 1,00,000 रुपए और बहरा खेड़ी गाँव के दूसरे गोदाम से 60,000 रुपए की मांग की थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि महानदी जल विवाद को बातचीत से शीघ्र ही सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और केंद्र में भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सत्ता में है। वर्ष 2018 से महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल के पास लंबित इस मामले को अब केंद्रीय जल आयोग को सौंप दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने हाई स्पीड और नियंत्रित प्रवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिजाइन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये दिशा निर्देश सभी आगामी 4 और 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होंगे। इनका उद्देश्य इन राजमार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में एक रूपता लाना है। इससे तकनीकी मानकों में समानता, सड़क सुरक्षा और परिचालन दक्षता को मजबूत करने में मदद मिलेगी। जापान एशियाई खेलों में निशानेबाजी में आज भारत ने तीन पदक अपने नाम किए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं इसी प्रतियोगिता के पुरुष टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। इससे पहले कल एला विनिल वलारिवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इसी प्रतियोगिता के महिला टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक हासिल किया। निशानेबाजी में भारत ने कुल 5 पदक अपने नाम किए, जिनमें 4 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। वहीं सुचिका तारियाल मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में देश के लिए पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। सुचिका ने 60 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया है। टेबल टेनिस में भारतीय पुरुष और महिला टीम दोनों ने पाकिस्तान को 3-0 से हराया। वहीं कबड्डी में पुरुष टीम ने जापान को और महिला टीम ने बांग्लादेश को पराजित किया। पदक तालिका में भारत 4 रजत, 2 कांस्य सहित कुल 6 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 564 अंक की बढ़त के साथ 74,859 पर बंद हुआ और वहीं निफ्टी 68 अंक बढ़कर 23,144 पर आ गया 23,414 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। इस समय आप सुन रहे हैं और सभी श्रोताओं का स्वागत है एक बार फिर से कार्यक्रम में। श्रोताओ अंतराल के बाद और समाचारों के बाद अब लिए चलते हैं आपको मनोरंजन की ओर, सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कामचोर फिल्म का गीत किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ में। और गीत जब शुरू हुआ तो शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि ये गीत नहीं चल रहा है, लेकिन इस गीत को फिल्म में कुछ इसी तरह से रिकॉर्ड किया गया था कि फिल्म के अभिनेता और जो हीरोइन है वो एक रिकॉर्ड से गाना सुनने की कोशिश कर रहे हैं और वो रिकॉर्ड जो है वो थोड़ा सा चल रहा है, उसके बाद वो रुक रहा है, उसमें खड़खड़ाहट की आवाज़ आ रही है। दोबारा फिर से कोशिश की जाती है उसी रिकॉर्ड को सुनने की, तो वो फिर से वैसे ही होता है, एक बोल गीत का जो है वो चलता है और फिर से

मुकेश रोशन वो खुद इस गीत को गाते हैं और रेखा भी इस गीत को गाती हैं, तब जाकर के ये गीत जो है इस तरह से हमें दिखाया और सुनाया गया है कि तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और, जुबां पे आज दिल की बात आ गई। जी हाँ श्रोताओं, यही गीत आप सुन रहे थे कामचोर फिल्म का। और अब कार्यक्रम में आगे आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। आप हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, यूं ही बने रहिए हमारे साथ श्रोताओं, सुनते रहिए रेडियो गुंजन, यह गूंज अपनेपन की।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। श्रोताओं, कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। श्रोताओं, राष्ट्रीय चाय दिवस है आज और इसके बारे में कार्यक्रम में हमने बातचीत की और इसके साथ साथ एक और खास दिवस जो है वो आज के दिन मनाया जाता है, वो है विश्व अल्जाइमर दिवस। जी हाँ श्रोताओं, ये दिवस भी 21 सितंबर को जो है वो मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी भूलने की बीमारी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना। अल्जाइमर एक गंभीर मस्तिष्क से जुड़ा विकार यानी ब्रेन डिसऑर्डर है जिसमें धीरे धीरे इंसान अपनी याददाश्त, अपनी सोचने समझने की क्षमता और दैनिक कार्य करने की शक्ति को कम होते हुए महसूस करता है। श्रोताओं, विश्व अल्जाइमर दिवस का महत्व है इस बीमारी के शुरुआती लक्षणों के बारे में समाज को जागरूक करना ताकि समय रहते इसकी पहचान हो सके। अल्जाइमर से पीड़ित मरीजों और उनके देखभाल करने वालों का समर्थन करना। अल्जाइमर के कुछ शुरुआती लक्षण इस तरह से हैं: छोटी छोटी बातों या हाल ही की घटनाओं को भूल जाना, रोजमर्रा के अपने परिचित काम करने में परेशानी होना, बातचीत के दौरान शब्दों को भूल जाना या बोलते बोलते भटक जाना, समय, दिन या अपनी ही जानी पहचानी जगहों का रास्ता भूल जाना, स्वभाव और व्यवहार में अचानक बदलाव आना जैसे ज्यादा गुस्सा या चिड़चिड़ापन। श्रोताओं, ये अल्जाइमर के कुछ शुरुआती लक्षण हैं और अल्जाइमर के बारे में बात करते हुए एक बात मेरे ध्यान में आई, एक कहानी ही आप समझ सकते हैं इसे, कि इंटरनेट का इस्तेमाल आजकल सभी करते हैं। तो एक रेलवे स्टॉप पर एक महिला और एक वृद्ध पुरुष बैठे होते हैं और वो महिला प्रेग्नेंट होती है और उसके बिल्कुल बगल में बैठा हुआ जो बुजुर्ग सा व्यक्ति होता है वो उसे पूछता है कि तुम गर्भवती हो? वो कहती है हाँ। तो वो उससे कहता है कि कौन सा महीना चल रहा है? तो अंदाजन जो महीना चल रहा होता है उसका प्रेगनेंसी का, वो उस बुजुर्ग व्यक्ति को वो महिला बताती है कि 7वां महीना चल रहा है और इस डेट को जो है वो बच्चा आना तय, जो डिलीवरी की डेट है वो तय है। तो उसके बाद उस बुजुर्ग का अगला सवाल होता है कि अच्छा, तो तुम प्रेगनेंसी की हालत में ऐसे अकेली क्यों घूम रही हो? तुम्हारे साथ कोई है नहीं जो तुम्हारा ख्याल रख सके? तो वो महिला बहुत कंट्रोल करके जवाब देती है कि कोई नहीं है, सिर्फ मेरे पापा के सिवा। तो वो बुजुर्ग कहता है कि तो पापा साथ में क्यों नहीं है? इस वक्त ऐसी हालत में तुम्हारे पापा को तुम्हारे साथ होना चाहिए। उनकी इतनी बातचीत के बाद ट्रेन आ जाती है, वो महिला उठती है, 2 कदम आगे बढ़ती है और फिर आवाज़ लगाती है, पापा हमारी ट्रेन आ गई, चलिए। और वो बुज़ुर्ग उस महिला की ओर ऐसे छोटे नादान से बच्चे की तरह देखता है कि ये कौन है और मुझे पापा क्यों कह रही है और मुझे क्यों ट्रेन में चलने के लिए कह रही है। श्रोताओ, शायद आपने भी ये छोटी सी रील देखी होगी और जब मैंने ये रील देखी तो उस समय मैं बहुत ही भावुक हो गई थी, क्योंकि बहुत से बीमारियां हैं, बहुत सी बीमारियों के बहुत से इलाज भी हैं कहते हैं, लेकिन इंसान जब इस तरह की सिचुएशन में होता है, जब वो साथ होकर के भी महसूस नहीं कर पाता कि उसके साथ उसके ही परिवार का सदस्य है, कितनी अजीब सिचुएशन होती होगी उस समय। उस इंसान की तो होती ही होगी जो बीमार है, लेकिन वो जो स्वस्थ है और जो उस पेशेंट को अपने साथ ले जा रहा है, उसका निरीक्षण करवा रहा है, उसका जो है डॉक्टर के पास इलाज करवा रहा होता है, उसकी जो हालत होती है वो मुझे लगता है मरीज से भी ज़्यादा
खतरनाक होती है। तो ये जो दिवस होते हैं श्रोताओं, ये इस तरह की बीमारियों के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए ही मनाए जाते हैं, ताकि लोगों में जागरूकता फैले और इस तरह की स्थितियां आने से हम जो है वो बचाव कर सके, अपना, अपने परिवार वालों का, और आस पड़ोस में भी अगर कोई ऐसे लोग हैं तो उनका भी हम अगर थोड़ा बहुत सहयोग कर सकते हैं तो किसी न किसी तरह से सहयोग जरूर करें। श्रोताओं, 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब कार्यक्रम में श्रोताओं आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

0: कमो
1: श्रोतो 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं कार्यक्रम में बातचीत भी हो रही है, गीत संगीत का भी माहौल बना हुआ है और साथ ही साथ हम आपको बता रहे हैं कि आज कौन सा दिन है। जी हाँ श्रोताओं, अल्जाइमर की बात हम कर रहे थे इस प्यारे से गीत से पहले कि छोटी छोटी जो बातें हैं वो इंसान भूलने लगता है और किस तरह से अपनी जीवन शैली में सुधार करके हम जो है इस अल्जाइमर से निजात पा सकते हैं। डॉक्टरों के अनुसार अल्जाइमर का कोई पक्का इलाज नहीं है, लेकिन स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर इसके जोखिम को कम किया जा सकता है। और स्वस्थ जीवन शैली में सबसे पहले आता है श्रोताओं व्यायाम। नियमित रूप से व्यायाम करें और सैर ज़रूर करें। अपने खान पान में हरी सब्जियां, फल और संतुलित आहार लें। दिमाग को सक्रिय रखने वाली गतिविधियां करें, जैसे किताबें पढ़ना, पहेलियां या पजल सुलझाना। उच्च रक्तचाप और मधुमेह को नियंत्रण में रखें। परिवार और दोस्तों के साथ सामाजिक रूप से जुड़ें। और श्रोताओं ये सभी बातें जो है ये बेहद ज़रूरी हैं अपनी जीवन शैली में सुधार के लिए। और जो सबसे अंत में हमने कहा कि परिवार और दोस्तों के साथ सामाजिक रूप से जुड़े रहना, आजकल कहीं ना कहीं हम AI की दुनिया में खो गए हैं और टेक्नोलॉजी से इतने जुड़ गए हैं कि आपसी जो हमारे रिश्ते हैं, अपना परिवार के लोग हैं या दोस्त हैं, सगे संबंधी तो चलो थोड़ा सा और भी पीछे कर देते हैं हम, रिश्तेदारों से हम दूर हो गए हैं, लेकिन कई बार परिवार के सदस्यों से भी हम साथ रह कर के भी कट से गए हैं। इस तरह का कोई एक ट्रेंड ही चला आ रहा है जैसे, और हम उसे अपना रहे हैं। और यही वजह है कि हम जो है अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से दूर होते होते एक ऐसी मानसिक स्थिति में चले जाते हैं जब इस तरह की बीमारियाँ जो हैं वो हमें घेर लेती हैं। और जब भी कोई मानसिक बीमारी या इस तरह की कोई बीमारी आती है तो उसमें सबसे पहले यही राय दी जाती है कि सामाजिक दायरा अपना बढ़ाइए, जिन लोगों के साथ मिलते हैं या मिलते थे आप, उनके साथ मिलिए, उनके साथ गपशप कीजिए, उनके साथ पुराना बिताया हुआ समय याद कीजिए, किस तरह से आप रहते थे, खेलते थे, खेल खिलाते थे, वो सारी बातें एक बार फिर से दोहराइए। आपके चेहरे पर भी स्माइल आएगी, आपकी यादें भी तरोताज़ा होंगी और इस तरह की जो बीमारियां हैं उनसे भी काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। तो श्रोताओं ये छोटी छोटी बातें होती हैं या छोटे छोटे किसी भी बीमारी से बचाव के जो है वो कोशिशें होती हैं जिनको अपना करके हम जो है वो किसी भी बीमारी को ठीक करने में खुद की खुद ही मदद कर सकते हैं। श्रोताओं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: नहीं।
1: श्रोताओं, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपने रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:45 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम जारी रहेगा प्रादेशिक समाचारों के बाद भी, यूं ही बने रहिए हमारे साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्लास 3 के पेंशनरों के लिए 30 और क्लास 1 व 2 के लिए की 15% डीए के भुगतान की घोषणा, अधिसूचना जारी। कांग्रेस ने किशाऊ बांध परियोजना को लेकर पूर्व भाजपा सरकार पर प्रदेश के संसाधनों को बेचने का लगाया आरोप। भाजपा ने कहा, किशाऊ बांध परियोजना का श्रेय लेने के लिए तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं मुख्यमंत्री। और पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान से प्रदेश में विभिन्न परियोजनाओं को मिल रही गति। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए प्रदेश के क्लास 3 के पेंशनरों के लिए 30% और क्लास 1 व 2 के लिए 15% डीए की अधिसूचना जारी करने की घोषणा की है। आज शिमला में पेंशनर ज्वाइंट फ्रंट के साथ आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने यह बात कही। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल आर्थिक मजबूती की ओर बढ़ रहा है और सरकार अपने वित्तीय अनुशासन के कारण डीए देने में सक्षम हो रही है।
2: मैंने ये फैसला किया है, क्लास 3 के जो पेंशनर हैं 1/16 के बाद 31/1/2022 तक के, उनको 30% एरियर और क्लास 1 क्लास 2 के 15% की एरियर की नोटिफिकेशन आज ही कर दी जाएगी। प्रदेश अपनी वित्तीय स्थिति से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, मुश्किल दौर गुजर चुका है, अब धीरे धीरे हम अच्छे दौर की ओर आ रहे हैं। मेरा अनुरोध रहेगा कि आप सब लोग इसमें साथ दें, सहयोग करें, धीरे धीरे सबकी पेंशन एरियर डीए सबको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। कोई मेडिकल रिवर्समेंट में कोई पैसे की कमी नहीं है। ये ठीक है कि आरडीजी कटने के बाद कम्यूटेशन लीव इनकैशमेंट और एरियर में जो थोड़ा कमी आई है।
1: इस बीच मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद वित्त विभाग की ओर से डीए संबंधी अधिसूचना आज शाम जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व की जयराम सरकार पर किशाऊ बांध परियोजना के समझौते के जरिए हिमाचल के संसाधनों को बेचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने किशाऊ बांध के मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष मजबूती से उठाया और बिना किसी शर्त के एमओयू साइन किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार के समय जयराम ठाकुर ने उत्तराखंड की तर्ज पर समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिससे हिमाचल को करोड़ों का नुकसान होता।
3: जयराम ठाकुर जी ने जो समझौता किया, उस समझौते को मानने से जब हमारी सरकार आई हमने मना कर दिया, और ये समझौता 4 बैठके तो मेरे साथ होगी, आपको 12% बिजली फ्री रॉयल्टी देंगे, हमने कहा ये भी नहीं हम मानते। और अमित शाह जी के पास तो मैं सामने था ना, मैंने वो अपनी बात अड़िग से रखी, हिमाचल के साथ जो समझौता किया और हिमाचल के तकरीबन ये जो 412 मेगावाट है इसमें 6-7 हजार करोड़ रुपया बिजली बनाने का आएगा, और बिजली बनाने के बाद इससे जो 1200 करोड़ रुपया का हमको पैसा मिलना शुरू होता तो 600 करोड़, लेकिन ये 5 साल बाद बनकर तैयार होगी तो 1200 से 1500 करोड़ हिमाचल प्रदेश सरकार को मिलेगा। जयराम जी है चाहे और कोई राम जी है, सब झूठ बोल रहे हैं।
1: इस बीच मुख्यमंत्री ने आज शिमला में महिला व बाल विकास विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी योजनाओं के लिए एक एकीकृत पोर्टल विकसित करने के निर्देश दिए, ताकि पात्र लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के अंतर्गत विधवाओं के 27 वर्ष की आयु के बच्चों को भी प्रतिमाह 1000 रुपए पॉकेट मनी प्रदान करने के निर्देश दिए। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने किशाऊ बांध परियोजना को लेकर मुख्यमंत्री पर तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत करने और परियोजना का श्रेय लेने का आरोप लगाया है। आज शिमला में पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि किशाऊ बांध परियोजना का समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह के प्रयासों से संभव हुआ है। बिंदल ने कहा कि मुख्यमंत्री लगातार इस परियोजना की उपलब्धियां गिना रहे हैं, लेकिन परियोजना के वास्तविक वित्तीय प्रावधानों और केंद्र सरकार के योगदान को सामने नहीं रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि 15,624 करोड़ रुपए की इस परियोजना में जल घटक की 12,096 करोड़ की राशि केंद्र सरकार द्वारा वहन किए जाने की व्यवस्था है, जो इसे आगे बढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। राजीव बिंदल ने किशाऊ बांध परियोजना समझौते की सभी वित्तीय और कानूनी शर्तों को भी सार्वजनिक करने की सरकार से मांग की है।
4: इस परियोजना की कुल लागत वो 15,624 करोड़ रुपया है, उसमें

0: बियर कर रही है। अब स्कीम का सबसे बड़ा कंपोनेंट वो केंद्र की सरकार बियर कर रही है। मेरा सीधा सीधा और मुख्यमंत्री जी के ऊपर आरोप है कि वो वास्तु स्थितियों को गलत ढंग से प्रस्तुत कर रही है।
1: ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, xhandle@AIRnews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।
2: यार दो दिन से तेज बुखार है, बदन भी टूट रहा है
3: और ये त्वचा पे काला निशान, इसे हल्के में मत ले रमेश।
4: सावधान, ये स्क्रब टाइफस हो सकता है। बरसात में घास झाड़ियों में पाए जाने वाले चिगर माइट के काटने से इसका खतरा बढ़ता है।
3: चल अभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं।
4: खेतों में पूरी बाजू के कपड़े और जूते पहने, आसपास की झाड़ियाँ साफ रखें। लक्षण दिखे तो तुरंत जांच और इलाज कराएं। सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। बाकी समाचारों में, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला स्थित राज्य सचिवालय में इलर्जली भवन चरण दो का आज उद्घाटन किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी और अनिरुद्ध सिंह भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 करोड़ रुपए की लागत से बने इस कार्यालय भवन से लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी।
5: मुख्यमंत्री का जो कार्यालय पुराना था, वहाँ कई बार डेपुटेशन आते थे तो वो वहाँ खड़े रहते थे, इतनी चेयर्स लगाने की भी जगह नहीं थी। इस कार्यालय में मुख्यमंत्री कार्यालय के अलावा प्रिंसिपल सेक्रेटरी का कार्यालय भी है और विधायकों को बैठने के लिए और आम जनता को मिलने वाले लोग हैं उनका भी कार्यालय है। इसी बिल्डिंग में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। जब कोई मंत्री आता था या मुख्यमंत्री जी आते थे तो जो संजौली से आने वाली ट्रैफिक है उसको रोक दिया जाता था, जो छोटा शिमला से आने वाली ट्रैफिक है उसको रोक दिया जाता था और बहुत हो जाती। इसके बनने से काफी खुली जगह हो जाएगी।
1: विपक्ष के फिजूल खर्ची के आरोपों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कार्यालय किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि मुख्यमंत्री पद का है। उन्होंने कहा कि जो भी मुख्यमंत्री चुना जाएगा वो इसी कार्यालय में बैठेगा, ऐसे में भाजपा बेबुनियाद आरोप लगा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर हम विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के बारे में। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म रेलवे और रोडवेज से विभिन्न मंत्रालयों को एक साथ लाने के लिए बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2021 को इस नेशनल मास्टर प्लान की घोषणा की थी। इस दौरान उन्होंने देश की कार्य संस्कृति में बदलाव और एकीकृत विकास पर जोर दिया था।
6: पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान 21वीं सदी के भारत को गतिशक्ति देगा। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को इस नेशनल प्लान से गति शक्ति मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सरकारी नीतियों में प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक को ये नेशनल प्लान गति शक्ति देगा। सरकार के प्रोजेक्ट्स तय समय सीमा के भीतर पूरे हो इसके लिए ये गति शक्ति नेशनल प्लान सही जानकारी और सटीक मार्गदर्शन करेगा।
1: पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान में 44 केंद्रीय मंत्रालय और 36 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश शामिल किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में पीएम गतिशक्ति के तहत कई परियोजनाओं को मंजूरी देकर वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। प्रदेश में इस योजना के तहत पालमपुर में आईटी पार्क, बद्दी में नया औद्योगिक क्षेत्र और हमीरपुर व बिलासपुर जिलों में खाद्य आपूर्ति के लिए रखरखाव व स्टोरेज क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए नए गोदामों का विकास किया जा रहा है। इसके अलावा प्रदेश में फोरलेन हाईवे परियोजनाओं के अलावा अन्य सड़क मार्गों के निर्माण व रखरखाव को भी पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत गति दी जा रही है। लाहौल स्पीति जिले में मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिसु में सेल्फी प्वाइंट के पास एक कार के अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। वाहन में कुल 5 लोग सवार थे जो मंडी जिले के रहने वाले थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्लास 3 के पेंशनरों के लिए 30 और क्लास 1 व 2 के लिए की 15% डीए के भुगतान की घोषणा, अधिसूचना जारी। कांग्रेस ने किशाऊ बांध परियोजना को लेकर पूर्व भाजपा सरकार पर प्रदेश के संसाधनों को बेचने का लगाया आरोप। भाजपा ने कहा, किशाऊ बांध परियोजना का श्रेय लेने के लिए तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं मुख्यमंत्री, और पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान से प्रदेश में विभिन्न परियोजनाओं को मिल रही गति। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन
7: श्रोताओं 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला लेकर मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ श्रोताओं, और अब कार्यक्रम का आज के इस कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनाने से पहले, आपसे विदा लेने से पहले यही कहेंगे श्रोताओं कि जिंदगी एक ही बार मिलती है, हंसी खुशी अपने अपनों के साथ बिताइए। जिंदगी में जो भी पल मिलते हैं खुशी के, उन्हें ज़रूर सेलिब्रेट कीजिए। इसी वादे के साथ आपसे बहुत जल्द फिर होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: दोस्तों, जब जनगणना अधिकारी आपके दरवाजे पर आए तो वो आपसे फोटो आईडी, दस्तावेज और यहाँ तक कि आपके फोन का ओटीपी भी मांगेंगे। जरा संभल के रहिए। बिल्कुल गलत। आइए आज सच जानते हैं। जनगणना अधिकारी कभी भी आपसे फोटो आईडी, ओटीपी या कोई भी दस्तावेज नहीं मांगेंगे। बस उनके सवालों का सच्चाई से जवाब दीजिए। ऐसी अफवाहों से दूर रहिए और जनगणना में जरूर हिस्सा लीजिए।
3: हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
1: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते, अभी ठीक हो जाएगा।
0: या फिर मुंह से जहर चूस के निकाले क्या?
2: अरे ठहरिया ठहरिया, अस्पताल ले जाने के अलावा आप लोग सब ऐसे ऐसी बातें कर रहे
3: हैं। अस्पताल ले जाओ भाई,
2: संभाल के। हाँ इन्हीं सब के चक्कर में हर साल मैं आपको बता दूं, 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए, समझे? तो याद रखिए देवी और सज्जनों, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
0: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
4: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
5: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
6: धृतराष्ट्र ने अपने 100 बेटे क्यों खो दिए? कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ था, धरती खून से लाल थी, राजमहल में एक पिता धृतराष्ट्र टूट चुके थे, कृष्ण के सामने फूट पड़े और कहे, प्रभु मेरे 100 बेटे मेरी आंखों के सामने मारे गए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? कृष्ण ने उनकी पीड़ा सुनी और शांत स्वर में कहा कि महाराज, आज से 50 जन्म पहले आप एक शिकारी थे, आपने एक पक्षी को मारने की कोशिश की लेकिन निशाना चूक गया, क्रोध में आकर आपने उस पक्षी के 100 बच्चों को मार डाला, आज जो दुख आप झेल रहे हैं वो उसी पाप का फल है। धृतराष्ट्र रोते हुए कहते हैं कि लेकिन प्रभु वो पाप तो 50 जन्म पहले किया था, सजा आप क्यों? कृष्ण बोले, क्योंकि पिछले जन्मों में आपने बहुत पुण्य कमाए थे, उन्हीं पुण्यों के चलते आपको इस जन्म में 100 पुत्र मिले, ताकि आप अपने कर्मों का फल का पूरा भोग सके। जीवन का सत्य यही है, कर्म लौटते जरूर है, कब लौटेंगे?
7: कुछ मीठा बोलूं?
8: रहने तो तुम्हारे बस की नहीं है।
7: मैं खाने की बात कर रही थी।
8: अच्छा, एक काम कर, गुलाब जामुन मंगा दो।
7: कोई जरूरत नहीं है, अब घर चल के ही खाना तो।

नमस्कार दोस्तों, ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। अब आप सुनेंगे आज का खास न्यूज बुलेटिन रुचिका के साथ। तो सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पे। हिमाचल प्रदेश में पहली बार गंजी रॉयल बंगाल टाइगर की दहाड़ सुनाई दी। रेणुकाजी चिड़ियाघर में नए मेहमान के आने से वन्य जीव प्रेमियों में उत्साह है। मुख्यमंत्री विधवा एकल नारी आवास योजना के तहत जरूरतमंद महिलाओं को घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। हिमाचल के पेंशनरों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की ऑफलाइन सुविधा जारी रखने की मांग उठी है। संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री से इस संबंध में आग्रह किया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया महिला टीमों के बीच धर्मशाला में होने वाले मुकाबले से पहले कांगड़ा की हवाई यात्रा महंगी हो गई है। दिल्ली से कांगड़ा आने वाले यात्रियों को कुछ उड़ानों में 22,832 रुपए तक किराया चुकाना पड़ सकता है। डीएलएड परीक्षाओं में नकल के मामलों पर सख्ती की जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने और नकल पाए जाने पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सीबीएसई स्कूलों में सिक्योरिटी और प्लम्बिंग कोर्स बंद किए जाने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित बदलाव वर्ष 2027-28 से लागू होने की बात कही गई है। पर्यावरण विभाग के अधिकारियों को भी प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाई के अधिकार दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जा सकेगा। हिमाचल के प्रवेश द्वार वाले शहरों को क्लीन सिटी की पहचान दिलाने की दिशा में योजना तैयार की जा रही है। स्वच्छता, पार्किंग, हरियाली और कचरा प्रबंधन पर विशेष ध्यान रहेगा। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित रेणुकाजी चिड़ियाघर में रविवार का दिन खास रहा। यहां पहली बार रॉयल बंगाल टाइगर की दहाड़ सुनाई दी। महाराजा के गोद से रॉयल बंगाल टाइगर के जोड़े को करीब 1900 किलोमीटर का सफर तय कर दोपहर करीब 1 बजे रेणुकाजी चिड़ियाघर पहुँचाया गया। वन विभाग और चिड़ियाघर प्रबंधन के अधिकारियों की मौजूदगी में दोनों बाघों को सुरक्षित तरीके से उनके नए बाड़े में पहुंचाया गया। बताया गया कि टाइगर के जोड़े के संरक्षण की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। इससे आने वाले समय में रेणुकाजी में वन्य जीव पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। चिड़ियाघर में आने वाले नए वन्य प्राणियों के नामकरण की भी परंपरा है। विभाग की ओर से लोगों से नाम सुझाने का आग्रह किया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री विधवा एकल नारी आवास योजना के तहत पात्र महिलाओं को अपना घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए तक की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर विधवा और एकल महिलाओं को सुरक्षित एवं सम्मानजनक जीवन उपलब्ध करवाना है। जानकारी के मुताबिक अब तक प्रदेश की 26 महिलाओं को इस योजना के तहत 78 लाख रुपए की सहायता दी जा चुकी है। वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में भी इस योजना के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जरूरतमंद महिलाओं के साथ सरकार खड़ी है और सामाजिक सुरक्षा के साथ आवास की जरूरत पूरी करने का प्रयास किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में पेंशनरों के जीवन प्रमाण पत्र को लेकर मामला सामने आया है। संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि पेंशनरों के लिए ऑफलाइन जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा जारी रखी जाए। समिति का कहना है कि दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले बुजुर्ग पेंशनरों को ऑनलाइन प्रक्रिया में तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वित्त विभाग की ओर से नियमों के तहत व्यवस्था बनाने की बात कही गई है। समिति ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर ऑफलाइन सुविधा बंद नहीं करने का आग्रह किया है। पेंशनरों का कहना है कि ऑनलाइन प्रक्रिया के साथ ऑफलाइन विकल्प उपलब्ध रहने से बुजुर्गों को सुविधा मिलेगी। धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 29 सितंबर से भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच मल्टी डे मुकाबले प्रस्तावित हैं। मैच को लेकर कांगड़ा आने वाले यात्रियों के लिए हवाई किराए में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दिल्ली से कांगड़ा आने वाले यात्रियों को कुछ उड़ानों में 22,832 रुपए तक का किराया चुकाना पड़ सकता है। 28 सितंबर को दिल्ली से कांगड़ा के लिए न्यूनतम किराया करीब 6,668 रुपए और अधिकतम 22,832 रुपए तक बताया गया है। कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए रोजाना 4 से 6 उड़ानें संचालित होने की जानकारी दी गई है। मैच और पर्यटन सीजन शुरू होने के कारण आने वाले दिनों में हवाई किराए में और तेजी आने की संभावना जताई गई है।
हिमाचल प्रदेश में डीएलएड परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। अक्टूबर नवंबर 2026 में होने वाली डीएलएड परीक्षाओं को लेकर परीक्षा केंद्रों की तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। बोर्ड के अनुसार यदि किसी परीक्षा केंद्र पर सामूहिक नकल या नियमों की अनदेखी का मामला सामने आता है तो उस केंद्र को भविष्य में परीक्षा केंद्र बनाए जाने से वंचित किया जा सकता है। सभी परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग कम से कम 6 महीने तक सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की नकल या अनुचित साधनों का प्रयोग पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड ने छात्रों से भी परीक्षा की गरिमा बनाए रखने और अनुशासन का पालन करने की अपील की है। हिमाचल प्रदेश के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में सिक्योरिटी और प्लम्बिंग के पाठ्यक्रम बंद किए जाने का प्रस्ताव सामने आया है। बताया गया है कि प्रस्तावित बदलाव 2027-28 से लागू होगा, जबकि मौजूदा शैक्षणिक सत्र में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इन पाठ्यक्रमों को लेकर स्कूलों और शिक्षकों की ओर से सामने आ रही चुनौतियों के बीच विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है। इसके साथ ही प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा के तहत कई क्षेत्रों से जुड़े पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें आईटी, पर्यटन, बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवाएं, कृषि, सुरक्षा और मीडिया जैसे क्षेत्र शामिल हैं। सरकार की ओर से व्यावसायिक शिक्षा को और बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में पाठ्यक्रम शुरू किए जाने की जानकारी भी दी गई है। हिमाचल प्रदेश में प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाई को और प्रभावी बनाने के लिए पर्यावरण विभाग के अधिकारियों को भी अधिकार दिए गए हैं। सरकार ने अधिकारियों को प्रतिबंधित प्लास्टिक और अन्य गैर जैव निम्नीकरणीय कचरे के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार दिया है। अब तक संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ साथ पर्यावरण विभाग को भी कार्रवाई के लिए अधिक सक्रिय भूमिका दी गई है। नियमों का उल्लंघन करने पर अलग अलग मात्रा के आधार पर जुर्माने का प्रावधान है। 100 ग्राम तक के प्लास्टिक पर ₹500, 101 से 500 ग्राम तक ₹1500 और 501 ग्राम से 1 किलो तक ₹3000 जुर्माने का प्रावधान बताया गया है। अधिक मात्रा में प्रतिबंधित सामग्री पाए जाने पर जुर्माना बढ़ता जाता है। सरकार की ओर से प्रतिबंधित वस्तुओं की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक को प्रभावी बनाने के लिए कार्रवाई तेज करने की बात कही गई है। हिमाचल प्रदेश के प्रवेश द्वार वाले प्रमुख शहरों को क्लीन सिटी की पहचान दिलाने की दिशा में योजना तैयार की जा रही है। शिमला में आयोजित बैठक में शहरों की स्वच्छता, सार्वजनिक सुविधाओं, यातायात व्यवस्था और सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई। पर्यटन गतिविधियों और यात्रियों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए प्रवेश द्वार वाले शहरों में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। इसके तहत सड़कों के किनारे कचरा प्रबंधन, पार्किंग, हरियाली और सार्वजनिक स्थानों की सफाई पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही बाजारों और मुख्य सड़कों के सौंदर्यीकरण की योजना भी तैयार की जा रही है। अधिकारियों को सार्वजनिक स्थानों की नियमित सफाई और कचरा प्रबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में 9 इको टूरिज्म साइटों के आवंटन की प्रक्रिया कैबिनेट की मंजूरी के बाद आगे बढ़ेगी। वन विभाग ने करीब 50 नई इको टूरिज्म साइटों को चिन्हित किया है। इनमें से 9 साइटों के आवंटन की प्रक्रिया अंतिम चरण में बताई गई है। इन साइटों से पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार और आय के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। विभाग का लक्ष्य आने वाले महीनों में आवेदन प्रक्रिया पूरी करना है। आप सुन रहे थे रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2। धन्यवाद।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: दोस्तों, जब जनगणना अधिकारी आपके दरवाजे पर आए तो वो आपसे फोटो आईडी, दस्तावेज और यहाँ तक कि आपके फोन का ओटीपी भी मांगेंगे। जरा संभल के रहिए। बिल्कुल गलत। आइए आज सच जानते हैं। जनगणना अधिकारी कभी भी आपसे फोटो आईडी, ओटीपी या कोई भी दस्तावेज नहीं मांगेंगे। बस उनके सवालों का सच्चाई से जवाब दीजिए। ऐसी अफवाहों से दूर रहिए और जनगणना में जरूर हिस्सा लीजिए।
3: हमारी जनगणना हमारा विकास।

0: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
1: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते हैं, अभी ठीक हो जाएगा।
0: या फिर मुंह से जहर चूस के निकालें क्या?
2: अरे ठहरिए ठहरिए, अस्पताल ले जाने के अलावा आप लोग सब ऐसी ऐसी बातें कर रहे
3: हैं। उठाओ उठाओ, अस्पताल ले जाओ भाई।
2: कमाल के हाँ, इन्हीं सब के चक्कर में हर साल मैं आपको बता दूं, 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए, समझे? तो याद रखिए देवियों सज्जनों, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
0: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
4: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
5: नमस्कार। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
6: धृतराष्ट्र ने अपने 100 बेटे क्यों खो दिए? कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ था, धरती खून से लाल थी, राजमहल में एक पिता धृतराष्ट्र टूट चुके थे, कृष्ण के सामने फूट पड़े और कहे, प्रभु मेरे 100 बेटे मेरी आंखों के सामने मारे गए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? कृष्ण ने उनकी पीड़ा सुनी और शांत स्वर में कहा कि महाराज, आज से 50 जन्म पहले आप एक शिकारी थे, आपने एक पक्षी को मारने की कोशिश की लेकिन निशाना चूक गया, क्रोध में आकर आपने उस पक्षी के 100 बच्चों को मार डाला, आज जो दुख आप झेल रहे हैं वो उसी पाप का फल है। धृतराष्ट्र रोते हुए कहते हैं कि लेकिन प्रभु वो पाप तो 50 जन्म पहले किया था, सजा आप क्यों? कृष्ण बोले, क्योंकि पिछले जन्मों में आपने बहुत पुण्य कमाए थे, उन्हीं पुण्यों के चलते आपको इस जन्म में 100 पुत्र मिले, ताकि आप अपने कर्मों का फल का पूरा भोग सके। जीवन का सत्य यही है, कर्म लौटते जरूर है, कब लौटेंगे?
7: कुछ मीठा बोलूं?
8: रहने तो तुम्हारे बस की नहीं है।
7: मैं खाने की बात कर रही थी।
8: अच्छा, एक खाकर गुलाब जामुन मंगा दो।
7: कोई जरूरत नहीं है, अब घर चल के ही खाना तुम।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोतो, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 MHz पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: दोस्तों, जब जनगणना अधिकारी आपके दरवाजे पर आए तो वो आपसे फोटो आईडी, दस्तावेज और यहाँ तक कि आपके फोन का ओटीपी भी मांगेंगे। जरा संभल के रहिए। बिल्कुल गलत। आइए आज सच जानते हैं। जनगणना अधिकारी कभी भी आपसे फोटो आईडी, ओटीपी या कोई भी दस्तावेज नहीं मांगेंगे। बस उनके सवालों का सच्चाई से जवाब दीजिए। ऐसी अफवाहों से दूर रहिए और जनगणना में जरूर हिस्सा लीजिए।
3: हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
1: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते, अभी ठीक हो जाएगा।
0: या फिर मुंह से जहर चूस के निकाले क्या?
2: अरे ठहरिया ठहरिया, अस्पताल ले जाने के अलावा आप लोग सब ऐसी ऐसी बातें कर रहे
3: हैं। अस्पताल ले जाओ भाई,
2: संभाल के। हाँ इन्हीं सब के चक्कर में हर साल मैं आपको बता दूं, 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए, समझे? तो याद रखिए देवी और सज्जनों, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
0: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
4: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
5: नमस्कार। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
6: धृतराष्ट्र ने अपने 100 बेटे क्यों खो दिए? कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ था, धरती खून से लाल थी, राजमहल में एक पिता धृतराष्ट्र टूट चुके थे, कृष्ण के सामने फूट पड़े और कहे, प्रभु मेरे 100 बेटे मेरी आंखों के सामने मारे गए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? कृष्ण ने उनकी पीड़ा सुनी और शांत स्वर में कहा कि महाराज, आज से 50 जन्म पहले आप एक शिकारी थे, आपने एक पक्षी को मारने की कोशिश की लेकिन निशाना चूक गया, क्रोध में आकर आपने उस पक्षी के 100 बच्चों को मार डाला, आज जो दुख आप झेल रहे हैं वो उसी पाप का फल है। धृतराष्ट्र रोते हुए कहते हैं कि लेकिन प्रभु वो पाप तो 50 जन्म पहले किया था, सजा आप क्यों? कृष्ण बोले, क्योंकि पिछले जन्मों में आपने बहुत पुण्य कमाए थे, उन्हीं पुण्यों के चलते आपको इस जन्म में 100 पुत्र मिले, ताकि आप अपने कर्मों का फल का पूरा भोग सके। जीवन का सत्य यही है, कर्म लौटते जरूर है, कब लौटेंगे?
7: कुछ मीठा बोलूं?
8: रहने तो तुम्हारे बस की नहीं है।
7: मैं खाने की बात कर रही थी।
8: अच्छा, एक काम कर, गुलाब जामुन मंगा दो।
7: कोई जरूरत नहीं है, अब घर चल के ही खाना। तुम
9: तो।

0: वो तो
1: क्यूट है ना।
0: अरे पहलवान है
1: पर तुमसे प्यार करती है।
0: हो नहीं सकता।
1: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
0: हो नहीं सकता।
1: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
0: ये हो नहीं सकता।
2: उन्हीं को तो कुछ भी हो सकता है।

0: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
1: हाँ, एक लड़की, बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी। लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
0: उसे बताया क्यों नहीं?
1: ये प्यार भी अजीब चीज है संजना। जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो, वहां भी दिल कहने से डरता है। और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं? वो किसी और को चाहती है।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं सुंदरकांड। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।